नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 की अश्विन मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 सितंबर 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 40 सेकेंड्स में प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन

FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास

0: प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रुक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है कंपोस्ट बनाने की विधि। आलेख एवं वाचन सुनीता अग्रवाल का।
2: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे कंपोस्ट खाद के लाभ पर। श्रोताओं, कंपोस्ट खाद फसल व पौधे के पोषक तत्वों में उच्च जैविक उर्वरता संचार करता है, जो मिट्टी की भौतिक विशेषताओं में सुधार लाता है, खेत में जैव अवशिष्ट को कम करता है और रोग जनितों को खत्म करता है। इस तरह कंपोस्ट खाद जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपोस्ट के लिए उस स्थान का चयन करें जहां हवा, धूप और पानी का प्रभाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि संतुलित मात्रा में हो और मिश्रण या कचरा ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही सूखा होना चाहिए। खाद बनाने के लिए जगह का चयन जमीन के ऊपर या गड्ढे के रूप में दोनों तरह से किया जा सकता है। अगर जमीन के ऊपर कर रहे हैं तो उस जगह से खरपतवार को साफ कर देना चाहिए और मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर परत बनाएं। उसमें पानी से गीला करके उस पर कचरा डालना चाहिए। इसी तरह से यदि गड्ढे का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ मिट्टी की परत बनाएं और पानी का छिड़काव करें। यदि हो सके तो अधिक नाइट्रोजन के लिए मिश्रण में पौधे व फसल के अवशेषों को ज़्यादा डालें, जिससे नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा मिल सकेगी। मिश्रण को डालते समय ध्यान दें कि उसमें कोई खाली स्थान नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से दबाकर गड्ढे को भरना चाहिए और ऊपर गोबर का लेप लगा देना चाहिए। इसके बाद उस पर 15 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बना देना चाहिए। कचरे को नमी युक्त करके गड्ढे में डालना चाहिए और 4 से 5 महीने के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो कंपोस्ट खाद तैयार होता है वो आवश्यक पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है। कंपोस्ट खाद प्रभावी तब होता है जब में ऐसी परिस्थितियों में बनाया जाता है जो सूक्ष्म जीवों के नाम पर मिट्टी में छोटे छोटे जीवों का विकास का समर्थन करते हैं। ये बैक्टीरिया और कवक होते हैं। सूक्ष्म जीवों को और पौधे और पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है। पौधे और पशु के कचरे के टूटने के दौरान गर्मी का उत्पादन होता है और कुछ दिनों के बाद तैयार कंपोस्ट का ढेर गर्म हो जाता है। जब उसे खोला जाता है तो उसमें भाप दिखाई देता है। कचरे की सामग्री के रूप में विघटित होने पर ऐसे पदार्थों में पोषक तत्वों को छोड़ते हैं जिनका उपयोग फसल और पौधे में किया जा सकता है। कंपोस्ट खाद को फसल बुआई से उसे 4 सप्ताह पहले भी नमी युक्त खेत में डालना चाहिए और उसको किसी भी यंत्र से मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए ताकि पोषक तत्व भूमि में अच्छी तरीके से प्रगतिशील हो सके। यह फसल के अवशेषों, गोबर, घास और अन्य घरेलू कचरे से बनती है जो किसानों को अपने खेतों से ही मिल जाया करती है। पौधे इसके पोषक तत्वों को अधिक टूटने की बजाय सीधे ग्रहण कर लेते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है जिससे फसल के समर्थन मिलता है और पानी की बचत भी होती है। पर्यावरण पर दूषित प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से देखा जाए तो कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना सबों के हित के लिए कार्य है, किसानों के लिए, मानव सेहत के लिए और साथ ही पर्यावरण के लिए। तो फिर किसान भाइयों को इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए ताकि इसका लाभ सबों को मिल सके। और आज की जानकारी यही।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था कंपोस्ट बनाने की विधि। आलेख एवं वाचन सुनीता अग्रवाल का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान।
3: टू एट ज़ीरो 280।

लंका में पवन सुत ने वहां के वनों की जो शोभा देखी तो उनका मन अत्यंत पुलकित हो गया। वह एक पर्वत पर जा विराजे जहां से रावण की नगरी का अनुपम दृश्य दिख रहा था। मणियों से जड़े प्रकाशित परकोटे, सुंदर भव्य भवन, चौराहे, बाजार, सड़कें, गलियां, हाथी, घोड़े, अगणित रथ और नाना आकार प्रकार वाले राक्षसों के समूह, भीमकाय योद्धा जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, अत्यंत चौकसी से नगर की रखवाली कर रहे थे। हनुमान ने निश्चय किया कि रात्रि में अत्यंत लघु रूप धारण कर नगर में प्रवेश करेंगे। मच्छर का स्वरूप धारण कर वे नगर द्वार पर पहुंचे ही थे कि लंकनी नामधारी राक्षसी ने टोका, बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? तुम जैसे चोर उचक्कों का मैं आहार करती हूं। हनुमान ने उसे एक भरपूर घूंसा जड़ दिया तो वह धराशायी होकर रक्त की उल्टी करने लगी। संभल कर उठते हुए बोली, ब्रह्मा ने जब रावण को वर दिया था तो मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान भी बता दी थी। हे तात, मेरे बड़े भाग हैं कि श्रीराम के दूत को मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है चिंता नहीं चिंतन करें। संकलन एवं वाचन निर्मला तिवारी का।

चिंता का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य चिंता को स्वयं ही पैदा करता है। जितनी लोग उतनी चिंताएं। हर इंसान की अपनी चिंताएं हैं, अपने विषय हैं। कोई किसी बात को लेकर चिंतित है तो कई किसी अन्य बातों को लेकर। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। कोई अपने दुखों से दुखी है तो कोई किसी के सुख से दुखी हो जाता है। तभी तो किसी का दुख किसी के लिए सुख है तो किसी का सुख किसी के लिए दुख। चिंता सागर की उस सतह की तरह है जहां पर सदा उथल पुथल मची रहती है। लहरें बनती हैं और बिगड़ती हैं। चिंतन सागर में उस ठहरे तल का नाम है जहां शांति रत्न और खजाने छिपे हुए हैं। चिंता यानी संसार और चिंतन यानी स्वयं। चिंता करने वाला सदैव दूसरों में उलझा रहता है। कमी स्वयं में नहीं दूसरों में ढूंढता है। अपनी असफलता और दुखों का जिम्मेवार भी दूसरों को ठहराता है। सुख के लिए स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को परिवर्तित करने में लगा रहता है। चिंतन में व्यक्ति स्वयं को टटोलता है, अपनी नजरें स्वयं पर टिकाता है, अपनी जांच पड़ताल करता हुआ कमी किसी दूसरे में नहीं बल्कि अपने आप में देखने की कोशिश करता है। चिंता करने वाले की यात्रा सांसारिक है तो चिंतन करने वाले की यात्रा अंतर यात्रा। चिंता श्रृंखलाबद्ध समस्याओं की निरंतरता का नाम है। तभी तो एक समस्या खत्म होती नहीं, उसके साथ अनेक प्रश्न करना उचित हो जाता है। किंतु हर बात पर चिंता करना यह तो बेकार है। प्रसिद्ध विचारक बीचर का भी मानना था कि व्यक्ति काम से नहीं मरता है, चिंता उसे मार डालती है। दरअसल हमें जितना मिलता है हम उससे अधिक और अधिक की आस लगाए रहते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, दूसरों के पास देखकर ईर्ष्या करते हैं और इसी आशा में घुलते रहते हैं कि हमें कैसे प्राप्त हो जाए सब कुछ, और यह चिंता कई परेशानियों का कारण बन जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से किसी काम में व्यस्त रखते हैं तो फिर चिंता के लिए फालतू तो समय नहीं होता है और आप चिंता से दूर होते हैं। चिंता कुछ हद तक सही है। समस्याओं का हल खोजा जाना चाहिए किंतु उसे मनोरोग नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है, चिंतन करें चिंता नहीं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में, विषय था आज का चिंता नहीं चिंतन करें। संकलन एवं वाचन निर्मला तिवारी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है बच्चों में निमोनिया, कारण एवं उपचार। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर नरेश भगत।
1: हमारे आने वाले भारत के भविष्य और इन्हीं छोटे छोटे बच्चों पर भारत की तरक्की निर्भर करती है। और यह छोटे बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आगे चलकर भारत की एक अच्छी तस्वीर उकेरेंगे और भारत विश्व में एक अलग पहचान बनाएगा। तो बच्चे हमारे स्वस्थ रहे, निरोगी रहें, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ऐसा ही बीमारी है जो नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, वो है निमोनिया। निमोनिया क्यों हो जाता है, क्या कारण है, और हमारे माता पिता किस प्रकार सजग हो कि जैसे ही मालूम पड़े कि हमारा बच्चा निमोनिया से ग्रसित होने वाला है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उपचार शुरू कर दें।

0: और साथ साथ हम सावधानियां किस प्रकार रखें। बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर नरेश भगत।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, स्वागत है। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे में ये बीमारी आम तौर पर देखी जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो निमोनिया का भी शिकार हो जाता है, तो निमोनिया होने का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है और लक्षण हम किस प्रकार देखकर पहचान पाए?
1: बॉडी को स्टडी के लिए हम लोग डिफरेंट मैंने अनेक सिस्टम में बांटे हुए हैं। जैसे ऊपर में जो भेजा है ब्रेन है और इस नर्वस सिस्टम में आता है, उसके बाद नाक से शुरू होता है एक सिस्टम, फेफड़ा में ख़त्म होता है और रिस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, मुंह से ख़त्म होकर एनस तक जो जाता है वो एक एलिमेंट्री कैनाल है, छाती में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसके बाद हड्डी और जो मसल का जो स्टडी करने के लिए जो बांटा गया है सिस्टम वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में, क्योंकि ये हमारा सिस्टम एनवायरनमेंट से खुला हुआ रहता है, हवा सांस में हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इस तरह से हवा लेते हैं उस क्रम में इन्फेक्शन जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और ऐसे भी हमारा एटमोसफेयर में जो हवा में है उसमें डस्ट है, बैक्टीरिया है, स्पोर्स है, वो सब इन्फेक्शन का कारण बनता है, सांस में चला जाता है। तो निमोनिया का सबसे बड़ा कारण हम लोग मानते हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर का इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इन्वेजन होता है वही इन्फेक्शन है। तो निमोनिया भी एक इन्फेक्शन से होने वाला बीमारी है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रमुख बीमारी है, श्वसन तंत्र का प्रमुख बीमारी है। इस बीमारी में फेफड़ा में सूजन आ जाता है, फेफड़ा लाल हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, और जो फेफड़ा का जो मेन अंग जो काम करता है, जहाँ हवा का जो आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, वहाँ पर पस भर जाता है और उसमें पानी भर जाता है, जिसके चलते जो फेफड़ा का जो मेन काम है गैसों का एक्सचेंज करना, उसकी क्षमता में कमी आ जाती है। बहुत सेवियर होने पर और भी लक्षण हैं, जैसे इसका मेन लक्षण है हमारा खांसी, बुखार, तेज सांस चलना, दम फूलना। अगर मरीज को तेज सांस के साथ में दम भी फूल रहा है या नीला हो जा रहा है ओठ या शरीर, तो इसको तुरंत मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है, और तो मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है। निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है बच्चों में। अभी भी हमारे यहाँ जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसमें एक बहुत बड़ा इसका योगदान है।
0: जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत वो निमोनिया से भी ग्रसित हो जाता है, तो इसका उपचार कैसे किया जाता है?
1: निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन सही इलाज से पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जन्म से हम लोग 28 दिन का बच्चे को नियोडेट बोलते हैं, उस समय सांस का रेट होता है 40 से 60 होता है। अगर 60 से ज़्यादा सांस ले रहा है बच्चा, तो संभावित माना जाए कि बच्चा का चेस्ट में इन्फेक्शन है। इसको हम लोग डेंजर साइन के रूप में रहते हैं, तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। और छोटे बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल होता है, जनरली निमोनिया का जो कारण होता है ज़्यादातर वायरल होता है, लेकिन बैक्टीरिया वो अपने आप ठीक होता है, वायरल 2 to 7 days में बॉडी अपने रिस्पॉन्ड करता है और उसको करेक्ट कर लेता है। लेकिन सबसे दिक्कत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो होने वाली बीमारी है उसके लिए छोटे बच्चों में जनरली एच इन्फ्लुएंजा और स्टैफिलोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, निमोनिया का कारण ये है बैक्टीरिया में। और एक साल के बाद जो इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या हम लोग निमोकोकस बोलते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो छोटे बच्चों में जो होता है एच इन्फ्लुएंजा और स्टैफिलोकोकस, उसके लिए हम लोग एम्पिसिलिन साथ में जेंटामाइसिन या क्लोक्सासिलिन के साथ मिला हुआ, मैंने पेनिसिलिन ग्रुप और जेंटामाइसिन के साथ मिला हुआ हम लोग दवा देते हैं, जो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। सही इलाज सही समय पर होने से निमोनिया पूरी तरह से ठीक होने वाला और पूर्णतः ठीक हो जाता है।
0: जी, और एक बार जब निमोनिया बच्चे को ठीक हो जाता है तो कितना संभावना है कि बार बार उसे हो, और हम इसका देख रेख कैसे करें? बचाव ही कहते हैं सबसे बड़ा उपाय है।
1: हाँ, आपने सही कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम लोग कहते हैं। तो निमोनिया के बचाव के लिए फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है न्यूट्रिशन, पोषण भी अच्छी तरह होना चाहिए। पोषण से बॉडी का इम्यूनिटी बना रहता है, खासकर हमारे झारखंड में मालन्यूट्रिशन की ये समस्या है, जिसके चलते बच्चे का शरीर कमजोर रहता है और इम्यूनिटी कम रहता है, जिससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी घर कर जाता है। प्रिवेंशन के लिए टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है। इसका एक टीका आया हुआ है निमोनिया का, इसको हम लोग निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बोलते हैं, सिनफ्लोरिक्स या प्रिवनार के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। यद्यपि ये महंगा है, कि अगर जो लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं। हमारे सरकारी सिस्टम में जो अनिवार्य टीके हैं वही उपलब्ध होते हैं, ये ऑप्शनल टीका में आता है, इसलिए उपलब्ध नहीं है। अन्य भी उपायों से हम निमोनिया का बचाव कर सकते हैं। जैसे टीकाकरण के दौरान 9 महीना से 1 साल के बच्चे को हम लोग विटामिन ए का सिरप देते हैं। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। 1 साल में चालू करने के बाद हर 6 महीने

0: बच्चे को विटामिन ए का सिरप पिलाया जाता है जो 5 साल तक पिलाया जाता है, टोटल 9 डोज पिलाया जाता है। विटामिन ए को हम लोग एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं, जिससे बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ता है और बार बार जो निमोनिया डायरिया या इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है। इसलिए टीकाकरण में विटामिन ए का सिरप अवश्य पिलाएं, खान पान में भी ऐसी चीज़ों का समावेश करें जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा हो।
1: खान पान में हम किस तरह के फलों का सेवन करें और घर में जो अनाज है उसका हम बच्चों को सेवन कराएं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो खाने में बहुत झिकझिक करते हैं।
0: आपने सही कहा, बच्चे आजकल जो फास्ट फूड कल्चर आ गया है ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जो ये स्वादिष्ट तो है लेकिन न्यूट्रिटिव नहीं रहता है। बच्चों को सीजनल फ्रूट्स दिया जाए, खासकर विटामिन ए की जो मात्रा मिलती है हमारे लाल पीले फलों मिलती है, जैसे आम हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, इस समय ज़्यादा मिलता है, तो इन फलों का समावेश जरूरी करना है। गाजर का उसको सलाद बना के दिया जा सकता है, हलवा बना के दिया जा सकता है, साथ में हरी हरी सब्जियों का समावेश किया जाए जिसमें विटामिन ए की मात्रा रहती है।
1: और सबसे बड़ी बात कि हमारे माता पिता को सजग होने की आवश्यकता है। बच्चे को यदि हम सही से देख रेख करते हैं, खासकर जो हमारा नवजात शिशु है उसको देख रेख की आवश्यकता है। और जब ऋतु परिवर्तन होता है और ख़ासकर हम ठंड के मौसम की बात करें तो ये बीमारी ज़्यादा बच्चों को अपने गिरफ्त में लेती है।
0: हाँ, सही कहा, बच्चों का शरीर छोटा होता है, गर्मी कम बनता है, तो जैसा मैंने कहा कि 0 से 28 दिन का बच्चा को हम लोग न्यूनेट बोलते हैं, सांस 40 से 60 बार लेता है, ज़्यादा 60 से ज़्यादा सांस ले रहा है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बच्चे को ठंडा से बचाने के लिए 3-4 लेयर गर्म कपड़ा पहनाएं, साथ में अगर कोई जगह रहते हैं दिन में तो उसको गोद में रखें, अपना बदन से सटा करें ताकि गर्मी मिले। हम लोग जब कम वजन वाले बच्चे या प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उसका हम लोग KMC कराते हैं, कंगारू मदर केयर कराते हैं, उसमें स्किन टू स्किन कंटैक्ट करा के बच्चे का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं। एक गर्म बच्चे को गर्म रखने का विधि है कंगारू मदर केयर, जिससे बच्चा गर्म रहता है, ठंड नहीं लगता है, जिसके चलते निमोनिया और किसी पे बचाव का उपाय बनता है।
1: खान पान के भी ध्यान रखने की आवश्यकता, और खासकर जो बच्चा नवजात है तो माता अपने स्तनपान उसे ज़रूर कराएं, ये बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ावार के लिए, और बच्चे को मानसिक रूप से विकास होगा, बच्चा का विकास सही होगा और बच्चा का बढ़ावार सही होगा और वो चपल होगा, चंचल होगा, और यही बच्चे आगे चलकर देश का निर्माण करेंगे।
0: माँ का दूध जो पहला दूध पिलाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन भी कहते हैं अनऑथराइज्ड रूप से, क्योंकि विटामिन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए विटामिन ए की मात्रा रहती है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है माँ का पहला दूध को बच्चे को अवश्य पिलाएं, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो जैसे मैंने बताया कि विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं, इन्फेक्शन से रोकने में मदद मिलेगी।
1: तो सभी माताओं और बहनों से हमारा ये विनम्र अनुरोध है कि अपने बच्चों को देख रेख ठीक से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में बच्चों में निमोनिया कारण एवं उपचार, इस विषय में आपको बता रहे थे डॉक्टर नरेश भगत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: विभागस्य महानिदेशकः आशीष गोयलः अवदत् यत् ह्यः आयोगस्य सभा अभवत् यत्र मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश कुमारः निर्वाचनायुक्तः सुखबीर सिंह संधु विवेक जोशी च उपस्थिताः आसन्। सः अवदत् यत् बिहारतः आरभ्य सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च कृते गतवर्षस्य जूनमासस्य चतुर्विंशतिदिनाङ्के प्रसारितस्य SIR इत्यस्य आदेशः आयोगस्य सर्वसम्मत्या अनुमोदनेन प्रसारिता अभवदिति। निर्वाचनायोगः अवदत् यत् BLO इति बूथस्तरीय अधिकारिणः तेषां गृहेषु गच्छन्ति ये वर्तमानस्य विशेषगहनसंशोधनस्य SIR इत्यस्य समये सूचनाः प्रदत्तवन्तः तेषाम् आवश्यकपत्राणि सङ्गृहीतुम्। तदनन्तरं BLO इत्येते ECI नेट इत्याख्ये पटले प्रलेखान् प्रेषयिष्यन्ति। भारतं सर्वान् पक्षान् संयमम् आचरितुं कष्टं न्यूनीकर्तुं नागरिकान् रक्षणं सुनिश्चेतुं वर्तमानयुद्धेषु ऊर्जायाः वाणिज्यस्य अविरामप्रवाहं च सुनिश्चेतुम् आहूतवान्। गतरात्रौ न्यूयॉर्कनगरे संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सामान्यसभां सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् युद्धानां परिणामाः प्रत्यक्षतया युद्धे संलग्नराष्ट्राणां समीपेभ्यः बहुदूरं यावत् अनुभूताः भवन्ति। सः अवदत् यत् वैमनस्येन वैश्विकसुरक्षा निरन्तरं प्रभाविता भवति, प्रगतिः शङ्किता भवति तथा च तस्य समीपस्थप्रदेशेभ्यः बहुदूरं यावत् विकासः मन्दः भवति। सः अवदत् यत् विशेषतः खाद्य ऊर्जा सुरक्षादिक्षेत्रेषु स्थितिं परिष्कारयितुं भारतं सर्वविधसाहाय्यं कर्तुं तत्परः अस्ति। वित्तमन्त्रालयः अघोषयत् यत् ग्राहकेभ्यः सौलभ्यं प्रदातुम् अद्य सर्वे सार्वजनिकक्षेत्रस्य बैंकसंस्थाः ग्रामीण बैंकसंस्थाः च उद्घाटिताः भवन्ति। मन्त्रालयः अवदत् यत् युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इत्यनेन अस्मिन् मासे 28 30 दिनांकपर्यन्तम् आहूताः प्रस्तावित त्रिदिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक प्रदर्शनस्य दृष्ट्या एतत् निर्णयः स्वीकृतः। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये तिसृणां क्रीडा श्रृंखलायाः प्रथम एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडा अद्य तिरुवनन्तपुरम नगरस्य ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे भविष्यति। क्रीडा अपराह्ने 2 आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार जारी रखने पर भी बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
3: should be exposed and should be countered.
1: Rules

0: यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को भी दोहराया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को भी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से एक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। जापान में एशियाई खेलों में स्क्वॉश स्पर्धा में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during the ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister S. Jaishankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations.
3: We remain deeply concerned over continuing hostilities. The targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
2: He said hostilities continue to destabilize global security, threatening progress and slowing development far beyond their immediate regions. Dr. Jaishankar said India is prepared to do everything possible to help improve the situation, particularly in areas of food

8:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जो हर पलामू खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियों पर आधारित होता है हमारा ये कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम के तहत हम आपको एक वार्ता सुनवाएंगे। विषय होगा पलामू प्रमंडल में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। इस विषय में आपको बताएंगे विनीत चंद्र पांडे। कार्यक्रम की प्रस्तुति स्वर होगी प्रीतिक वाणी की।

संयोजन श्री प्रशांत गौरव की। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 10:00 हिंदी में समाचार, 10:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई।

10:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता से मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण, जिसे हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और ये आप संस्कृत और हिंदी में भी समापन तक सुनेंगे। उसके बाद विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफ़र आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 2 बजे हिंदी में अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से, 2:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 2:55 पर होगा प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

चार बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 5:00 प्रादेशिक समाचार, 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे थे आज दिन में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे बच्चों को संबोधित कार्यक्रम बाल सभा।

बाल सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं नमस्ते, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप सबों को आज इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम एक प्यारे से गीत के साथ, फिर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें।

तो बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक नन्ही सी चींटी अपने साथियों के साथ रहती थी। एक दिन उसने देखा कि एक ऊंचे पेड़ पर ऊपर मीठे फलों का एक ढेर लगा है। चींटी ने सोचा, काश मैं भी वहां तक पहुंच पाती। उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। रास्ता बहुत कठिन था। थोड़ी दूर चढ़ने के बाद उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गई। चींटी ने फिर कोशिश की, वह दोबारा चढ़ी, फिर फिसली। तीसरी बार कोशिश की, फिर गिर गई। पास बैठा एक छोटा सा कीड़ा उसे देख रहा था। उसने कहा, तुम बार बार गिर रही हो, छोड़ दो ना, तुमसे नहीं होगा। चींटी कुछ देर चुप रही, फिर उसने पेड़ को देखा और कहा, गिरना मेरी हार नहीं, हर बार गिरकर मैं यह सीख रही हूँ कि अगली बार कहाँ सावधानी रखनी है। फिर वह चढ़ने लगी। कभी वह दाएं की ओर जाती, कभी बाएं ओर, कभी थोड़ी देर रुककर आराम करती, फिर आगे बढ़ती। आखिरकार कई प्रयासों के बाद वह पेड़ की ऊंचाई तक पहुँच गई। चींटी ने फल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। उस दिन उसे सिर्फ फल नहीं मिला, उसे अपने ऊपर विश्वास करना भी सीख लिया। प्यारे बच्चों, जिंदगी में कई बार हमें लगेगा कि कोई काम बहुत मुश्किल है। कभी परीक्षा में मन चाहे अंक नहीं आएंगे, कभी खेल में हार मिलेगी, कभी किसी काम में पहली कोशिश में सफलता नहीं मिलेगी। पहली कोशिश में सफलता ना मिलना असफलता नहीं है, कोशिश छोड़ देना असली हार है। इसलिए जब भी कोई काम कठिन लगे, खुद से कहिए, मैं कोशिश करूँगा या मैं कोशिश करूँगी, मैं सीखूँगा और फिर ये प्रयास करूँगा। क्योंकि बड़ी सफलता अक्सर छोटी छोटी कोशिशों से ही बनती है। तो बच्चों, आज से एक

0: संकल्प जरूर लीजिए। हार से डरना नहीं है, गलती से सीखना है और कोशिश करते रहना है। तब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: सोमू सोमू, वो कहानी सुना हो ना, और तुमने कहा था
2: कहानी?
1: हाँ,
2: कौन सी कहानी थी?
1: ओ जब हरिप्रसाद गिजट में गिर पड़ा था, कहा नहीं था ओ, ओ लोमड़ी की क्या
2: लोमड़ी क्या वो वो लोमड़ी नहीं, गीदड़ की कहानी है वो।
1: ओ, सुना हो ना।
2: उतरो, उधर बैठो।
1: सुनाओ ना। मारते क्यों रहते हो हर वक्त?
2: और क्या, पैर नीचे रख, रख नहीं। कहानी सुननी या कि नहीं? तो ये दिया बंद करो। गीदड़ की कहानी। कौन सी कहानी?

0: कुछ नहीं हुआ, चिंता नहीं बालिका। अच्छा कहानी कहां तक पहुंची?
1: सोम गिर पड़ा।
0: सोमू नहीं, कीदड़।

0: कुत्ते जब भौंक के भाग गए, कीदड़ जी हांडी से निकले।
1: हाँ।
0: और धूप चढ़े जंगल पहुंचे, ऊपर से नीचे तक नीले।
1: हाँ, अच्छा।
0: हाँ, सब जानवर देखे डरने लगे, ये कौन है, कैसा जानवर है।
1: मुझे पता है।
0: क्या पता है?
1: गीदड़।
0: चुप बुद्धू। कहाँ से आ गए? सब जानवर देख के डरने लगे, ये कौन है, कैसा जानवर है, दिखने में नीला दिखता है, अंदर से लाल बुझक्कड़ है। गीदड़ ने भी चालाकी की।
1: क्या किया?
0: मोटी आवाज में गुर्राया,
2: मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ अब जंगल का, मुझको भगवान ने भिजवाया।
0: संभाल के। शेर की धुम भी हिलने लगी और मुंह से बस निकला, हेलो। बंदर का मुंह लाल होता है ना।
1: हाँ।
0: डर के मारे निकला,
3: येलो।

0: तुझे। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ उस जंगल में। डरती क्यों हो?
1: तुम शोर क्यों कर रहे हो?
0: मैं शोर नहीं करूंगा, मैं तो बिजली हूँ। बिजली?
1: बिजली? तुम तो गीदड़ थे ना?
0: गीदड़? अच्छा, मैं तो सब कुछ हूँ।
1: अच्छा,
0: मत फोन करो। और बस
1: बस बोलो।
0: सावन के महीने में एक दिन कुछ कीड़ मिलकर गाने

बच्चों, बड़ा बनने का मतलब केवल उम्र में बड़ा होना नहीं। बड़ा वह है जो छोटों से प्यार करे, बड़ों का सम्मान करे, गलती होने पर उसे स्वीकार करे और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करे। कार्यक्रम बाल सभा में आज के लिए इतना ही। अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दें। नमस्कार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे थे। अभी आप सुन रहे थे बच्चों को संबोधित कार्यक्रम बाल सभा। अब आइए आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गायन, राग होगा ठुमरी और कलाकार है शोभा घोटू।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग में गायन। आज राग था ठुमरी और कलाकार थी शोभा गुट्टू और पंडित अजय पोहानकर। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही होगा प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पर आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
3: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।

0: in particular should be exposed and should be countered.
1: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य ईंधन उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और NewsOn AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
2: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे NewsOn AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
5: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति CP राधा

0: कृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
1: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
3: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्ट बोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है, पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. External Affairs Minister S. Jayashankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. Russia strongly backs India's claim for permanent seat in UN Security Council. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. All public sector banks and regional rural banks to remain open today for convenience of customers. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Uttarakhand. Chardham Yatra suspended in view of adverse weather conditions. And in men's cricket, first one-day international of 3-match series between India and West Indies to be played in Tiruvananthapuram this afternoon. And now the news in detail. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister S. Jayashankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. He said, hostilities continue to destabilize global security, threatening progress and slowing development far beyond their immediate regions. Dr. Jayashankar said India is prepared to do everything possible to help improve the situation, particularly in areas of food and energy security.
6: We remain deeply concerned over continuing hostilities, the targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
5: Referring to the protracted Russia-Ukraine conflict, the minister said, The ongoing war remains a critical international concern and echoed Prime Minister Narendra Modi's call for an end to hostilities.

0: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has strongly backed India's claim for a permanent seat in the United Nations Security Council. In his address at the UN General Assembly in New York last night, Mr. Lavrov said, Russia, in favor of broadening the representation of Asia, Africa and Latin America and Moscow, supports India's and Brazil's candidatures for a permanent seat. He advocated for more seat allocation to the Global South and voiced strong support for India and Brazil. Mr. Lavrov said UN Security Council reforms cannot involve any additional seats being allocated to Western countries, especially to Germany and Japan, who are now on the path to militarism and revanchism. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program, Man Ki Baat, on Akashvani at 11 a.m. today. This will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. All public sector banks and regional rural banks will remain open today for the convenience of customers. This step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions from tomorrow. Reserve Bank of India has granted approval for all bank branches, offices, ATM link branches and currency chests to remain fully operational today. Meanwhile, several public sector banks have decided to waive ATM transaction charges above the free monthly limit during the three-day bank strike. Union Home Minister Amit Shah will participate in a series of key development programs in Ahmedabad today. He will dedicate the newly constructed WAG-12 locomotive maintenance shed to the nation at the Sabarmati Loco Shed. On this occasion, Mr. Shah will also flag off the high horsepower WAG-12 electric locomotive. Later in the day, Mr. Shah will reach the Sabarmati Railway Station to dedicate various station redevelopment projects to the public. During the event, the Home Minister will also flag off the nation's first liquefied natural gas or LNG-powered DEMU train. This is Akashvani giving you the news.
1: For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel, Akashvani News.
0: Welcome back. In Uttarakhand, many parts of the state have been receiving rainfall over the past 24 hours. The Met Department has issued a red alert for Dehradun, Tehri and Pauri, forecasting heavy to very heavy rainfall with extremely heavy rain at isolated places. Heavy rainfall is also likely in other parts of the state. Amid continued rainfall, the Chardham Yatra will remain suspended today. More details from our correspondent.
2: According to the Met Department, thunderstorms, lightning and strong winds are likely across all districts of the state today. Wind speeds may reach up to 50 km per hour. In the last 24 hours, Udham Singh Nagar and Nainital recorded the highest rainfall. Continuous rainfall has also led to snowfall in the higher reaches of the state. In view of the weather warning, the disaster management system remains on alert mode across the state. Authorities are monitoring vulnerable areas, rivers and streams, as well as waterlogged locations. The Weather Department has advised people to avoid unnecessary travel during the adverse weather conditions. Sakshi Singh, Akashvani News, Dehradun.
0: Continuous heavy rainfall has disrupted normal life across Uttar Pradesh, with 15 people reportedly losing their lives so far. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the district magistrates of all affected districts to remain on high alert and provide immediate relief and assistance to the affected people. A report.
3: The torrential rain that began on Thursday continues in several parts of the state, including the capital Lucknow, Kanpur, Gorakhpur, Shravasti and Itawa. Above normal rainfall has been recorded in 63 districts, leading to waterlogging and disruption of normal activities at several places. Relief Commissioner Dr. Hrishikesh Bhaskar Yashod said that the state received 19 times more rainfall than normal during the past 24 hours. The heavy rainfall has also led to a significant drop in temperatures and caused damage to crops, particularly sugarcane, paddy and vegetables. The Meteorological Department has issued an orange alert for Western UP and a yellow alert for Eastern UP today. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
0: Flood situation is worsening in several parts of Odisha following heavy rainfall over the past few days, with rivers swelling and low-lying areas inundated. The Jorhat is flowing above the danger level, while the Subarnarekha is rising rapidly, raising concerns in northern Odisha. In the Mahanadi Basin, heavy rainfall in the upper catchments of Chhattisgarh has increased inflows into the Hirakud Reservoir, prompting release of excess water through its gates. More from our correspondent.
4: Rainfall continues in several parts of Odisha, aggravating the flood situation in the state. The Jalaka River is flowing above the danger level at Mathani in Baleswar district, while the Subarnarekha is also rising and remains close to the danger mark at Rajghat. Several low-lying areas have been inundated. In the Mahanadi Basin, heavy rainfall in the upper catchments of Chhattisgarh has led to increased inflow into the Hirakud Reservoir. 22 gates of Hirakud Dam are currently open for release of excess water. People living in low-lying areas along the Mahanadi and its tributaries have been advised to remain alert. The India Meteorological Department has forecast further heavy to very heavy rainfall at some places in Odisha, and authorities are closely monitoring the flood situation. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: World Tourism Day is being observed across the globe today. The day highlights the importance of tourism in connecting people, fostering cultural exchange, and supporting economic development. The theme for this year is Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Our correspondent reports that initiatives such as Swadesh Darshan 2.0, Prashad, Cruise Tourism and Tourism Skill Development are expanding destinations, improving visitor experiences and creating livelihood opportunities.
2: As part of the central celebration in New Delhi today, Tourism Minister Gajendra Shekhawat will unveil a series of key new initiatives to strengthen India's tourism ecosystem and enhance opportunities for sustainable and inclusive tourism development. With Dipendra Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
0: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Pradhan Mantri Mudra Yojana.
5: The micro, small and medium enterprises in Tamil Nadu is one of the largest MSME ecosystems in the country. The state has a single portal which allows businesses to process clearances across multiple departments. The state also has a separate ministry for the development of MSMEs to empower the small and medium businesses. The sector contributes approximately 31% of India's GDP and serves as the second largest employer after agriculture. Coimbatore has over 80,000 officially registered MSMEs and Udyog Aadhar units, spanning manufacturing, textiles and engineering. Local directories and databases are managed heavily through bodies like Codicia and SEMA. Karthik Jain, district manager of the lead bank in Coimbatore, told AIR that since the beginning of Mudra scheme, the entrepreneurs in the district showed keen interest in improving businesses and manufacturing capabilities.
6: Coming specifically to our Coimbatore district, Mudra has supported a large number of entrepreneurs. We particularly want to encourage women, small traders, service providers and other micro entrepreneurs, even skill development training institute candidates, or to make use of formal institutional credit.
5: In total, Tamil Nadu has 7,59,847 registered micro-industries, 1,01,861 small industries and 2,818 medium industries, which boost the economy of the state and also the country. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
0: On to sports now. In men's cricket, first one-day international of the three-match series between India and West Indies will be played today at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram. The match will start at 2 p.m. IST. Both Rohit Sharma and Virat Kohli are set to return to India's ODI lineup after a two-month break from this format. More from our correspondent.
7: The enthusiasm among cricket fans, which surged from the opening of ticket sales, has reached its peak with the arrival of both teams in Thiruvananthapuram. Cricket fans in the city are hoping to see India make a strong start in the opening match of the three-match ODI series. Tight security arrangements have been put in place at Thiruvananthapuram in connection with the India-West Indies match. Smithy M. Palluruthy, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: Indian men's and women's compound archery teams made it to the semi-finals of their respective categories at the ongoing Asian Games in Aichi, Nagoya today. The men's trio of Sahil Jadhav, Ganesh Maniratnam and Kushal Dalal beat Bhutan 235-232 by the narrowest of margins to seal a semi-final clash against South Korea. The women's team of Chikita Taniparthi, Jyoti Surekha Vennam and Preetika Pradeep beat Kazakhstan to seal a semi-final clash against South Korea. In surfing, India got some good news out of the women's short board event as both Sugar Shanti Gayan and Kamali Prakash made it to the third round. The quarterfinal will take place tomorrow. India has so far won 30 medals comprising 4 gold, 12 silver and 14 bronze at the Aichi Nagoya Asian Games. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
8: Thank you, Saira. All newspapers have widely noticed developments regarding SIR. Sunday Times headlines, after meeting, EC says officials will visit homes of those sent notices, adding ECI Net software to be audited after complaints. Hindustan Times has quoted External Affairs Minister S. Jayashankar's remarks at the UNGA. The paper writes, India slams Pakistan Prime Minister's hypocritical address. The Sunday Express notes, Jayashankar hits back at Pakistan PM, says serial terror practitioners bid for immunity won't stand. Financial Express Sunday quotes the finance minister in its headline, Tech Innovation Can Take India to 10% Growth. And finally, Golden Double for Team India's Kabaddi squad at the Asian Games. The Hindu carries a picture of both the men and women's team celebrating their victory. And with that, it's back to you, Sarah.
0: Thanks, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Jayashankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. Russia strongly backs India's claim for permanent seat in UN Security Council. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. All public sector banks and regional rural banks to remain open today for convenience of customers. IMD issues red alert for heavy rainfall in Uttarakhand, Chardham Yatra suspended. And in men's cricket, first one-day international three-match series between India and West Indies to be played in Thiruvananthapuram this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a great day.
9: आकाशवाणी रांची से अभी आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
10: पोती का जन्म ठीक से हो गया, चलो सब घर चलते।
11: सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में 2 रात रुकने को बोला था।
10: नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं।
11: अरे देख के, हाय गिर गए।
12: अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी।
13: देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना,
14: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना।
15: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
16: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
17: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गाँव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
16: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
17: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
16: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
15: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
18: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने कहा एसआईआर के तहत नोटिस जारी किए गए मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे बीएलओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में कथित तौर पर अनुचित लाभ लेने के मामले में सीआईडी ने गिरिडीह से 2 और कोडरमा से 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में होगी हड़ताल। रिजर्व बैंक के निर्देश पर आज रविवार को खुलेंगे बैंक। और मौसम विभाग ने आज से मौसम साफ होने की जताई उम्मीद। राज्य के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और तेज हवा चलने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एसआईआर के दौरान जिन्हें भी नोटिस जारी किए गए हैं उनके घर जाकर बीएलओ दस्तावेज एकत्र करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए कार्यालय नहीं बुलाएंगे। केवल असाधारण परिस्थितियों में ऑनलाइन सुनवाई होगी। यदि सुनवाई आवश्यक हो तो मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को उपस्थित होने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। यह निर्णय नई दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। एसआईआर और फॉर्म 6 को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब हो गया है।
19: ज्ञानेश कुमार ने हर वो संभव प्रयास किया जो वो कर सकते थे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच तो छोड़िए, सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो संगीन आरोप लगे हैं चुनाव आयोग के अंदर से, उसकी वकालत करने आ जाते हैं भाजपा के प्रवक्ता, तो यह स्पष्ट रूप से कोनाइवेंस को दर्शाता है।
18: वहीं प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी अभय कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस झामुमो राजद के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है तो वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं।
20: वोट चोरी सबसे पहले किसने किया? इस देश को कलंकित किया किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें वोट चोरी करने के आरोप में उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी दोनों ने उन्हें पदमुक्त करने के लिए, सरकार गिराने के लिए कह दिया कि आप अयोग्य हैं, 6 वर्ष के लिए आप निलंबित हैं। वोट चोरी का अगर सीखना है तो कांग्रेस के नेताओं से सीखिए।
18: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम का 138वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम समूची आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में कथित तौर पर अनुचित लाभ लेने के मामले में सीआईडी ने कल कोडरमा के अजय कुमार, गिरिडीह के संजय कुमार और रामाकृष्ण कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीआईडी के अनुसार गिरफ्तार तीनों आरोपी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में शामिल हुए थे। त्योहारों में ट्रेन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची और अलीपुरद्वार के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 08661 और 08662 रांची अलीपुरद्वार रांची पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन 12 अक्टूबर से शुरू होगा। यह ट्रेन रांची से हर सोमवार और अलीपुरद्वार से हर बुधवार चलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल, एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की 28 से 30 सितंबर तक 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी। इस निमित्त आरबीआई के निर्देश पर आज रविवार को छुट्टी होने के बावजूद बैंक खुले रहेंगे। बैंकों ने भी ग्राहकों को हड़ताल से पहले जरूरी बैंकिंग काम निपटा लेने की सलाह दी है। इधर यूनियन के संयुक्त संयोजक मुनेन्द्र लाल सिंह ने बताया कि 8 मार्च 2024 को हुए समझौते को अब तक लागू नहीं किए जाने के विरोध में हड़ताल की जा रही है।
21: 3 दिन का 28, 29, 30 सितंबर को हड़ताल पे जा रहे हैं। इस हड़ताल पे हमारी सबसे पहली मांग ये है कि बैंकों के अंतर्गत जो है वो 5 दिवसीय बैंकिंग होना चाहिए। इस संदर्भ में 8 मार्च 2024 को इंडियन बैंक एसोसिएशन और जो है तमाम यूनियन के बीच में वार्ता हुई थी और वो कहे थे कि इसको हम लागू कर देंगे, लेकिन आज 30 महीने होने भी जा रहे हैं, अभी तक भी नहीं हुए हैं।
18: जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित एलआईसी बिल्डिंग में देर रात भीषण आग लग गई। इससे अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में करीब 200 कंप्यूटर और 40 से अधिक एसी पूरी तरह जल गए। सूचना

0: मिलते ही दमकल की करीब 12 गाड़ियां पहुंची और लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। धनबाद के कतरास क्षेत्र में करीब 30 वर्ष पूर्व हुए गजलीटार हादसे में पानी में डूबकर अपनी जान गंवाने वाले श्रमिकों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत किए जाने पर जोर दिया।
1: जो भी इसके परिवार इससे प्रभावित हुए, सभी परिवारों को मुझे लगता है कि उचित इनको जो भी सहयोग मिलेगा तो उनको कोई दिक्कत न हो। आगे इस तरह की घटना न हो सब उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे सीख लेना पड़ेगा।
0: राज्य में लगातार बारिश से डैम लबालब भर गए हैं। रांची का गेतलसूद डैम के 2 रेडियल गेट खोले जाने से हुनरू, जोन्हा और सीता फॉल उफान पर है। खतरे को देखते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने स्थिति सामान्य होने तक सभी फॉल और डैम में नहाने, बोटिंग और पर्यटकीय गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। प्रशासन ने बीडीओ, सीओ और पुलिस को अलर्ट पर रखते हुए बैरिकेडिंग और पर्यटक मित्रों की तैनाती की है। मौसम विभाग ने आज से मौसम धीरे धीरे साफ होने की उम्मीद जताई है। हालांकि विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि झारखंड के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश और तेज हवा की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 29 के बाद से मौसम के पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने चुनाव आयोग की कल की संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, एसआईआर में नाम कटा तो घर जाकर दस्तावेज लेंगे अधिकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चुनाव आयुक्तों में मतभेद नहीं, तीनों ने बैठक कर कहा सर्वसम्मति से हुए थे एसआईआर के सभी फैसले। दैनिक भास्कर ने लगातार हो रही बारिश पर लिखा है, झारखंड में बारिश का कोटा पूरा, रांची में 19% ज्यादा बारिश। हिंदुस्तान ने एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन पहले पेज पर लिखा है, कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने कहा, एसआईआर के तहत नोटिस जारी किए गए मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे बीएलओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में कथित तौर पर अनुचित लाभ लेने के मामले में सीआईडी ने गिरिडीह से 2 और कोडरमा से 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में होगी हड़ताल। रिजर्व बैंक के निर्देश पर आज रविवार को खुलेंगे बैंक। और मौसम विभाग ने आज से मौसम साफ होने की जताई उम्मीद, राज्य के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और तेज हवा चलने की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही एक पूरा दौर हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। ऐसी ही एक दमदार, बुलंद और भावपूर्ण आवाज के मालिक थे महेंद्र कपूर। उनकी आवाज में जहां प्रेम की कोमलता सुनाई देती थी, वहीं देशभक्ति की गीतों की वही आवाज जोश और गर्व से भर देती थी। खासकर मेरे देश की धरती सोना उगले ने महेंद्र कपूर की आवाज को देशभक्ति के गीतों की पहचान बना दी। यह गीत फिल्म उपकार का था और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए इसी गीत से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

श्रोताओ, महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। बाद में उनका परिवार मुंबई आ गया। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी। उस दौर के महान गायक मोहम्मद रफ़ी उनकी प्रेरणा थे। महेंद्र कपूर ने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली थी और कई गुरुओं से संगीत सीखा था। इसे उनकी आवाज़ में शुरू की मजबूती और शास्त्रीय आधार विकसित हुआ। उनकी संगीत साधना केवल फिल्मी गीतों तक सीमित नहीं थी, वे अपनी गायकी को लगातार निखारने में विश्वास रखते थे। महेंद्र कपूर ने एक अखिल भारतीय गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, वहां अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसी प्रतियोगिता ने उन्हें फिल्मी दुनिया के दरवाजे खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शुरुआती फिल्मी सफ़र में बी सांताराम की फिल्म नवरंग से जुड़ा, जिसमें उन्होंने आधा है चंद्रमा रात आधी गीत गाया था और इस गीत का संगीत सी रामचंद्रन ने दिया था।

श्रोताओ, महेंद्र कपूर को अपने लंबे संगीत सफर के लिए कई महत्वपूर्ण सम्मान मिले, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए मेरे देश की धरती फिल्म उपकार के लिए मिला, फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गायन के लिए चलो एक बार फिर से गुमराह फिल्म के लिए, फिल्म फेयर पुरस्कार नीले गगन के तले हमराज फिल्म के लिए, और फिल्म फेयर पुरस्कार और नहीं बस और नहीं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के लिए पद्मश्री 1972 में मिला, और उन्हें महाराष्ट्र और अन्य संस्थाओं से भी विभिन्न संगीत सम्मान प्राप्त हुए। महेंद्र कपूर ने फिल्मों के अलावा टेलीविज़न के लिए भी अपनी आवाज़ दी। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत के शीर्षक गीत संगीत से उनकी आवाज़ को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर मिला। महेंद्र कपूर का निधन 27 सितंबर यानी कि आज के ही दिन 2008 में मुंबई में 74 वर्ष की उम्र में हुआ था। श्रोताओं, महेंद्र कपूर केवल एक पार्श्व गायक नहीं थे, वे एक ऐसे स्वर थे जिसमें हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू, प्रेम की मिठास और देशभक्ति का जोश एक साथ सुनाई देता था। जब उनकी आवाज़ मेरे देश की धरती गूंजती है तो मन में अपने देश के प्रति गर्व की भावना जाग उठती है, और जब वही आवाज़ चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों गाती है तो दिल में रिश्तों की कसक महसूस होती है। आज हम उन्हीं के गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। अब आइए आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय हमें कभी रोककर यह नहीं बताता कि वह कितना कीमती है, वह बस चुपचाप गुजरता जाता है। श्रोताओं, जीवन में धन खो जाए तो उसे मेहनत से दोबारा कमाया जा सकता है। कोई वस्तु खो जाए तो उसे फिर खरीदा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। किसी अच्छे काम को कल पर टालने के बजाय उसकी शुरुआत आज से कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत संभावना वही पल है जो इस समय हमारे पास है। श्रोताओं, चलिए लगे हाथों आपको मौसम की भी जानकारी दे देते हैं। तो मौसम विभाग के अनुसार अब मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कल के टेम्परेचर को देखा जाए तो कल का भी अधिकतम तापमान करीब करीब उतना ही रहेगा, यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज ह्यूमिडिटी रहेगी 84% तक। आज सूर्यास्त का समय होगा 5:44 पर और कल सूर्योदय का समय रहेगा 5:43 पर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। अब आइए आपको सुनवाते एक वार्ता। आज का विषय है पलामू प्रमंडल में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। इस विषय में आपको बताएंगे विनीत चंद्र पांडे।
1: जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो हमारे सामने अक्सर बड़े शहरों और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की तस्वीर आती है, लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि पलामू प्रमंडल प्रकृति, इतिहास, वन्य जीव, जलप्रपात और धार्मिक सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है। पलामू प्रमंडल में पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले शामिल हैं। इन तीनों जिलों में ऐसे अनेक पर्यटन स्थल हैं जिन्हें बेहतर सुविधाओं, प्रचार प्रसार और स्थानीय लोगों की भागीदारी के माध्यम से रोजगार के बड़े केंद्रों में बदला जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पलामू की। पलामू की पहचान उसके जंगलों, वन जीव और ऐतिहासिक विरासत से है। बेतला, पलामू टाइगर रिजर्व, केचकी और पलामू किला यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला क्षेत्र प्रकृति एवं वन्य जीवन पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। केचकी में नदी, प्राकृतिक वातावरण और पर्यटन सुविधाओं का विकास भी किया गया है। वहीं पुराना और नया पलामू किला हमारे ऐतिहासिक विरासत के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। झारखंड वन विभाग की जानकारी में केचकी, बेतला, पलामू किला और कमलदह झील सहित कई स्थानों को इको टूरिज्म से जोड़ा गया है। कल्पना कीजिए, अगर यहाँ आने वाले पर्यटकों को स्थानीय युवा प्रशिक्षित गाइड के रूप में अपनी सेवाएं दें, स्थानीय लोग होम स्टे चलाएं, स्थानीय भोजन उपलब्ध कराएं और हस्तशिल्प तथा स्थानीय उत्पाद बेचें, तो पर्यटन सीधे गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़ सकते हैं। बात करते हैं लातेहार की। लातेहार को प्रकृति ने बेहद खूबसूरती दी है। यहाँ बेतला राष्ट्रीय उद्यान, नेतरहाट, मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट, कोयल व्यू पॉइंट, सनराइज पॉइंट, अपर घांगरी जलप्रपात, पाइन फॉरेस्ट, नाशपाती उद्यान और लोध जलप्रपात जैसे अनेक आकर्षण हैं। जिला प्रशासन की पर्यटन सूची में इन स्थलों को विभिन्न क्षेत्रों में शामिल किया गया है। नेतरहाट को झारखंड के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ का सनराइज पॉइंट और मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण है। कोयल व्यू पॉइंट से प्राकृतिक दृश्य और कोयल नदी का मनोरम नजारा देखा जा सकता है। और फिर आता है लोध जलप्रपात, जिसे बुधा घाट भी कहा जाता है। इसके अलावा अपर घांगरी और अन्य जलप्रपात पूरे क्षेत्र को साहसिक और प्राकृतिक पर्यटन के लिए विशेष बनाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं गढ़वा की। गढ़वा में श्री वंशीधर मंदिर, सुखलदही जलप्रपात, गुरु सिंधु जलप्रपात, सतबहिनी जलप्रपात और अनराज डैम जैसे स्थल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। नगर उटारी स्थित श्री बंसीधर मंदिर धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। जिला प्रशासन के अनुसार यहाँ राधा कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमाओं के कारण इन स्थल की विशेष धार्मिक पहचान है। वहीं सुखलदरी, गुरु सिंधु और सतबहिनी जैसे जलप्रपात प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। गढ़वा जिला प्रशासन की वेबसाइट भी इन स्थलों को प्रमुख आकर्षणों के रूप में उल्लेखित करती है। अब सवाल है, पर्यटन से रोजगार कैसे पैदा होगा? श्रोताओं, पर्यटन केवल घूमने फिरने का साधन नहीं है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों की आजीविका जुड़ सकती है। मान लीजिए कोई पर्यटन बेतला आता है, उसे रहने के लिए होटल चाहिए, होटल में कर्मचारी चाहिए, खाने के लिए रेस्टोरेंट चाहिए, घूमने के लिए वाहन चाहिए, स्थानीय पर्यटन स्थल की जानकारी देने के लिए गाइड चाहिए, वह स्थानीय वस्तुएं खरीदना चाहेगा, फोटोग्राफी की डिजिटल सेवाओं की जरूरत होगी। इस तरह एक पर्यटन का आगमन केवल एक व्यक्ति की आय नहीं बढ़ाता, बल्कि उससे जुड़े कई परिवारों की आय के रास्ते खुल सकते हैं। हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए पर्यटन में अनेक अवसर हैं। टूरिज्म गाइड, ड्राइवर, होटल कर्मचारी, रेस्टोरेंट, होम स्टे, ट्रैवलर एजेंसी, फोटोग्राफी, वीडियो निर्माता, डिजिटल मार्केटिंग और पर्यटन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार विकसित किए जा सकते हैं। आज का युवा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्र के पर्यटन स्थलों का प्रचार कर सकता है। अगर कोई युवा किसी जलप्रपात, ऐतिहासिक किले या प्राकृतिक स्थल पर सुंदर वीडियो बनाकर देश दुनिया तक पहुँचाता है, तो वह स्वयं भी रोजगार का माध्यम बन सकता है और अपने क्षेत्र को भी पहचान दिला सकता है। महिलाओं के लिए भी अवसर है। पर्यटन का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि इसमें महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जा सकता है। स्थानीय महिलाएं पारंपरिक व्यंजन, अचार, पापड़, हस्तशिल्प, बांस और वन आधारित उत्पाद और स्थानीय खाद्य सामग्री पर्यटकों तक पहुंचा सकती है। अगर प्रत्येक प्रमुख पर्यटन स्थल पर स्थानीय उत्पादों के लिए व्यवस्थित बाजार बनाया जाए तो गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। होम स्टे बन सकता है रोजगार का माध्यम। पलामू प्रमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे की भी बड़ी संभावनाएं हैं, जो परिवार अपने घर में पर्यटकों के लिए सुरक्षित स्वच्छ कमरे उपलब्ध करा सकते हैं। वे अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। पर्यटन केवल होटल नहीं चाहता, आज बहुत से लोग स्थानीय जीवन, स्थानीय भोजन और स्थानीय संस्कृति को भी अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए ग्रामीण पर्यटन और जनजातीय सांस्कृतिक पर्यटन हमारे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। पर्यटन के साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हम पर्यावरण का विकास करें लेकिन अपनी प्रकृति को नुकसान पहुँचा कर नहीं। पलामू के जंगल, बेतला, टाइगर रिजर्व, नेतरहाट और के पहाड़ और जलप्रपात हमारे सबसे बड़ी प्रकृति संपत्ति है। इसलिए हमें स्वच्छता, प्लास्टिक नियंत्रण, जल संरक्षण, वन जीवन संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन पर विशेष ध्यान देना होगा। पर्यटन ऐसा हो जिससे प्रकृति भी सुरक्षित रहे और स्थानीय लोगों की आय भी बढ़े। अगर हम वास्तव में पलामू प्रमंडल को पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सभी पर्यटन स्थल को बेहतर सड़क और परिवहन सुविधा को जोड़ना होगा। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सुरक्षा और सूचना केंद्र जैसी सुविधाएं बढ़ानी होगी। स्थानीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड और पर्यटन प्रबंधन का प्रशिक्षण देना होगा। पलामू, लातेहार और गढ़वा को मिलाकर एक समग्र पर्यटन सर्किट विकसित किया जा सकता है। स्थानीय उत्पादों को पर्यटन बाजार से जोड़ना होगा। डिजिटल माध्यमों से पलामू प्रमंडल की प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। कल्पना कीजिए, पर्यटक झारखंड आते हैं, वह बेतला से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, पलामू किला देखते हैं, केचकी जाते हैं, फिर नेतरहाट पहुंचते हैं, सनराइज पॉइंट और कोयल व्यू पॉइंट देखते हैं, मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट एवं सूर्यास्त का आनंद लेते हैं, फिर लोध जलप्रपात जाते हैं। इसके बाद गढ़वा पहुंचकर श्री वंशीधर मंदिर और सुखलदरी जैसे स्थलों का भ्रमण करते हैं। इस तरह तीनों जिलों को जोड़कर एक ऐसा पर्यटन मार्ग विकसित किया जा सकता है जिससे पर्यटन का ठहराव बढ़े और स्थानीय अर्थव्यवस्था में अधिक पैसा पहुंचे। श्रोताओं, पलामू प्रमंडल के पास प्रकृति है, जंगल है, वन जीव है, जलप्रपात है और पहाड़ है, इतिहास है, धार्मिक आस्था है और समृद्धि स्थानीय संस्कृति है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, आवश्यकता है सही योजना, बेहतर

0: आधारभूत संरचना, स्थानीय लोगों की भागीदारी और सतत पर्यटन विकास की। अगर पर्यटन को केवल घूमने की व्यवस्था न मानकर रोजगार और स्थानीय का माध्यम बनाया जाए, हजारों युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के लिए अवसर मिल सकते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने पर्यटन स्थलों को पहचानें, उन्हें संरक्षित करें और दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। पलामू प्रमंडल केवल प्राकृतिक सुंदरता की भूमि नहीं है, यह रोजगार, उद्यमिता और विकास की भी अपार संभावनाओं की भूमि है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, अपने पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखें, अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे, अपनी संस्कृति को सम्मान देंगे और स्थानीय युवाओं को पर्यटन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे पलामू प्रमंडल में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना, इस विषय में आपको बता रहे थे विनीत चंद्र पांडे। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीनी या सुगर हमारी चाय की मिठास को बढ़ाता है, हमारी खीर की मिठास को बढ़ाता है, वो कैसे बनता है, कैसे हम तक पहुंचता है? तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, तो गन्ने की कटाई और उसकी सफाई की जाती है। सबसे पहले खेतों में तैयार गन्ने की कटाई की जाती है। गन्ने को मिल में लाकर उसी लगी मिट्टी, पत्तियां और दूसरी अशुद्धियां हटाई जाती हैं। इसके बाद गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। अब कटे हुए गन्ने को बड़ी बड़ी मशीनों और रोलरों के बीच दबाया जाता है, जिससे गन्ने का मीठा रस निकलता है। बचे हुए रेशेदार पदार्थ को बैगास कहते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर चीनी मिल में ईंधन और बिजली बनाने के लिए किया जाता है। गन्ने के रस में मिट्टी, पौधे के छोटे कण, दूसरी अशुद्धियां होती हैं, इसलिए रस को गर्म किया जाता है और उसकी सफाई के लिए नियंत्रित मात्रा में चूना आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अशुद्धियां अलग होकर नीचे बैठती हैं या छान दी जाती हैं और साफ रस को आगे भेज दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, अब साफ किए गए रस में काफ़ी मात्रा में पानी होता है। इसे बड़े बड़े इवापोरेटर्स में गर्म करके पानी को भाप के रूप में बाहर निकाला जाता है। रस धीरे धीरे गाढ़ा होकर शरबत जैसी चाशनी में बदल जाता है। अगला कदम होता है गाढ़ी चाशनी को विशेष वैक्यूम पैन में नियंत्रण तरीके से गर्म किया जाता है। इसमें चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल बनने लगते हैं। यही क्रिस्टल आगे चलकर हमारी चीनी बनते हैं। अब चाशनी में चीनी के क्रिस्टल और गाढ़े तरल दोनों होते हैं। इन्हें सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है और तेज गति से घूमने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं और गाढ़ा तरल यानी कि शीरा अलग निकल जाता है। अलग किए गए चीनी के क्रिस्टलों में थोड़ी नमी होती है, उन्हें सुखाया और ठंडा किया जाता है ताकि चीनी अच्छी तरह से सूखी रहे और आपस में ना चिपके। अंत में चीनी को उसके दाने के आकार और गुणवत्ता के अनुसार छाना जाता है, फिर उसकी जांच करके पैकेट, बोरी और पैकेजिंग, मतलब जिस जैसे ज़रूरत होती है वैसे भरकर उसे आगे भेज दिया जाता है। तो ये थी बात कि चीनी हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। तो श्रोताओं, कुछ प्रमुख बातें हैं जो चीनी के बारे में हमें जानना चाहिए और इसको यूज़ करने में सावधानी भी बरतनी चाहिए। चीनी हमें ऊर्जा देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी ज़्यादा चीनी खाएंगे उतना ही अच्छा होगा। बहुत अधिक एडिड शुगर यानी कि भोजन या पेय पदार्थ में अतिरिक्त रूप से डाली गई चीनी का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए चाय, मिठाई, मीठे पेय, बिस्किट, केक और दूसरे मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। और अब तो चीनी की कीमत आप सभी को पता ही है कि क्या हुआ है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि चीनी नहीं तो गुड़ सही। अब गुड़ और चीनी में क्या अंतर है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। गुड़ बनाना, चीनी बनाना दोनों आसान है। गुड़ का रंग भूरा होता है और चलिए इसकी शुरुआत

0: कैसे होती है। चीनी हो या गुड़, दोनों की शुरुआत गन्ने से ही निकलने वाले मीठे रस से होती है। गन्ने को मशीन में दबाकर उसका रस निकाला जाता है, उसके बाद असली अंतर शुरू होता है। यहाँ से चीनी बनाने में रस को ज़्यादा शुद्ध किया जाता है और चीनी के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। वहीं गुड़ बनाने में गन्ने के रस को साफ करके मुख्य रूप से गर्म कर गाढ़ा किया जाता है और उसे जमा कर गुड़ तैयार किया जाता है। इसमें कुछ चरण में इसे निभाया जाता है। तो गन्ने को साफ करके मशीन में दबाया जाता है, रस निकाला जाता है, रस की सफाई की जाती है, फिर उसकी अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं, फिर उसे गर्म किया जाता है और धीरे धीरे यह जो पानी होता है वो उड़ जाता है और जो गाढ़ा पदार्थ बचता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और उसे अपने मनचाहे आकार में जमाया जाता है, जिसे हम गुड़ या जैगरी कहते हैं। लेकिन बात यह है कि चीनी और गुड़ दोनों का इस्तेमाल करना क्या हमारी सेहत के लिए ठीक है? ठीक है, कुछ हद तक गुड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चीनी को थोड़ा अपनी ज़िंदगी में थोड़ा कम करें। वैसे भी कहा जाता है कि जो वाइट चीज़ें होती हैं, मतलब हमको अपने जीवन से कुछ नहीं, तीन सफ़ेद चीज़ हैं जिसे हटाना चाहिए अगर आपको सेहतमंद रहना है, उसमें चीनी भी आता है, चीनी, मैदा और नमक, इसे भी थोड़ा कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। तो आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो थोड़ा गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा अपने खाने की मात्रा में, लेकिन चीनी से थोड़ा दूरी बना लें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। चलिए श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते बस यही कहना है कि आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते और स्वस्थ रहें। अपने इस कार्यक्रम यानी जोहार पलामू से अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दें, नमस्कार और सुनते रहें ये प्यारा सा गीत।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

श्रोताओं नमस्ते, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्मकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने केवल फिल्में नहीं बनाई बल्कि फिल्मों के जरिए प्यार, रिश्तों, भावनाओं और जिंदगी को देखने का एक नया अंदाज दिया। जब हिंदी फिल्मों के रोमांस की बात आती है तो एक ही नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है और वो है यश चोपड़ा। उन्हें लोकप्रिय रूप से किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। 5 दशक से अधिक लंबे अपने करियर में उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसमें प्रेम के साथ साथ परिवार, रिश्ते, संघर्ष, समाज और मानवीय भावनाओं की को प्रमुखता से दिखाया गया। आज यश चोपड़ा यानी 27 सितंबर को आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज हम उन्हीं की फिल्मों के गानों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1932 को लाहौर के तत्कालिक ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनका संबंध पंजाब की मिट्टी और संस्कृति से बहुत गहरा रहा है। उनके बड़े भाई बी आर चोपड़ा भी हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्मकार थे। यश चोपड़ा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत अपने बड़े भाई बी आर चोपड़ा के साथ सहायक निर्देशक के रूप में की। यहीं से उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियों को सीखना शुरू किया।

यश चोपड़ा ने 1959 में फिल्म धूल का फूल से निर्देशन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने धर्मपुत्र बनाई और उसे 1962 में राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। फिर आई फिल्म वक्त 1965 में। यह फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। इसे भारत की शुरुआती बड़ी मल्टी स्टारर पारिवारिक फिल्मों में गिना जाने लगा। इसके बाद इत्तेफाक और आदमी और इंसान जैसे फिल्मों ने उनके निर्देशन की क्षमता को और मजबूत किया। आज यश चोपड़ा को अक्सर रोमांस के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनके शुरुआती सिनेमा में सामाजिक मुद्दों की मजबूत उपस्थिति थी। धूल का फूल, धर्मपुत्र, वक्त, इत्तेफाक, बाद में दीवार और त्रिशूल जैसी फिल्मों से पता चलता है कि उनकी फिल्मों में केवल प्रेम कहानी नहीं थी, उनके सिनेमा में परिवार, सामाजिक परिस्थितियां, संघर्ष, महत्वाकांक्षा और रिश्तों की जटिलता भी दिखाई देती थी।

श्रोताओं, साल 1970 में यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी यश राज फिल्म्स यानी YRF की स्थापना की। इस बैनर की पहली फिल्म थी दाग, जो 1973 में रिलीज हुई थी। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी प्रमुख भूमिकाओं में थे। यहीं से यश चोपड़ा के निर्माता और निर्देशक के रूप में एक अध्याय की शुरुआत हुई। इसके बाद आई दीवार 1975 में। फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय सहित शानदार कलाकार थे। उसके बाद आई कभी कभी 1976 में। फिर आई काला पत्थर, यह फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों और उनके संघर्ष की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, राखी और नीतू सिंह जैसे कलाकार थे।

श्रोताओं, यश चोपड़ा की फिल्मों की एक बहुत बड़ी पहचान उनकी संगीत भी था। उनकी फिल्मों में गीत कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते थे। कभी कभी सिलसिला, चांदनी, डर, दिल तो पागल है, वीर जारा जैसे फिल्मों के गीतों ने दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई। उनकी फिल्मों में गीतों के माध्यम से प्रेम, विरह, मिलन, इंतजार और रिश्तों की भावनाओं को व्यक्त किया जाता था। यही वजह है कि यश चोपड़ा के फिल्म का संगीत अक्सर फिल्मों की कहानी से अलग नहीं लगता था। शाहरुख खान और यश चोपड़ा का रिश्ता काफ़ी लंबा रिश्ता रहा है। यश चोपड़ा और शाहरुख खान की जोड़ी हिंदी सिनेमा की यादगार जोड़ियों में शामिल है। डर, दिल तो पागल है, वीर जारा और जब तक है जान जैसी फिल्मों में दोनों के साथ काम किया। यश चोपड़ा की अंतिम निर्देशित फिल्म जब तक है जान भी शाहरुख खान के साथ थी। यश चोपड़ा ने अपने निर्देशन करियर की अंतिम फिल्म जब तक है जान बनाई। फिल्म में शाहरुख खान, कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म 13 नवंबर 2012 को रिलीज हुई। यश चोपड़ा का निधन फिल्म के रिलीज के कुछ सप्ताह पहले यानी 21 अक्टूबर 2012 को हुआ। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। इस फिल्म में उन्होंने 80वें जन्मदिन पर अपना अंतिम निर्देशन कार्य बताया था।

यश चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2001 में मिला था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला उन्हें। राज कपूर पुरस्कार भी मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा भी एक गायिका थी। उनके बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा आगे चलकर फिल्म निर्देशक और निर्माता बने और YRF को आगे बढ़ाया। उनके छोटे बेटे उदय चोपड़ा ने भी फिल्मों में काम किया और बाद में YRF एंटरटेनमेंट टीम से जुड़ गए। यश चोपड़ा की फिल्मों को याद करें तो कभी बर्फ से ढकी पहाड़ियां नज़र आती हैं, कभी सरसों के खेत नज़र आते हैं, कभी बारिश में भीगा हुआ प्यार, तो कभी किसी रिश्ते की खामोश पीड़ा। लेकिन यश चोपड़ा ने सिनेमा की असली खूबसूरती केवल इन खूबसूरत दृश्यों में नहीं थी। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से यह दिखाया कि प्रेम केवल मिलना नहीं है, प्रेम में इंतजार भी है, त्याग भी है, दूरी भी है और यादें भी हैं। धूल का फूल से शुरू हुआ सफ़र जब तक है जहाँ तक पहुँचा और 5 दशक से अधिक लंबे समय में यश चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा को ऐसी कहानियाँ दी जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन दोपहर में बलरामपुरम में श्री उथराडोम तिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री शाह साबरमती लोको शेड में नवनिर्मित WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह उच्च क्षमता वाले WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी रवाना करेंगे। इसके बाद श्री शाह साबरमती रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे देश की पहली तरल प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाली डेमू रेलगाड़ी को भी रवाना करेंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। रिजर्व बैंक ने आज सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM से संबद्ध शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हित करेंसी भंडार को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मौजूदा संघर्ष के बीच सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल डॉक्टर जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्ष के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने को कहा। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताते हुए आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोफ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए श्री लैवरोफ ने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। उन्होंने रूस, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के अंतर्गत पश्चिमी देशों के लिए अतिरिक्त स्थायी सीट नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई। तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है, ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है। और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं मंदाकिनी जी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी, जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूँ, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना, बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तू, उस पे बात पे आ रही है। पर वही
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहाँ तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आर डी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूँ।
0: जी,
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत
0: जो थी,
1: बहुत बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचम दा का ही गीत सुन लिया जाए, जिसमें आपने अपनी आवाज दी।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
0: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
1: कोशिश करूंगी, गला बंद है पर कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले।

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
1: जी,
0: वो बच्चा अपने
1: वो मुझे पंचम दा ने सिखाया पता है, उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो
0: जी, डैडी
1: शर्मिला हाँ। जी कैसे बोलती हैं
0: हाँ।
1: मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा बोले यही चाहिए मुझे हाँ आगे क्या है डैडी
0: हाँ।
1: मैं तो भूल ही गया मुझे वो चाहिए। बहुत यादें आपने ताजा की
0: जी,
1: आज
0: जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी। कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं
0: जी
1: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी,
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी।
0: अच्छा
1: जी मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं, तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
0: जी
1: कोई भी गाना अच्छा।

0: पर तेरा दादा तुझे
1: दीगा
0: तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
1: अरे
0: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए है, प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा।
1: बिल्कुल।
0: एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे। दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे और
1: अच्छा।
0: फिर ओवर टाइम। तो वहीं सोए थे वो, उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचम दा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
1: जी
0: बहुत ज्यादा।
1: जी
0: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे, वो
1: कि आप
0: गाएगी,
1: गा लेंगे।
0: हाँ बोले वो गाएगी, गाएगी पंचम, वो गाएगी गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी।
1: जी
0: जब वो आए, उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है, ये आवाज, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो, इसकी आवाज जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल सूट
1: सूट
0: होती है,
1: करती है।
0: इस करके ये गाना
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: मिला।
1: है। तो
0: प्लीज
1: चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। बताइए, तेरा
0: प्लीज,
1: मुझसे है पहले का
0: बिल्कुल
1: नाता कोई,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आप ही का गाया हुआ सुन
0: जी
1: रही
0: जी

0: मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी जी
0: ये गाना बन गया।
1: जी बिल्कुल
0: तेरा मुझसे है पहले का
1: नाता
0: नाता कोई।
1: कोई।
0: कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं
1: जी
0: लोगों ने,
1: जी जी
0: किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, ओ मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए, पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा जिसने है सबको

0: मिला है उसी को बुलाना तू आ जा। हाँ, ये जो वो बोलते थे ना मंदा, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही हूं,
1: जी जी
0: देखिए
1: जी
0: मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ, यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये रा रा, और सॉफ्ट उसी को बुलाना तो आ जा
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात है,
0: ये मैंने
1: ये
0: उनसे
1: आधार का
0: सीखा।
1: जी, ये पंचम धाम में ही ये
0: या
1: गुण
0: ये
1: थे
0: उतार चढ़ाव
1: जी
0: डायनामिक्स हम जिसे
1: जी
0: कहते,
1: जी जी
0: कहां कितना आपको जोर देना
1: देना
0: है,
1: है।
0: कहां आपको कितना सॉफ्ट करना है,
1: वाह
0: कहां आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
1: वाह
0: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते थे।
1: जी जी जी मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का
0: हाँ,
1: प्यार मिला, स्नेह मिला,
0: बहुत
1: उस
0: बहुत
1: छत्र छाया में आपने
0: बिल्कुल,
1: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
0: ये मेरा
1: जो
0: भाग्य ही है।
1: नसीब नहीं
0: हाँ हाँ
1: मिलता है, अच्छे
0: बिल्कुल,
1: अच्छों को नहीं मिला है।
0: नहीं
1: अभी
0: मिल,
1: भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है
0: ना ना
1: जिनको
0: ना
1: हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले
0: ना
1: सके,
0: ना
1: सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हा,
0: थी
1: हा, हा,
0: है ना,
1: हा, जी
0: बांग्लादेश वॉर के
1: जी
0: ऊपर वो
1: जी
0: था, वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात,
1: बारात, वाह।
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ एक और मेरे दिल के करीब का गाना
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना।
1: करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान
1: हाँ, बिल्कुल जी।
0: है तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू
1: जी
0: गाऊंगी
1: बिल्कुल,
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
1: कोल्हापुरी
0: कोल्हापुरी।
1: ने जी।
0: लेकिन इसके क्या होता, वहां प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा वो लेकर
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: जी जी
0: तो वहां एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
1: अच्छा,
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन साहब
0: जी
1: ने।
0: कि मैं बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर
1: अरे
0: अब सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: नहीं। मैंने
1: हाँ
0: कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूं और मैं लता जी के साथ गा रही हूं,
1: सबसे बड़ी
0: वही
1: बात
0: मेरे लिए काफी है।
1: जी।
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है आप,
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा, शर्त यही है।
0: प्लीज मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूँ ना, फेड इन फेड आउट, पुश बैक
1: जी
0: पुश बैक,
1: जी
0: वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचम दास से
1: जी
0: सीखी।
1: जी
0: डा डा रा रा रा रा रा रा, आप समझे?
1: वो खुद भी ऐसे ही
0: डा
1: गा
0: रा,
1: देते
0: हाँ
1: हैं
0: बिल्कुल
1: जी।
0: डा।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा, तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात
1: धर्म कर्म
0: की फिल्म
1: धर्म कर्म भी था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मुकेश अंकल के साथ,
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पाकधरी के साथ गाया है। तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया? इस गीत को गाना आसान नहीं था
1: मंदाकिनी जी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे। फिर मैं गाती थी एक तो ना, ये मेरा चॉइस रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हम माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
0: जी,
1: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अलग गेम है,
0: विधा है।
1: बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है। लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में मुझे लगता है बचपन से था प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है, कर दो ना। अच्छा, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया, तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए। तरम पम उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
0: जी
1: ए मुकेश चंद, वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम

0: पम नहीं आ रहा है तुम्हारा।
1: अरे
0: पर उनके उनका बड़प्पन देखिए, ये पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ, मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बाप्पी दा की पहली फिल्म थी
1: जी,
0: नन्हा शिकारी।
1: अच्छा
0: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे, तो वो बापीदा की पहली फिल्म थी। और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बापीदा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो, नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस कि अब तो गदा पड़ी। लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे, इवन रिकॉर्डिंग्स में वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही आप।
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए
1: क्या बात है।
0: वहां मैंने ये एक और, मैं बहुत नोट करती थी ये सब बातें,
1: ये नम्रता भी,
0: ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना, जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
1: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा रहा हो उसको अप्रिशिएट करते हुए,
0: और वही बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश वो तरमपम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे।
1: अरे
0: राज बच्चा तरमपम बोलेगा और मैं बोलूं, उसमें फर्क तो होगा। अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो कह, अच्छा बता बेटा कैसे बोल रही है, तरमपम तरमपम, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
1: क्या
0: नहीं तुम्हारे अंतरे में तुम बोलोगे, चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस,
1: बिल्कुल
0: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
1: बिल्कुल इसको इसको स्वीकार कर लेना,
0: ये ईमानदारी
1: जी
0: है
1: जी,
0: ना
1: जी,
0: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी जी।
1: जी, जी
0: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
1: जी,
0: क्यों मैं समझती हूँ हर कलाकार के लिए ये वो है,
1: फिल्म धर्म कर्म का
0: वो जो अंतरा है कि ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले।

0: एक दिन बिक
1: क्या
0: जाएगा,
1: बात है,
0: एक दिन बिक जाएगा
1: माटी
0: माटी के
1: के
0: मोल,
1: मूल
0: ये
1: में।
0: हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये
1: बिल्कुल
0: गाना
1: बिल्कुल, ये
0: बजाइएगा
1: गाना हम बजाएंगे और हमारे
0: जी
1: श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: ये गीत।
0: ना।

इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आपका शायद

0: दिन गाना था
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे
0: जी शिवांगी
1: जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर की मां
0: है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी
0: जी।
1: मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब, वो कौन थे वो
0: जी,
1: मैं
0: जी,
1: क्या थी उनके आगे और क्या हूँ, इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, एक के नडियाड वाला फिल्म्स, आ गले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम
0: जी,
1: किया
0: जी
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है और
1: मैं
0: ताउम्र याद रहने वाली बात
1: और
0: है।
1: ये आखिरी गीत इतनी शक्ति, हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी, कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने, फिर बहुत बदकिस्मत इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता है मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूं। देखिए मैंने सबकी जो करियर्स की जो शुरुआत हुई है काफी, जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी
0: उनके शुरुआती दौर में,
1: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस यस,
0: आप हमारे लिए लकी हैं।
1: तो ये हमने सोचा ही नहीं
0: जी,
1: था
0: जी।
1: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा।
0: बिल्कुल
1: है ना, आज देखिए मतलब क्या किस स्तर पे वो गाना पहुंच
0: बिल्कुल,
1: गया।
0: बिल्कुल। और पुष्पा जी जैसी गायिका जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके
1: हाँ,
0: साथ गाना आपको मिला।
1: बिल्कुल। और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर, मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
0: वो वही थी,
1: ये उन लोगों की ग्रेटनेस
0: जी,
1: थी,
0: वो पुष्पा जी की ही आवाज हो सकती थी।
1: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
0: जी कीजिएगा जरूर है,
1: तब मैं आपको बताऊंगी
0: जी मेरा ही सवाल है
1: क्या फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
0: खड़े हो गए,
1: बस वो गाना
0: जी, जी
1: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने, तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, प्लीज आइएगा हमारे
0: जी,
1: बैंक में, सिर्फ आइएगा, तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया
0: जी।
1: मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में शायद, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
0: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की दुनिया में हम कई बार जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं तो ये गाना नंबर वन पर होता
1: देखिए।
0: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से, और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को हर घोषक ने बजाया है।
1: और अफसोस कि जिन लोगों ने जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी, कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, वो पहचान, वो स्थान नहीं।

0: मिला जिसके वो काबिल हैं, जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चले तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
0: कितने गुणी बाप रे।
1: बिल्कुल
0: तो
1: चलिए ये गीत हम सुनते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।

0: तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्दल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
6: कोई बोले राम राम।
5: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और यूट्यूब पर भी उपलब्ध। आराधना

0: best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक कितना ब्लॉक करूँ यार
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता हर बार नया नंबर आ जाता है
4: तो क्या करूँ
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
4: मतलब सब...

0: का स्पैम कम होगा।
1: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकाल।

वाले जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था।
उसे तोड़

किया गया था, यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों,

सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया, यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व

0: और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई हैं। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा, घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे?
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: साथियों, चित्रपट संगीत में अभी आपने सुना लता मंगेशकर, उदित नारायण और गुरुदास मान की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा ये गीत। संगीत था मदन मोहन का और फिल्म का नाम था वीर जारा।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
3: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
4: आइए सुने अगला गीत गायक और संगीतकार A.R. रहमान की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और फिल्म का नाम है स्वदेश।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: आइए सुने अगला गीत बी पराग की आवाज में। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीत है ओरको का और फिल्म का नाम है केसरी।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: विविध भारती से अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन को उन्होंने जो दिशा और ऊर्जा दी, अयोध्या में भव्य मंदिर उसी का निर्माण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया। उन्होंने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। नशा मुक्त युवा अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज ग्राहकों की सुविधा के लिए खुले हैं। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्माता निर्देशक, जिन्हें किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता है, जिन्होंने यशराज फिल्म्स की स्थापना की और बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों को एक नई दिशा दी। पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित यश चोपड़ा, और उनके साथ ही हम याद करेंगे पार्श्व गायक, हिंदी फिल्मों में 5 दशकों से अधिक समय तक काम करने वाले, जिन्हें मुख्य रूप से उनके देशभक्ति गीतों के लिए भी याद किया जाता है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री, महान गायक महेंद्र कपूर को। तो कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और बाबला की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं शिव हरी, फिल्म का नाम है चांदनी।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। महेंद्र कपूर, बलबीर, जोगिंदर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर, लुधियानवी संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आदमी और इंसान।

0: अंतराल के बाद यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमानिगार हैं हसन कमाल, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है निकाह।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है शिव हरी का, फिल्म का नाम है डर।

0: अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुने अगला गीत। महेंद्र कपूर की आवाज में नगमानिगार है हसन कमाल, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है तवाइफ।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना उत्तम सिंह की और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
4: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है वीर जारा।

0: के सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा सामने है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

0: परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

0: एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi said that India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control LOC to take action against terrorism. Prime Minister Modi said the surgical strike was India's decisive response to the long-standing pain the nation had endured due to terrorist attacks. He stated that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
0: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: On the ongoing census, Mr. Modi said the first phase of this exercise is nearly complete across all states and UTs. Data from over 32 crore families has already been recorded. Mr. Modi emphasized that the census is a national responsibility for all. He added that the facility to self-register census details is very convenient, and people can register information about themselves and their families directly from their mobile phones. Along with Hindi, this facility is available in 16 languages. The Prime Minister said the entire process takes about 15 to 20 minutes. Prime Minister Modi noted that India began the year celebrating national pride through the Somnath Swabhiman Parv. He highlighted that despite Mahmud of Ghazni first demolishing the coastal Somnath temple a millennium ago in 1026 AD, it still stands grandly, symbolizing India's immortality. Mr. Modi linked this to the Modera Sun Temple in Gujarat, which Ghazni also attacked and destroyed in 1026 AD, just a year after King Bhimdev I built it in 1025 AD. However, King Bhimdev I confronted Ghazni's forces and swiftly rebuilt the Modera Temple. Mr. Modi opined that it is because of this very resilience that the Somnath Temple too was repeatedly rebuilt after multiple destructions, including later devastation by Alauddin Khilji, emphasizing that Indians view the sun as a source of light, energy, science and continuity rather than just an architectural deity. The PM shared that Modera has evolved into the country's first Surya Gram solar village, running entirely on solar energy as a model of sustainability. Inviting people to witness this heritage, the Prime Minister also highlighted the Modera Dance Festival, which showcases India's classical dances every January following Makar Sankranti. The Prime Minister also mentioned Mahatma

0: के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहा है और देश इसके नतीजे देख रहा है।
1: मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने जनगणना पर भी बात की और इसे सभी के लिए एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताया। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की मेरिट लिस्ट की गड़बड़ियों की जांच के लिए बनाई गई वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने कल मामले की सुनवाई की। इस दौरान JSSC की ओर से स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट कमीशन को सौंपी गई। JSSC ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में विषयवार और कोटिवार स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार की गई है और उसका अनुपालन किया गया है। इसके बाद कमीशन ने स्पष्ट किया कि 4 अक्टूबर से हर दिन मामले की सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने BIT सिंदरी के 4 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पक्ष में बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामूली तकनीकी त्रुटियों के आधार पर 4 साल लंबी चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को 8 सप्ताह के भीतर पदोन्नति अधिसूचित करने और पात्रता तिथि 2019 से सभी लाभ एवं वेतन का एरियर देने का निर्देश दिया है। पूर्वी सिंहभूम के विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर के सभी प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए केंद्र सरकार से प्रभावी नियंत्रण और सहायता की मांग की है। श्री राय ने कल जमशेदपुर में कहा कि उद्योग को लेकर झारखंड सरकार की प्रोत्साहन नीतियां सही नहीं है। उद्योगों के लिए जरूरी आधारभूत संरचना का नहीं होने से कामकाज प्रभावित होता है, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
2: प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि एक बार हम इस क्षेत्र में राज्य को बहुत अधिक शामिल नहीं करके और अपने स्तर पर करें तो ये सारे उद्योग बहुत अच्छा करेंगे। राज्य की सरकार ने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है उसका स्तर बहुत घटिया है। या सरकार के पास जो भारत सरकार से सहायता की राशि आती है वो अभी समय पर खर्च हो, जिसको देना चाहिए उसके पास ये पहुँचे, एक बार इसकी समीक्षा बहुत जरूरी है।
0: राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से धनबाद में नेशनल हाईवे टास्क फोर्स की टीम ने कल व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से खड़े 45 वाहनों का चालान काटकर कुल 3 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। कार्रवाई के साथ साथ सड़क सुरक्षा टीम द्वारा एक विशेष जागरूकता सत्र भी चलाया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एट AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एट AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से सरकार का यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया है।
1: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है।

0: इस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
1: संपूर्ण पर्यावरण के संतुलन के लिए चलाए गए मिशन लाइफ अभियान के तहत साहिबगंज जिले में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। साहिबगंज के वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल ने बताया कि पर्यावरण और इससे जुड़े विकल्पों पर काफी सकारात्मक असर हो रहा है।
2: प्रेम कुमार साह, ये प्लांटेशन पिछले साल किया गया था, आज ये प्लांटेशन लगभग एक वर्ष के पश्चात बहुत सारे पौधे यहाँ हो चुके हैं। इन पौधों के होने से यहाँ के जीव जंतुओं को आश्रय प्राप्त हुआ है।
3: मेरा नाम है फुलवंती मरंडी और वन विभाग में जो सखुआ का, केम का और बांस का पेड़ लगाया है। सखुआ का पत्ता से हम लोग पत्ता चुनते हैं और थाली सब बनाते हैं और बेचते हैं तो कुछ पैसा हो जाता है।
1: झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों के लिए 10 करोड़ 27 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट जारी किया है। यह राशि जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज और धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के स्थापना खर्च के लिए दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एम्स देवघर ने हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल HSSC के साथ MOA पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की दिशा में संस्थागत सहयोग मजबूत होगा। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो है। और अब खेल समाचार। झारखंड के सब जूनियर और जूनियर मलखंब टीम झांसी के श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में 27 से 29 सितंबर 2026 तक आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय मलखंब प्रतियोगिता में भाग ले रही है। यह प्रतियोगिता पारंपरिक भारतीय खेल मलखंब को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के 16 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सर्जिकल स्ट्राइक के 10 वर्ष होने की चर्चा की, कहा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहा आज का भारत। हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट गड़बड़ी मामले में 4 अक्टूबर से प्रतिदिन होगी सुनवाई। JSSC ने वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को सौंपी स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट। पूर्वी सिंहभूम के विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर के उद्योगों के विकास के लिए केंद्र सरकार से प्रभावी नियंत्रण और अतिरिक्त सहायता की मांग की। स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एम्स देवघर ने हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल HSSC के साथ MOA पर किया हस्ताक्षर। और झांसी में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय मलखंब प्रतियोगिता में झारखंड के सब जूनियर और जूनियर मलखंब टीम ले रही भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

विविध भारती से ये है कार्यक्रम सुरीला सफर, और आज सुरीला सफर में यश चोपड़ा के जन्मदिन को हम याद कर रहे हैं, महेंद्र कपूर की याद को नमन कर रहे हैं, और साथ में विश्व पर्यटन दिवस और विश्व नदी दिवस हम मना रहे हैं। तो आप अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते चलिए। हमने आपसे पूछा था, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? अभी तक बहुत कम जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं, और अपनी यादें आप ताज़ा करिए। और अगर आप सफ़र पे गए हैं और किसी पहाड़ पर, किसी पहाड़ी पर वादियों की सैर की है आपने, तो सबसे यादगार सफ़र कौन सा रहा है ये भी बता सकते हैं, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं, ताकि जब श्रोताओं को मौका मिले तो उन जगहों पर वो जा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा को भारतीय फिल्मों में विदेशी नज़ारों, विशेषकर बर्फीली वादियों और खूबसूरत झीलों को दिखाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड पर्यटन में की। फिल्म चांदनी का प्रभाव, उन्होंने फिल्म चांदनी के बड़े हिस्से की शूटिंग स्विट्जरलैंड में की, जिसके बाद वहाँ भारतीय पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं का जाना काफ़ी बढ़ गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत फिल्मों में सुंदर लव स्टोरी और खूबसूरत जगहों का दर्शन कराने वाले यश चोपड़ा जी के गीतों पर लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में आधुनिक तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी ऐसा मौका होता है, एक साथ छुट्टियां हो तो साथ में और भी छुट्टियां लेकर धर्मपत्नी, मैं और मेरे बच्चे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां नदियों और पहाड़ों के दर्शन हो, साथ में तीर्थ स्थलों के भी। तो बताइए कि आपके शहर या गांव के इर्द गिर्द कौन सी नदी है, और नदी को साफ सुथरा

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार का नाम पूछा था हमने, मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, यहां तक कि हमने सवाल पूरा किया उधर जवाब आने शुरू हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हरी भरी मैदान का सीना चीर कर बहती हुई एक बहुत छोटी सी जलधारा है जिसे महज एक छलांग लगाकर ही पार किया जा सकता है, लेकिन वो कोई नहर नहीं बल्कि एक नदी है क्योंकि नदी की सभी विशेषताएं उसमें हैं। मैं कभी गई तो नहीं, जाने की बहुत इच्छा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पर्यटन के बारे में पूछा है तो मैं समंदर के तट पर मुंबई और मेरे प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन और अपनी सभी उद्घोषिका बहने यूनुस खान साहब से मिलने की तमन्ना रखता हूँ। कब पूरी होती है मुझे नहीं पता। भाई आप अपनी तमन्ना जब चाहें पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अक्सर लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून बहुत उत्साहित करता है, खासकर कुछ लोग एवरेस्ट की चोटियों को छूकर लौटते हैं तो इस जर्नी पर उनकी आत्मकथा से संबंधित किताब हमारे मन को छू जाती है। तो अब जरा बताइए कि आपने कोई पहाड़ों और इस तरह के संस्मरण वाली किताब पढ़े हैं तो जरा लिख डालिए कौन सी किताब, हो सकता है हमारे श्रोता भी उसे पढ़ना चाहें। एक श्रोता ने लिखा है कि घूमना तो मुझे बहुत पसंद है, प्रकृति का सुहावना सफर हो और झरने की अटकेलियां करती हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जहां से ठंडी ठंडी हवा, ऐसा संगीत मानो जमी आसमां सब झूम रहे हो, क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत बज रहा है। भाई आप अकेले का नहीं, बहुत सारे श्रोताओं के गीत आज इस प्लेलिस्ट में शामिल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भी जब कुछ जगहें दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। मेरे यात्रा संस्मरण में कई देश और शहर शामिल हैं, लेकिन दुबई का समंदर का किनारा, न्यू जर्सी की एक जगह और भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी की जगह, इन तीनों स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण ने मुझे सबसे ज्यादा सम्मोहित किया है। और हमने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही, उस यात्रा के बारे में बताइए, उस जगह के बारे में बताइए। और नदी के किनारे बिताया हुआ कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार पल हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और अब एक और पहेली आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमें कि 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमने सन बता दिया है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो अब बताइए कौन सा गाना आपने चुना था, यही जो हम पूछने बजाने जा रहे हैं या कोई और गाना। और हाँ जरा बताइएगा इसमें कौन है हीरो, कौन है हीरोइन। ये गाना महेंद्र कपूर की याद के नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आप बूझ सकते हैं। पहली पहली हीरो हीरोइन का नाम, कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, ये पता है तो ये भी बता सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं, इनमें से कोई एक सवाल आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ें, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, फिल्म गुमराह और बहुत जल्द जवाब आ रहे हैं श्रोताओं की ओर से सुनील दत्त और माला सिन्हा। एक श्रोता ने लिखा है कि सपने और सुंदरता का जब भी मेल होता है तब बनता है सिनेमा। अंधेरे सिनेमा घर में चांदी के पर्दे पर फिल्मी सितारे हर एक तरह के कौतुक से सम्मोहन रचते हैं। इन किरदारों की डोर निर्देशक के हाथ में होती है और जब निर्देशक यश चोपड़ा जैसा हो तब एक फिल्म बनती है जो दर्शकों को कभी ट्यूलिप से भरे फूलों की घाटी में ले जाती है तो कभी पहाड़ पर। क्या बात है भाई, बड़े ललित शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। वे जबरदस्त तरीके से कहानी में मसाला लपेटते हैं। भावना के झंझावात में डूबते मन को किस्म किस्म के कलाकारी से यश चोपड़ा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले ही आते हैं। यश चोपड़ा की फिल्मों में चांदनी का होना किसी कविता में संगीत के मिलने जैसा है। चांदनी वो नाम है जिनके बिना यश चोपड़ा की फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाई बात यहां यश चोपड़ा की फिल्मों की है लेकिन सुनने की बात है, दिल की दास्तां है, चांदनी है, गाना वैसा ही है। तो चलिए पहले ये गाना सुन लेते हैं और आप जरा बूझिए फिल्म का नाम। और हाँ, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब आपने लिखे या नहीं, अगर नहीं लिखे तो लिख डालिए क्योंकि आपके जो जवाब आ रहे हैं आप तक हम पहुंचाते जा रहे हैं। अब हमें ज़रा ये भी बताइए कि आपके शहर या गाँव के आस पास कौन सी जगह है जहाँ लोग घूमने आते हैं, या कौन सी नदी है जहाँ पर लोग आते हैं और सुकून पाते हैं। कुछ शहर में कुछ ऐसे पार्क भी बने हैं जहाँ कुदरत की छांव मिल जाती है, तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि आपके शहर कभी कोई श्रोता जाए तो उन जगहों पर घूम सके, उन जगहों को देख सके आपकी निगाहों से। चलिए सुनते हैं ये गाना। आपको बूझना है फिल्म का नाम और आवाज़ किसकी है।

हमने आपसे पहली पूछी थी 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया फिल्म डर, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ये हमें बड़ी खुशी दे रही है। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमारे कुछ दूर पर स्थित काले देव की नदी है जिसमें लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे डिस्पोजल पानी की बोतल अक्सर पड़ी रहती है जो जीव जंतुओं को और प्राकृतिक वातावरण को दूषित करती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें जीवन में बहुत ज्यादा घूमने के मौके तो नहीं मिले, फिर भी जितना घूमा उसमें कुल्लू मनाली की बर्फीली वादियां लुभाती हैं और गुजरात के जंगल में शेर का इंतजार करते हुए जंगल का नजारा और जो सन्नाटा नीरव शांति और निर्मोही वातावरण की अनुभूति की है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्यारी सी छोटी सी बात, प्रकृति बोलकर हमें शुक्रिया नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसकी खामोशी को समझें। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव के पास कंडराला जंगल है, वहां लोग आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, अगर मौका मिला तो मैं बार बार राजस्थान की रेतीली वादियों में जाना चाहूंगा, वहां सुनहरी रेत, डूबता सूरज और लोकगीतों की धुन दिल को छू जाती है। भाई क्या बात है, थार के टीलों पर खड़े होकर सारी चिंताएं मिट जाती हैं और वहां पर फोटोग्राफी का शौक भी तो होगा जिसे आप अपने कैमरे में कैद करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चाहूंगा एक बार परिवार के साथ मॉरिशस जाऊं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले साल उत्तराखंड की सैर की थी सपरिवार, हमने शिमला से मनाली आते समय देवदार और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़कों पर जमी बर्फ को देखना अद्भुत, ऐसा सौंदर्य जो आंखों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। क्या बात है भाई, आपने तो चित्र खींच दिया हमारी आंखों के सामने, वो देवदार और चिनार के कतार नजर आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत में जब कुदरत का रंग शामिल हो तो क्या कहने, मन बाग भाग हो जाता है। आपकी इबारत प्रेरणा बन जाती है क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो फिर बताइए, पहाड़ों पर या वादियों पर आप जाते हैं तो अकेले जाना पसंद करते हैं या परिवार के साथ, मतलब सोलो ट्रिप पर जाते हैं या फिर पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं? और हाँ, ये भी बताइएगा कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ पहाड़ी पर बैठे खामोशी से देखते हैं वहाँ की खूबसूरती को, नदी के किनारे बैठते हैं, तो आप उन पहाड़ों से, नदी से अगर कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो कौन सा सवाल पूछेंगे? अब जरा आप बताएंगे क्या है फिल्म का नाम और किसकी है आवाज?

हाँ तो भाई बताइए, दिल की दास्तां आपने कभी सुनी है? खुद के दिल की दास्तां सुनी है क्या? बताइएगा जरा हमें भी। और अगर आपके दिल की दास्तां किसी ने सुनी और आपने सुनाई तो क्या था अनुभव? ये बातें आप बताते रहिए और साथ में हमारे सवालों के जवाब, पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। हमने आपसे पूछा था पहाड़ या नदी से कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? यूं तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, तो कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? और हमने आपसे पूछा था कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है और कौन सी जगह आपकी यादों में बसी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी जन्मस्थली हरदा, जो मध्य प्रदेश का एक उन्नत जिला है, यहाँ पावन माँ नर्मदा का मीठा जल प्रवाहित होता है। मेरे जिले की जलवायु बहुत अनुकूल है खेती के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यदि पहाड़, नदियां, तालाब स्वच्छ होंगे तो हम पर्यटन के लिए जाएंगे, नहीं तो आने वाला कल बस पर्यटन नाम के ही लिए रह जाएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, पर्यटन का असली आनंद तभी है जब हम किसी जगह को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे महसूस करें, पहाड़ों की शांति, नदियों की कलकल, हरियाली वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन हमें घर से दूर ले जाता है लेकिन प्रकृति हमें अपने और करीब ले जाती है। कहीं पहाड़ों की खामोशी, कहीं नदी की कलकल, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर हमें आज पर्यटन की उस दुनिया में ले जा रहा है जहां सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का गद्यांश प्रकृति और देशाटन से जुड़ा है, सुरम्य वादियां, पर्वतों की सैर, इच्छा हर एक दिल में रहती है। हरी हरी वादियों में जब कभी आसमां में आवारा से घूम रहे बादलों को थोड़ा आराम और सुकून की चाहत जागती है तो वो किसी भी वादी में पहुंच जाते हैं। वादियां बादलों का दूसरा घर होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफर हम तय करेंगे, नदी की सुरमई धारा, झरनों के कलकल, पहाड़ों की ऊंचाई और हरे भरे पेड़ों की शीतल छाया के साथ। तो चलिए एक बार फिर सैर करते हैं वादियों में। फिल्म का नाम बूझिए फटाफट और किसकी है आवाज, गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए। और नदी से कोई सवाल पूछना हो तो सवाल भी लिखिए।

आरंभ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में। सभी श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बताया और जल्द बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि कंचनजंगा पर्वत सामने से देखने की इच्छा है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, यहाँ के मंदिर कालीघाट दक्षिणेश्वर देखने योग्य है। यहाँ की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है और गंगा नदी है। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं? क्या उस फिल्म का कोई संवाद याद है? अगर याद है तो वक्त बहुत कम है, इतने कम वक्त में देखते हैं कौन श्रोता लिख पाते हैं कुछ संवाद। और हाँ, यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म का नाम तो आपको पता होगा, उसका नाम भी बताइए। और अब सुनते हैं ये गाना।

एक श्रोता ने संवाद लिखा है, चिनार सेठ जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, किस फिल्म का डायलॉग है जरा ये बताइए। और कोई संवाद आपको याद हो तो आप लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, जो सुरक्षित रहता है फेसबुक पेज पर, हम पढ़ सकते हैं बाद में भी।

भाई ये गाना आप सुन रहे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गाना था, आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और हमने आप सभी से पूछा था यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म कौन सी है, सभी श्रोताओं ने बताया जब तक है जान, और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अभी तो और गाने होने चाहिए थे, भाई अगर वश में होता तो हम वक्त को कैद कर लेते और सुरीला सफ़र का ये सफ़र चलता रहता, लेकिन क्या करें, जो कुछ बची हुई टिप्पणी है वो हम पढ़ देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कभी कभी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं देवी जी आप पूजा हैं तो हम आपके पुजारी हैं। और हमने आपसे पूछा था यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, क्या उन फिल्मों के संवाद याद है, कुछ श्रोताओं ने संवाद लिखे, अगर आपको याद है तो आप भी लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कोई गाना सुनवा सकें या आपसे और कोई सवाल पूछ सकें, तो बस आज का सफ़र बस इतना ही। कार्यक्रम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: harness its demographic dividend and emerge as a global innovation hub. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
1: Indian Meteorological Department IMD has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and West Uttar Pradesh today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, East Uttar Pradesh and Himachal Pradesh for the day. According to IMD, Andaman and Nicobar Islands are likely to witness thunder squall till tomorrow. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Bihar, Rajasthan, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and West Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. In men's cricket, West Indies were 11 for no loss in 1.2 overs against host India on the first one-day international of the three-match series at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram when reports last came in. Earlier, India won the toss and opted to field first. Both Rohit Sharma and Virat Kohli returned to India's ODI lineup after a two-month break from this format. Shubman Gill will lead Team India for this ODI series, while Shai Hope captains the West Indies. The second ODI will be played in Guwahati on September 30, followed by the third one-day international in New Chandigarh on October 3rd. The ODI series will be followed by five T20 internationals. Shreyas Iyer will lead the team in the T20I series. The T20 International Series will begin in Lucknow on October 6th, followed by the second T20I in Ranchi on October 9th. India made a strong start to its Asian Games archery campaign in Aichi, Nayoga today, with the men's and women's compound teams advancing to the semifinals along with the recalf. India today claims two silver medals in squash. India's Abhay Singh won silver in the men's single squash. In the final, he lost to Malaysia's EON 11-9, 11-5, 11-5. The world number 26 Indian was unable to match the number 18 Malaysian, who defended his Asian Games title with a commanding straight games victory. In women's single squash, Anahat Singh also bagged silver as she played the final against Malaysian Sivashankari Subramaniam. Earlier, Ankush Fangal assured India of his first boxing medal at the Games after defeating Tajikistan's Nekruz Salimov 5-0 in the men's 80kg quarterfinal today. India is now on the 11th position in the medals tally with a total of 32 medals, including 4 gold, 14 silver and 14 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindoor demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashwani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG power train at Sabarmati. Anahat Singh red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, Anahat Singh bagged a silver. Abhay Singh wins silver in men's single squash. Boxer Ankush Fangal assures medal. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
3: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
2: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
3: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा, बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
3: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
2: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
3: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
3: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
3: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे।

0: बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथौन थिरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेद के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
5: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मेटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
4: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज

बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृता नंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृता नंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही।

एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी का प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं मोहब्बत को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता, मोहब्बत को महसूस किया जा सकता है, उसकी खामोशी सुनी जा सकती है और कभी कभी उसे पर्दे पर देखा भी जा सकता है। लेकिन अगर किसी फिल्मकार ने मोहब्बत को एक खूबसूरत दृश्य, एक कविता और एक गीत और एक एहसास बना दिया, तो वो नाम था यश चोपड़ा। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हमारे आज के कलाकार हैं यश चोपड़ा। हिंदी सिनेमा के उस फिल्मकार का नाम जिनकी फिल्मों में प्यार सिर्फ कहानी नहीं था बल्कि एक पूरा संसार था। सरसों के खेत, उड़ती हुई शिफॉन की साड़ियां, बारिश में भीगते प्रेमी, ट्रेन की खिड़की से दिखाई देता इंतजार और उन सब के बीच एक अधूरी सी मोहब्बत। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद करेंगे उस शख्सियत को जिसने भारतीय सिनेमा की रोमांटिक भाषा ही बदल दी। तो आज बात करेंगे हम यश चोपड़ा की।

साथियों, आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा की। 27 सितंबर 1932 लाहौर में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे शायद उस समय खुद भी नहीं मालूम था कि आने वाले वर्षों में वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना एक अलग अध्याय लिखने वाला है। यश चोपड़ा का बचपन साधारण था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। सिनेमा उन्हें आकर्षित करता था और यही आकर्षण उन्हें मुंबई तक ले आया। उन्होंने फिल्मी दुनिया में शुरुआत एक निर्देशक के रूप में की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। लेकिन यश चोपड़ा सिर्फ फिल्में बनाने वाले निर्देशक नहीं थे, वो भावनाओं को समझने वाले फिल्मकार थे।

पता था कि दर्शक सिर्फ कहानी नहीं देखता, वो कहानी में खुद को ढूंढता है। यश चोपड़ा अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा के साथ काम करते हुए फिल्म निर्माण की बारीकियां भी सीखी और आया वर्ष 1959, फिल्म थी धूल का फूल। ये उनकी निर्देशन यात्रा की महत्वपूर्ण शुरुआत थी। इसके बाद आई कई फिल्में जैसे धर्मपुत्र, वक्त, इत्तेफाक। हर फिल्म के साथ यश चोपड़ा की अपनी सिनेमाई पहचान मजबूत होती गई, खासकर वक्त, जिसने उन्हें एक बड़े फिल्मकार के रूप में स्थापित किया, जहां एक परिवार, समय का तूफान, बिछड़ना और फिर वर्षों बाद मिलना। यश चोपड़ा जानते थे कि बड़े पर्दे पर भावनाओं को

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है अनमोल मोती।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं शिवान रिजवी, संगीत है ओपी नैयर का और फिल्म का नाम है दिल और मोहब्बत।

साथियों, लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। संगीत है रवि का, इस गीत में आवाज है महेंद्र कपूर की और फिल्म का नाम है हमराज़।

0: दौरान प्रधानमंत्री ने जनगणना पर नागरिकों की सहभागिता को राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताया। श्री मोदी ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करने और इसकी विविधता की रक्षा करने की भी अपील की।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: मन की बात कार्यक्रम आज राज्य भर के विभिन्न जिलों में सुना गया। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रांची में गोंदा मंडल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुना। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज के इस अंक में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया।

0: श्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति को पूरे दुनिया ने भी देखा। आतंकवाद कहीं भी होते हैं वो देश के लिए विकास में भी बाधक होते हैं, जनजीवन को भी नुकसान पहुंचाते। देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में हुई घटना जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसका भी उन्होंने उल्लेख, और किस प्रकार से वहाँ काम कर रहे निर्दोष लोगों के जाने गए।
1: उधर गिरिडीह में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि आज के मन की बात की 138वीं कड़ी प्रेरणादायक रही। वोकल फॉर लोकल के लिए उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस की ओर से लगातार SIR पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग SIR के माध्यम से देश के सभी वैध मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का काम कर रहा है। पत्रातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने दिव्यांगजनों के कल्याण, सशक्तिकरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर PVUNL के CEO AK सहगल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिप्रा रानी तथा मानव संसाधन विभाग के प्रमुख श्री जियाउर रहमान मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर आज रविवार को भी राज्य भर में सभी सरकारी बैंक खुले हुए हैं। गिरिडीह में बैंक में सभी जरूरी काम निपटाए जा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक सर्वोत्तम कुमार ने कहा है कि कामकाज सामान्य है।
2: ये संडे को इसलिए खोला गया ताकि जो 3 दिन जो बैंक में एम्प्लॉय ने स्ट्राइक किया है उसके कारण जो ग्राहकों को असुविधा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि लोग अपने कार्य जो है आज रविवार को पूर्ण कर लें ताकि उनका कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो।
1: राजधानी रांची के तिरेल स्थित CRPF मुख्यालय में रविवार सुबह ड्यूटी के दौरान एक जवान की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ने 9 ओवर की समाप्ति पर 78 रन बना लिए थे। वनडे श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में होगा। इसके बाद मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: धड़कन विविध भारती से।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, नेवासा महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला देवीदास पोपलघट और शिवांश, सेक्टर 8 टाउनशिप भिलाई से श्रीमती प्रमीला श्याम कुंवर, अनुश्री अशोक दीपक और आसमा श्याम कुंवर,

लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और मम्मी पापा। नागपुर महाराष्ट्र से विनायक भामरे, गणेश भामरे और पार्थ भामरे। गांव बनवाड़ी पटियाला पंजाब से सुखविंदर सिंह, रुपेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, दर्शन सिंह, भोला सिंह, नीरज और जश्न। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से भाई भरतलाल सिन्हा, लक्ष्य कुमार सिन्हा और बिटिया लक्की सिन्हा। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी। आनंद जी, फिल्म का नाम है हिमालय की।

ये हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। कोथा गुड्डम ते तेलंगाना से याकूब दशना, नूर जहां रहीम शरीफ खान, रूबीना अलीमा और रहीमुन्निसा। जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। राजाराम नगर देवास से शांति महाजन, राकेश महाजन, मधु महाजन, मुकेश महाजन, राजेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल। गाजियाबाद यूपी से सुषमा, श्वेता, अभिषेक और एमडी शर्मा। तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवी

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। और इस गीत को सुनने के लिए

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। सनावत से राजकुमार बोडाना, यश कुमार बोडाना, मास्टर अशोक वर्मा और शेख मूसा भाईजान, मोरटका बाफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, कोनिका और मानस पटेल। कटोरा तालाब रायपुर छत्तीसगढ़ से मदन लाल देवांगन, प्रभा भूपेश कुमार, कुसुम और तुषार देवांगन, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति चौधरी, मालती देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खुरचेतुम, सोनू और मोनू, दतरंगी से विश्राम मनोज कुमार और दशरथ राम, गुलाबरा छिंदवाड़ा एमपी से भाई राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े, ऋषभ, यामिनी और सुरेश निखाड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है चरस। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त अमरावती महाराष्ट्र से प्रोफेसर विवेक देशमुख, प्रोफेसर दीपक देशमुख, दिविज देशमुख और डॉक्टर अनिरुद्ध देशमुख। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, मुजतबा खान, आफिया खान, आयशा खान, हादिया खान और शोएब खान। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कलीचा। तो साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आप सभी ने पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश और ज्ञान भूषण शर्मा, अर्रिया चौकीदार से सौम्या नाजनीन, रुकैया खातून, जुबैदा खातून, आबिदा खातून, सरफराज आलम और समस्त परिवार, मिडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, मीनाक्षी तिवारी, हरिपाल कौर और सुनीता शर्मा, अयोध्या नगर रालेगांव शहर से विनोद कुमार डवड़े, प्रतीक शुसारी और प्रथमेश कुमार डवड़े और साथ में है विनोद मंडाड़े, कस्बा बराडा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरकीरत मंत और गुरशब्द सिंह राहुल की पसंद पर सुनिए। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ और विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।
1: मनचाहे गीत
2: चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: विविध भारती।
1: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक मुक्ति एक चिड़िया की। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव।
2: क्यों रे प्यारी, फिर तूने झाड़ू चलानी शुरू कर दी? तू जब भी देर से आती है फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है।
3: काम तो सब हो गया है बाबूजी।
4: एक बात कहूँ बाबूजी? अब क्या है?
3: रमेश बाबू, आप लोगन के बहुत हैला कान के हैं। अरे आप लोग तो अपन लड़का समझ के पाल पोस के बड़ा के हैं, और वो न जाने कौन जन्म के दुश्मनी निकाले, सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए।
4: तू मेरे घाव क्यों कुरेद रही है, चुप क्यों नहीं रहती?
3: अरे अपन खून होता तो कभी ऐसा करते?
4: अपना ही खून तो नहीं था रे, तेरे तो चार चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है?
3: कोई कमी नहीं, आपन तो अपने होती बहू जी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खराब किया, अरे उतने में तो नीमा बीवी मजे में नहीं पड़ जाती, बेचारी नौकरी करत करत बुढ़ा रही है।
4: देख अगर काम पूरा हो गया हो तो जा, बकबक ना कर।
3: मुझे इतना टेम कहां जो गप्पे मारूं, चलती हूँ, राम राम।
4: अपना खून? इस कुमार प्यारी ने सही ही बात तो कही है, मैं नाकामी की राख से अपने को ढकती रही। डॉक्टरों ने कहा मैं मां नहीं बन सकती, और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए नितांत स्वार्थी हूं मैंने ये जुआ खेल डाला। उसकी फोली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा बीबी अभी 35 की ही तो हुई है, शादी हो जाए तो वो मां बन सकती हैं। उनके बच्चे में मेरा ना सही, मेरे पति के कुल का खून तो होगा ही।
5: ललिता, इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो। नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या?
4: नहीं, पर उम्मीद है छुट्टियों में वो खुद आएंगी, और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा, समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं।
5: इसमें तुम्हारा क्या कसूर, भाग्य का खेल ही है और क्या। तुमने बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया।
4: उसी के चक्कर में नीमा बीबी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए।
5: नीमा बीबी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना।
4: मैं उनसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती, उनकी शादी ना हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का, और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है।
5: पैसे की बात छोड़ो, कमा धमा रही कुछ ना कुछ तो जोड़ ही रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी ना माने तो अभागा।
4: नहीं मानते, अब तो लोग बहू को घास फूस और नोटों को लक्ष्मी मानते हैं।
5: अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो दौड़ भाग कर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो।
4: बैठिए कमला बहन, चाय बना कर लाती हूँ।
5: अरे बस बस, दरवाजे मत तोड़िए।
6: जरा दरवाजा तो खोलिए। नमस्ते।
5: नमस्ते।
6: मैं तो न जाने कब से भटक रहा हूँ। चंचल बाबू का घर ही नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा ये है तो चला आया।
5: ये बिहारी बाबू का घर है।
6: अच्छी मुसीबत है, बतलाइए। चंचल बाबू ने अपनी बेटी की शादी का इश्तहार छपाया था तो घर ही नहीं मिल रहा, शगुन साइट ठीक नहीं दिखती।
5: आपको किसकी शादी करनी है?
6: अपनी?
5: हाँ?
6: क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? अभी एक भी बाल नहीं पता है मेरा, देखिए देखिए।
5: ठीक है ठीक है।
6: रोज बादाम का शरबत पीता हूँ।
5: अरे तब तो बैठिए, हमें आपकी ही तलाश थी। अरे ललिता देख जल्दी आ, घर में शगुन घुस आया है।
6: शगुन नहीं, बाकेलाल, बाकेलाल। मेरा नाम बाकेलाल है जी। लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं आज तक कुंवारा कैसे रह गया।
4: अरे वाह, अभी तक आप कुंवारे हैं?
5: तब तो बात बन गई।
6: कैसी बात, मैं समझा नहीं।
5: हमने शादी के लिए विज्ञापन दिया है। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, नौकरी करती है, किसी पर भार नहीं बनेगी।
6: वैसे मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है जी, दवा की दुकान खोली है मैंने, बिल्कुल चकाचक है। अभी घर जाऊंगा तो 1 किलो से माँ के लिए ले जाऊंगा, पाव भर काजू खरीद लूंगा।
5: क्या आपकी माँ बीमार है?
6: नहीं जी, इतना खाने पर भी बीमारी क्या पाक फटक सकती है, हम लोग फल और मेवा ही खाते। जरा मेरा चेहरा देखिए, देखिए देखिए, आईने की तरह दमक रहा है ना।
5: हाँ सो तो है, बैठिए ना, नाश्ता तो करेंगे ना।
6: नहीं जी नहीं, मैं अपनी खीर खुद लेकर चलता हूँ। ये लीजिए, जरा खाकर बताइए कितना मेवा है इसमें, लीजिए तो।
5: अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, खाते पीते घर के हैं बाके बाबू।
6: बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। अरे जो सुख खाने पीने में है वो और किसी चीज में है क्या भला, पर माँ कहती है शादी कर ले।
5: अच्छा ये बताइए, शादी में हमें खर्च वर्च क्या करना पड़ेगा?
6: अरे कुछ नहीं, पीली धोती पहना कर लड़की को विदा कर दीजिए, सोने से तो मैला दूंगा। हाँ बारात के खातिरदारी जरा अच्छी हो जाए बस, बात ये है कि मेरे सभी दोस्त मुर्गा तोड़ हैं।
5: अरे, अरे उसकी चिंता न करिए, उतना तो हो ही जाएगा, हम तैयार हैं। लड़की वगैरह दिखाने के लिए कब मिले आपकी माँ से?
6: अभी कोई जरूरत नहीं, शादी तो मुझे करनी है, नौकरी करती लड़की भी क्या देखने की चीज है।
5: ललिता एक फोटो तो दे दो।
6: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, अरे मेरी तरफ से बात पक्की, लीजिए खीर खाइए इस खुशी में।
5: तो हमारी तरफ से भी बात पक्की, लीजिए आप भी हलवा खाइए, खीर से ज्यादा गर्म है।
0: समय के गर्म पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक भावुक नहीं रहा जा सकता।
5: इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा है समय का सही उपयोग करना चाहिए।
0: कैसा समय, मैं कुछ समझी नहीं।
5: कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया?
0: मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं।
5: यही सही समय है।
0: कैसा समय?
5: उम्र के दौर का समय, इस आखिरी दौर के बाद शायद आपका खून ही बदल जाए।
0: 2 साल पहले मुझे मियादी बुखार हुआ था, तब खून टेस्ट कराया था, शायद बी ग्रुप है।
5: ज्यादातर स्त्रियों के खून का यही ग्रुप होता है, पर उसके शरीर में सृजन करने

0: वाला खून भी होता है। सच सच बताइए, जब कभी ये खून आपके अंदर दौड़ता है, आपको बेचैनी नहीं होती?
1: कभी होती थी, पर अब नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी किसी ने पसंद नहीं किया।
0: कोई पसंद करे या ना करे, प्रकृति तो अपने ढंग से कार्य करेगी ही, कौन तो दौड़ेगा ही। ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपने किसी को पसंद किया हो।
2: प्यारी, चाय ले जा।
0: आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको किस तरह के पुरुष पसंद हैं?
1: देखिए, इस तरह की बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती है।
0: आखिर क्यों?
1: इसीलिए कि मुझे पुरुषों से घृणा है। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए आज तक मुझे किसी पुरुष ने पसंद नहीं किया। कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है। आपको पता नहीं, मेरी रीढ़ में दर्द रहने लगा है।
2: अरे शादी हो जाए, सब ठीक हो जाए।
1: प्यारी तो चुप रह। कमला जी, इसीलिए तो मैं कभी यहाँ आती नहीं। जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं?
0: अच्छा लीजिए, चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं।
1: बच्चे के लिए खून चाहिए, मैं एनिमिक हूँ।
0: ये तो आम बात है, कौन स्त्री आज एनिमिक नहीं है। इसके लिए क्या लड़कियां शादी नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते? आपके लिए अब भी समय है।
1: मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कैसे बताऊँ आपको? इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूँ।
0: शादी तो आपकी माँ की भी हुई थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी।
1: शायद अब वो समय नहीं है।
0: सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की वो मांग है।
1: मेरा दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल ढकेलते ढकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए केवल 15,000 रुपए थे।
0: इतने रुपए थे, भाई अभी हाथ लगा देते तो शादी हो जाती। आखिर तुमसे उनका खून का रिश्ता था।
1: खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं।
0: और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया?
1: माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई। बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
0: देखिए, अगर औरत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से निकाल दें। मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा, सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है।
1: मगर कौन समझता है इस बात को? तीन जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया।
2: बीवी जी, बुरा तो लगता ही है, क्या कहा जाए ऐसे लोगन को।
0: मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया उजाड़ हो जाएगी।
1: जाने अनजाने लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं, सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
0: देखो, इस तरह मन छोटा ना करो। लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौत के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौत के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौत के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारी सांसों में है।
1: पूरी जिंदगी जीने के लिए स्वीकार हूँ फूलों की हथकड़ी। हाँ, मुझे पंखुड़ियों में मिलती है नवजात शिशु की गंध। हाँ, क्यों नहीं, मैं पहनूंगी फूलों की हथकड़ी। मेरी सुंदरता मेरे खून में है, चेहरे में नहीं। मेरे पास अभी भी समय है, मैं शादी कर सकती हूँ। नथ पहनने के लिए मेरी बदनाक छिदवा दो, मैं शादी कर सकती हूँ।
0: बहुत बहुत खुशी हुई कि आप समय से चेत गई।
1: जी मैंने कुछ कहा क्या?
0: हाँ, आपने समय को पहचाना है, खून की मांग को स्वीकारा है।
2: बीवी जी, हाँ? इसी बात पर ले आऊँ गर्मा गर्म चाय।
0: अरे चाय ही नहीं, मिठाई अभी। जा, फौरन दौड़।

0: मेरी जिससे शादी हुई है उसे मैं जान, अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। मां ने सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया था।
1: अब किसी के लिए प्रेम प्रेम नहीं है, है तो सिर्फ अपनी बेचारगी जो चेहरों पर छद्म प्यार बनकर उभरती है।
0: चुप रहो, ये मेरी सुहाग रात है, सुहाग की प्रथम रात्रि। देखती नहीं मेरे चारों ओर पुष्पी पुष्पी कर रहे हैं।
1: हाँ इस समय तो तू कथा परी है, सात समुद्र पार करके यहाँ आई है। अभी तारों को पाने के लिए तो ऊपर उड़ेगी, मगर आज तो आसमान में तारे मटमैले नजर आ रहे हैं।
0: क्या हुआ, सुन रही है बाहर शोर? कैसा शोर है ये?
1: शराब के नशे में चूर यही है तेरा पति, तेरे सपनों का राजकुमार।
0: यही है मेरे सपनों का राजकुमार। घर में आई नववधु का भी उसका ख्याल नहीं?
1: वो ये सोचकर निश्चिंत है कि अब तो एक बुलबुल पिंजड़े में कैद ही कर ली है, जो दाना पानी अपने साथ ले आई है।
0: ऐसी बातें मत करो, अब तो मेरे जीवन की डोर से बन चुकी है।
1: यही तो नारी जीवन की त्रासदी है, अजीब रिवाज रस्म है। पति कैसा भी हो, इस डोर में बनने के बाद उसे जीवन भर ढोना ही पड़ेगा।
0: तुझे इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी चादर से ढककर विदा किया गया है, जानती है क्यों?
1: क्यों
0: नहीं, ताकि दुल्हन को किसी की नजर न लगे।
1: ना, ऐसा नहीं है, ताकि वो वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित ना कर सके।
0: कौन हो तुम, क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है।
1: हाँ हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा, सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी?
0: मैं अभी से क्या बता दूं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी ये कह सकती हूँ।
1: अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो?
0: ऐसा मत कहो, मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया।
1: मगर तुम सरलता से उस पर प्यार मत उड़ेलने लगना,
0: रहस्यमयी बन जाना। इस उम्र में भी नटखट लड़की की तरह चतुर। देख तेरा दूल्हा इधर ही आ रहा है, मैं चलती हूँ।
1: चली गई,
2: कौन जो आ गया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ पास आओ, ये सिर क्यों ढक रखा है?
0: नहीं मैं सिर नहीं खोलूंगी, मैं सुंदर नहीं हूँ।
2: कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो?
0: सभी कहते हैं, पर ये जरूर है कि मेरा खून सुंदर है।
2: खून? अरे खून तो सभी का एक जैसा होता है, सुंदर चेहरा होना चाहिए।
0: वो ठीक कह रही थी, इसी समय मुझे नटखट लड़की हो जाना चाहिए, रहस्यमयी। नहीं मुझे शराब की गंध अच्छी नहीं लगती।
2: नहीं होगी तो मुझे ही आ जाता।
0: ना, मैं बीच में ये तकिया रखे देती हूँ।
2: ऐसा क्यों करती हो?
0: ताकि आप अपनी सीमा जान लें और मैं अपनी
2: सीमा। अच्छा अब क्या करूँ?
0: आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो?
2: रानी तुम क्या कर रही हो?
0: गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही हूँ।
2: बहुत अच्छे अब क्या कर रही हो?
0: अब वेणी में फूल गूंद रही हूँ।
2: ये फूल कहाँ से मिला तुम्हें? मैं तो खाली हाथ आया।
0: ये फूल बस

0: दिया।
1: मेरे कमरे में वतन, अरे वाह।
0: देखो, फूल बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ।
1: रति की तरह सुंदर, मगर तुमने तो अभी तक अपना घूंघट भी नहीं खोला।
0: क्षण क्षण मेरी सुंदरता बढ़ रही है, मैं रति हो गई हूँ।
1: रति की तरह सुंदर, रति की तरह सुंदर, मैं तो रहूंगा।
0: मगर दूर रहिए, सीमा मत पार कीजिए।
1: अरे सीमा की कोई बात नहीं रहा, मैं हर के रुक नहीं सकता।
0: जो करना है कर लूं, अपने खून के लिए, मातृत्व के लिए, जीवन की गति के लिए। हो सकता है ऐसा स्वाभाविक सच फिर नहीं बोले जिंदगी।
1: तुम क्या बोलने लगे हैं? देखो, अब मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता।
0: चिड़िया उड़ने से पहले आसमान से नहीं पूछती कि मैं तुम्हारे आंगन में उड़ूं या ना उड़ूं?
1: अरे वाह, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, सचमुच तू तो बहुत सुंदर हो।

0: अच्छा तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है?
1: मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां बढ़ाकर और आराम करूं।
0: मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं ही नहीं।
1: नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिल ही जाएंगी, वही ले लूंगी। क्या आप मेरे खाने पीने का भार भी नहीं उठा सकते?
0: क्यों नहीं, मगर जब तुम कमाती हो तो फिर चिंता की क्या बात। देखो मेरी दवा की दुकान टूट गई है, इसलिए छुट्टियां लेने पर खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूँ वहाँ।
1: आप वहाँ क्या करेंगे?
0: अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें हर्ज ही क्या है?
1: इनको मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा, मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली।
2: सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो, रखवाओ ये सामान वगैरह।
1: भाभी ये सब क्या है?
2: फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट यही सब, आज गोद भराई होनी है ना। मगर यहाँ तो कोई इंतजामी दिखाई नहीं पड़ता।
1: भाभी मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दूं।
2: टालने की क्या जरूरत?
0: अरे भाभी के रहते तुम क्यों परेशान हो? अरे उत्सव का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता कर।
2: उत्सव का ही नहीं, मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है?
0: कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है।
2: अरे मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा।
0: हाँ हाँ और क्या, भाभी बच्चा आपका ही है।
1: ये कौन होते हैं मेरे बच्चे को किसी को देने वाले?
2: बांकी बाबू आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट पसंद आया, और ये साड़ी। अरे नीमा बीबी कहाँ गई?
3: आंगन में गई हैं, लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ है।
2: अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है। नीमा बीबी, नीमा बीबी।
1: मेरे पति को मैं नहीं मेरी कमाई चाहिए, भाभी को मैं नहीं मेरा बच्चा चाहिए। मैं गिद्धों के बीच फंसी एक छोटी सी लाचार चिड़िया हूं, अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा यहां, किससे कहूं? मगर मेरे पेट में जो पल रहा है वही तो मेरा खून है, वही मेरा होगा। मैं अपने खून पर किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
2: अरे नीमा बीबी तो बदहवास पड़ी हैं। बीबी जी आप इतनी कमजोर हैं, बताया भी नहीं, डॉक्टर को दिखा देती।
1: आप बैठिए, मैं डॉक्टर के यहाँ हो ही आती हूँ।
2: चलो मैं भी चलती हूँ ना।
1: नहीं नहीं भाभी आप चिंता ना करिए, उत्सव की तैयारी कीजिए, पड़ोसियों को बुलाकर गाना बजाना कराइए, लड्डू बटवाइए, बंधनवार सजवाइए। मैं डॉक्टर के यहाँ गई और आई।
0: मैं चलूँ तुम्हारे साथ?
1: क्यों परेशान होंगे आप भी, मैं होकर आती हूँ ना अभी। तब तक आप भाभी के साथ जश्न का प्रबंध करें, डॉक्टर के पास सिर्फ मुझे जाना भर है।

0: डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? कथा पर ही लगता है आसमान के तारे नहीं तोड़ सकी। हाँ, नहीं तोड़ सकी। डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई? कोई जरूरत नहीं समझी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है, फिर गलत क्या है? क्यों बदलाऊं? तुम हो कौन? नहीं पहचाना? मैं तो सुहाग रात के दिन भी तुम्हारे साथ थी, मगर सामने तो नहीं आई। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज ही क्यों सुनाई पड़ती है? अब भी नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ। फिर तुम ही बोलो, मैं क्या करूं? वहां तो लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। जश्न? तुम्हारा बच्चा छीनने का जश्न? तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहती ना?
1: नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।
0: तब अपने पैक से कागज निकालो और लिखो।
1: क्या लिखना होगा? किसे लिखना होगा?
0: उन्हें ही, जिन्हें तुम छोड़ आई हो। लिखो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर का कहना है मेरे पेट में कोई जीव नहीं, ट्यूमर पनप रहा है। इसका खर्च कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ।
2: झूठ क्यों लिखवा रही हो? ये सवाल मत करो। बचने का यही, सिर्फ यही एक रास्ता है। इस संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता।
0: जाओ, जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ।
2: इस पत्र का क्या होगा?
0: वो
2: सामने लेटर बॉक्स में डाल दो।
1: फिर क्या होगा?
0: कितनों के बीच फंसी मासूम चिड़िया की मुक्ति।
1: मुक्ति?
0: हाँ, मुक्ति श्वास के लिए, मुक्ति आकाश के लिए, अपने ही खून से सिंचित पोषित उस परिंदे के लिए जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है।
3: मुक्ति एक चिड़िया की, यह नाटक अभी आपने सुना। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। ये हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
5: एक विलक्षण गायक।
6: अरे

0: संगीत के साधक
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: ये है विविध भारती,
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन

0: शान बेमिस संगीत की
1: पूजा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। उत्तम जी बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
2: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं।
0: मदन जी के साथ बहुत सारी यादें आपकी हैं संगीत बनाने

0: चुपके देखा तो मदन जी गा रहे हैं बाजा पकड़ के,
1: खुद ही गा रहे हैं।
0: खुद ही गा रहे।
1: गाना कौन सा था?
0: गाना नहीं, ऐसी आलाप गा रहे थे, क्लासिकल गा रहे थे
1: जी जी।
0: और उनकी रिकॉर्डिंग थी। तो कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद पता चला कि खंडाला में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी में आए थे, गाड़ी में आए थे और आके जल्दी पहुंच गए और अपने खून वून आया हुआ उनको, उसमें अपने आप को ठीक करने के लिए वो संगीत का सहारा लिया।
1: ये घटना मुझे पता है, मदन जी के जब बेटे समीर कोहली जी आए थे विद भारती, उन्होंने सुनाया था कि वो ट्रक से वापस लौट रहे थे क्योंकि गाड़ी जो है वो तबाह हो गई
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको बाद में पता चली
1: जी।
0: बट वो जो गायकी थी वो क्या फील था उसमें, हा हा हा।
1: तो वो जो पूरा वो एक्सीडेंट की बदहवासी और
0: वो सारी उन्होंने वहां निकाली।
1: गजब की बात है ये तो।
0: सारी संगीत के दौरान उन्होंने गाया बजाया तो उससे क्या होगा कि सारा जितना भी बैकलैश था ना वो सारा खत्म हो गया।
1: खत्म हो गया,
0: नाउ ही इनटू म्यूजिक।
1: गजब की बात है ये।
0: देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रेमेडी है।
1: हाँ,
0: आज डॉक्टर्स इंजीनियर सब म्यूजिक सीख रहे हैं ताकि हमको ईज मिले, हमको सुकून मिले, हमको स्ट्रेस फ्री हो।
1: हाँ,
0: ये कितना बड़ा एक एजुकेशन है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी से ट्रक में बैठ के आया और स्टूडियो में आया और उन्होंने आते ही उन्होंने बाजा पकड़ा एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। मुझे लगता है शायद एक डेढ़ घंटा गा रहे थे वो।
1: बाप रे,
0: जब हम पहुंचे तो आवाज चल रही थी, गा रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग की, कौन सा गाना मुझे याद नहीं लेकिन रिकॉर्डिंग की।
1: जहां तक मुझे लगता है रुके रुके से कदम वो गाना था, वो गाना यहाँ सुन लेते
0: हैं। हमारे कदम रुकी गए थे उनकी आवाज सुन के।
1: क्या बात है।

0: मदन जी की यादें और भी शेयर की जाएं और मदन जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए, म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें।
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी।
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था, मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब के।
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भादों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी।
0: अच्छा।
1: अपनी फिल्म का।
0: हाँ।
1: तो मुझे बोलते उत्तम यहाँ मदन जी का चलते हैं, वहां चल के बैठेंगे। तो मदन जी का पियानो था वो। दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा, पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था तब उनका लिखता था। तब हम लोग ऐसे 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा। बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं। हाँ, एंड की जो याद है, लास्ट की, उनका गाना चल रहा था मौसम का गाना, दिल ढूंढता है
0: जी,
1: दिल ढूंढता है। गाना अरेंजमेंट किया ज्ञान वर्मा ने। ज्ञान वर्मा को कोई और रिकॉर्डिंग नहीं थी तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले।
0: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
1: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था।
0: अच्छा।
1: तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था तो सामने मदन साहब बैठे हुए थे, मदन साहब, कौशिक साहब सब बैठे थे, भूपी जी गा रहे थे। तो मुझे इतना याद है कि वो गाना खत्म होते होते तक उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
0: पैनल की टेबल।
1: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया।
0: अरे बाप रे।
1: He was so drunk, कहतो या I don't know what state of mind he was. वो पूरे ऐसे बैठ गए। बाद में गाना हम लोगों ने पास किया।
0: अच्छा।
1: भूपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना, ये टेक ओके है। He doesn't know anything. It was so pathetic.
0: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,
1: लेकिन
0: तमाम चीजों का
1: गाना दे गए, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: तो जी देखिए वो गाना, दिल ढूंढता है फिर फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है। अब ये सैड है
0: जी।

0: पोएट्री है उसको एक सैड और एक, और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में।
1: जी, एक
0: मुझे
1: ही गाने
0: हमको
1: के।
0: याद है कि अरे यार मदन जी का क्या गाना आया, और सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है,
1: जी,
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा गान ने, बहुत अच्छा म्यूजिक
1: इसमें एक
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: मेटल फ्लूट सुनाई देती है।
0: हाँ, वो की फ्लूट है, वो
1: जी,
0: उसकी मुरली जी ने बजाया है,
1: वाह
0: जो
1: वाह वाह,
0: सेक्सोफोन के बहुत
1: क्या बात है।
0: मुरली सिंह करके
1: जी।

0: पंचम जी के असिस्टेंट भी थे
1: बिल्कुल,
0: और हमने साथ में बहुत काम किया।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था, उनसे बहुत लंबी बातें रिकॉर्ड की थी।
0: वो मतलब वैसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बजी नहीं
1: जी, बिल्कुल
0: उनसे शुरू हुई, उनपे खत्म हो गई।
1: क्या
0: ऐसा हुआ
1: जी।

0: मदन जी की कुछ और यादें हैं।
1: मदन साहब की एक बात मुझे आज भी याद है। रोशन जी गुजरे थे
0: जी, अचानक उनका निधन हो गया था।
1: अचानक निधन हो गया, हंसते हंसते
0: एक पार्टी में थे वो,
1: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, उनकी बॉडी को ले जाना था डरियश। तो मदन जी लेफ्ट उनकी बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे
0: जी जी
1: मदन जी, और हम लोग यहाँ, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
0: इंडस्ट्री के लोग,
1: म्यूजिक वाले, खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा। तो मदन साहब यहाँ लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को।
0: अरे बाप रे,
1: लिटरली गाली, मैं यानी गाली नहीं बता सकता
0: जी,
1: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़ के चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
0: अरे बाप रे, अरे गजब,
1: आप सोचिए क्या भाव है,
0: क्या भाव है कि अब मैं जवाब किसको
1: दूंगा। डेड बॉडी पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारे तू चले गया, तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा अभी,
0: किसके लिए म्यूजिक
1: बनाऊंगा।
0: अद्भुत बात है
1: ये, मुझे आज भी याद है।

0: और कुछ 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारा एक सोनिक साहब का छोटा भाई राज, राज सोनिक, जो मेरे यहाँ काम करता था, लास्ट तक मेरे साथ काम किया, हमारी कुछ बात नहीं तो बोला मैं तो आपके बाजू में खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये बात सही है? उन्होंने गालियां, बोले गालियां इतनी गालियां दे रहे थे हम सोच नहीं सकते। मतलब मदन जी को ये पता ही नहीं कि लोग बैठे हुए यहाँ पे एंड ही इज अब्यूजिंग हिम।
1: लेकिन वो इतने जज्बाती हो गए थे,
0: जज्बाती हो गए थे, इतना प्यार था, एक आत्मा का जिसको प्यार कहते हैं
1: वो था।
0: सारे तू तो चले गया, किसको जवाब दो?
1: क्या दौर था, क्या लोग थे,
0: जैसे संगीत ही चले गया हो ना, ऐसा हो गया ना
1: जी।
0: क्योंकि उस दौरान में बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की। अगर आपने एक अच्छा गाना लिख दिया तो आपको लिखने वालों के 15 फोन आ जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: एक साहिद साहब ने अच्छा गाना लिख दिया तो मजरू साहब भी फोन कर रहे हैं, आनंद बख्श भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है। तो आज अगर आप अच्छा कुछ करते हो तो उसको खत्म कैसे किया जाए ये सोचा जाता है।
1: जी
0: ये दौर में फर्क हो गया।
1: जी जी
0: वो दौर था प्यार का, अब दौर है दुश्मनी का।
1: जी जी जी
0: कि दुश्मनी कैसे की जाए।
1: आपने मदन जी का जिक्र किया और उसके बाद रोशन साहब का जिक्र आया, उनसे भी आपका एक नाता रहा है, उनसे जुड़ी यादें शेयर कीजिए।
0: बड़ी खूबसूरत, हम लोग पहली रिकॉर्डिंग बजाने गए, कुछ 7-8 बच्चे लोग थे।
1: अच्छा।
0: उन्होंने बुला लिया उनको और मुझे याद है कि श्याम राव जी और भूपी जी, केरसी जी,
1: ये म्यूजिशियंस थे,
0: ये उनके अरेंजर थे।
1: अच्छा।
0: ये उनके सलाहकार थे केरसी और श्याम राव, भूपी जी तो दोस्त थे उनके। तो हम लोग पहुंचे, पूरा रेसल वेसल हो गया, 10:15 बजे
1: जी,
0: छोटा सा आदमी आता है 4.5 फुट का, रोशन जी आ गए।
1: वो छोटे कद के थे,
0: पहली दफा देखा उनको
1: जी।
0: तो आते ही किसी से कुछ कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आए अंदर, ऐसे जैसे वो मैडम बैठी हैं ऐसे अंदर चले गए
1: जी।
0: अंदर से माइक्रोफोन ऑन करके बोलते हाँ म्यूजिक सुनाओ। अभी म्यूजिक सुनाओ, अभी जब तक केसी जी 1-2 नहीं बोलेंगे हम तो बजा ही नहीं सकते, हम सब बैठे हुए हैं, आवाज आ रही है कि म्यूजिक सुनाओ। तो केसी चुप, शामरा भी चुप, भोपी भी चुप, हम सब चुप बैठे, कम से कम 60-70-80 म्यूजिशियन तो होंगे। फिर अंदर से अरे म्यूजिक क्यों नहीं बजाते, म्यूजिक सुनाओ, केसी शामरा म्यूजिक सुनाओ, फिर चुप।
1: अरे
0: ये मैं हम सोच रही है नए बच्चे हैं कि ये क्या हो रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा है म्यूजिक सुनाओ, हम सब चुप बैठे हो, म्यूजिक रेडी है? केसी बोलते ऐसे थोड़ी ना सुनाएंगे। हाँ तो फिर कैसे सुनाओगे, पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही। अभी प्यार कौन सा, अंदर से माँ बहन की कहे शुरू हो गई। अरे हम तो हैरान हो गए, मैं यार ये कौन सा प्यार है यार, वहां की वहां गाली, म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, अब सुनाओ के सुनाओ। अब सब थालिया में, अब सुनाएंगे म्यूजिक, और उसके बाद म्यूजिक शुरू हुआ।
1: ये प्यार था, ये
0: म्यूजिक शुरू हुआ। आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई, रिहर्सल किया, 2-2.5-3 घंटे में गाना खत्म।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये पहली याद थी उनके साथ।
1: क्या बात है,
0: ऐसा एटमोसफियर, आप सोचो कि वो म्यूजिशियन कह रहा है पहले हमको गालियां दो
1: तब बजाएंगे,
0: तब हम बजाएंगे,
1: गजब गजब।
0: तो ये एटमोसफियर था
1: जी। उनके साथ आपने कुछ गाने बजाए?
0: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए।
1: अच्छा।
0: याद नहीं।
1: एसडी बर्मन,
0: अरे बर्मन दादा तो, अरे बाप रे,
1: उनकी यादें माटी है।
0: बर्मन साहब के यहाँ तो बजा ही रहते क्योंकि सेम ग्रुप था
1: जी जी,
0: पंचम जी का। इतना मुझे याद है कि महबूब में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी।
1: हाँ।
0: शायद गाइड होगी।
1: ओके।
0: तो हम लोग बजा रहे थे, रिहर्सल होगी तो बर्मन साहब ने कुछ मलोरी जी को पीस बताया, बीच में खड़े होके, महबूब स्टूडियो की बात है, पीस बताया उन्होंने। तो उन्होंने वो पीस बताया और मैंने वो यहाँ से वो पीस बजा दिया।
1: अरे गजब।
0: तो ऐसे मुड़ के देखा, मुरली को पूछते बंगाली में कौन बजाया, बोले वो लड़का, फिर से बोलो बजाने के लिए। तो मैंने फिर से बजा दिया। तो मुरली को बोलते सबको बोलो ऐसा बजाने के लिए।
1: अरे बाप रे,
0: जैसा उत्तम बजा रहा है।
1: गजब।
0: यूनुस जी मैं बैठा था 2nd या 3rd रो में, 2nd डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी।
1: ओ
0: दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया।
1: वाह।
0: मैं 3rd रो से 1st रो में आ गया।
1: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे वो और अपनी धुन के पक्के,
0: बहुत जबरदस्त।
1: कुछ और घटना याद आती
0: है? और एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मुरली ने छोड़ दिया था
1: जी,
0: तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आमतौर पे कोई नहीं करता, बट मेरे से होती चली गई।
1: अच्छा।
0: क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट मेरे से ये चीज होती चली गई जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा, जो ये मेरे से होती चलेगी, मैंने नहीं किया, होती चलेगी।
1: जी
0: बर्मन साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अरेंजमेंट के लिए।
1: अच्छा।
0: हाँ, कि मेरे साथ काम करो। तो मैं गया, बैठा, उत्तम बासु मुरो तो छोड़ के चले गया। मैंने कहा हाँ दादा, वो तो पता चला, वो तो वहां बैठे हैं मद्रास में, तो हमको गान करना है इसका, गोल्डी का, बहुत इमीडिएटली गान करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, क्या क्या सोच रहे हो? मैं कहा दादा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमको ना बोलता है? मैं कहा दादा आपको ना नहीं बोल रहा। फिर मैं दादा मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी में कभी नहीं लेता। मैंने कहा आपके साथ बहुत बजाया, बासु मुरारी काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो। मैं कहा दादा नहीं कर पाऊंगा। यूनुस कैन यू बिलीव इट, वो आदमी उठा।
1: हाँ।
0: दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा।
1: जी।
0: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें।
1: जी जी।
0: खूब भालो, खूब भालो,
1: खूब भालो,
0: खूब भालो। मैं चला गया।
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली? लेकिन
0: मैंने किसी अरेंजर की जगह नहीं ली।
1: जी।
0: मेरे को सबका ऑफर आया।
1: जी।
0: कल्याण जी का ऑफर आया, पप्पी लेडी का ऑफर आया, अनु मेलक मेरे पीछे, शंकर जयकिशन का ऑफर आया, आर्ट डिपार्टमेंट का बाद में जब वासुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने कहा मदन जी का ऑफर आया मुझे।
1: जी जी।
0: मैंने कभी नहीं लिया,
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी दूसरे
0: मैं उनके अंडर में, उनके अंडर में काम कर चुका हूँ, मैं अभी कैसे जाऊँ?
1: जी
0: एज ए म्यूजिशियन चले जाऊंगा, म्यूजिशियन ठीक है, बट एज ए अरेंजर में नहीं लिया मैंने आज तक, किसी की जगह नहीं ली।
1: क्या बात है,
0: कभी नहीं।
1: लेकिन एज ए म्यूजिशियन आप बजाते रहे?
0: एज ए म्यूजिशियन बजाते,
1: दादा के लिए भी बजाते?
0: हाँ हाँ दादा के लिए। लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था।
1: जी।
0: फिर वो अनिल अरुण आ गए थे।
1: हाँ हाँ।
0: तो फिर वो ग्रुप पूरा फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सके, उनके हैंड में तो बिल्कुल नहीं बजा सका।

सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जा।

कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर।

0: उत्तम जी देखिए, नौशाद साहब की, मदन मोहन की हमने बातें की, हमने रोशन साहब की बातें की, एसडी बर्मन की बातें की, और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनकी बातें करनी जरूरी है?
1: देखिए जी, मैंने तो सब क्या बजाया है, कोई ऐसा संगीतकार नहीं था 1962 के बाद
0: जी,
1: चाहे वो श्री रामचंद्र साहब हो, चित्रगुप्त जी हो।
0: चित्रगुप्त जी क्या अभी बजाया?
1: हाँ,
0: और अन्ना क्या अभी बजाया?
1: अन्ना क्या तो एक किस्सा है, बहुत संगीतमयी किस्सा है वो।
0: बताइए।
1: वो किस्सा जरूरी है आज के लोगों के लिए, वो किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक तो क्या, अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर 70-80 म्यूजिशियन बैठा हुआ है और अन्ना की एंट्री हो गई तो सब सैलेड हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, फिर आप अगर एक सुई भी फेंकोगे तो उसकी भी आवाज आएगी, इतना डिसिप्लिन था। और अन्ना का क्या था कि अन्ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, हम उसके मुलाजिम हैं, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उनके म्यूजिशियन हैं, रिकॉर्डिंग के बाद वो हमारे दोस्त हैं।
0: वाह वाह वाह, पूरा मूड बदल जाएगा।
1: ये उनका फर्क था, और रिकॉर्डिंग के बाद ये वही अन्ना है, आप कोई सोच भी नहीं सकते
0: जी।
1: तो हम लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे
0: जी,
1: और अच्छा गाना, मुझे गाना याद नहीं है, अच्छा गाना था, रिहर्सल विहर्सल किया, गाना रिहर्सल हो गई, रफी साहब आए, रफी साहब ने रिहर्सल

0: किया, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो अंदर से शर्मा जी की आवाज आई, अन्ना की आवाज आई, जॉनी चलो टेक शुरू करते हैं। जॉनी गोम्स उनके असिस्टेंट थे, ओके सर। 1-2 दिया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, पकड़ा गया, म्यूजिक बन गया, अंतरा शुरू और अंतरा चल रहा है। अंतर के बाद जहां क्रॉस आया
1: जी,
0: क्रॉस शुरू और अंदर से कट हुआ।
1: अरे अरे
0: आवाज आई कट कट, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों कट हुआ। एक टेक कट हो गई, सेम जगह में दूसरी टेक कट हुई,
1: क्रॉस पे,
0: क्रॉस पे।

0: एक छोटी सी जगह थी, बोले वो शंकर जैकेशन की जगह है, ये मेरी जगह है।
1: गाना याद है
0: नहीं गाना वही तो प्रॉब्लम ये है ना, उस टाइम इतना काम करते थे, सुबह
1: जी
0: अलग दोपहर को अलग, जैसे अभी यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, कहाँ याद रहेगा क्या क्या बोला।
1: जी जी जी
0: ऐसी हमारी हालत थी,
1: जी
0: सुबह मदन साहब का बजा रहे हैं, दोपहर को श्री रामचंद्र का बजा रहे हैं, रात को जिंगल कर रहे हैं, सुबह 7 बजे फिर जिंगल कर रहे हैं, फिर शंकर जयशंकर का बजा रहे हैं, तो ये हालत थी
1: लगातार भागदौड़ होती थी
0: लगातार भाग।
1: उत्तम जी, बहुत भागदौड़ चल रही थी, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजा रहे थे, फेलो म्यूजिशियंस के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जैसे केसी दादा से, बजी दादा से, मनोहारी दादा
0: ये
1: से?
0: सब लोग जी, ये तो ऐसा था ना, ये आप सोचिए कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शायद 7 या 8 घंटे या 6 घंटे वाइफ के साथ पास रहता था घर में,
1: हाँ
0: बाकी तो सब इनके साथ ही रहता था।
1: हाँ जी
0: तो केसी जी, भूपी जी, मरोरी जी, और उसके बाद भज्जी, ये सब लोग तो मतलब आप सोचो 16 16 घंटे हम साथ में थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वक्त इन लोगों के साथ बीता
0: ज्यादा
1: था।
0: गुजरी जो लाइफ है वो इनके साथ ही गुजरी है।
1: तो आपके सबसे पक्के दोस्तों में से कौन थे इनमें?
0: पक्के दोस्तों में भज्जी था,
1: अच्छा
0: भज्जी एक वकील थे, विदुषण थे, वो
1: हाँ,
0: भी गुजर गया अभी, भज्जी, वकील, भूपी जी,
1: भूपिंदर सिंह जी, जो
0: और
1: बहुत बड़े गायक भी थे और गिटारिस्ट थे
0: बहुत, और खेरसी जी,
1: जी
0: ये हम लोग काफी अच्छा ग्रुप था, रात को साथ में बैठना,
1: जी
0: और मैंने सबको छोड़ना क्योंकि मैं नहीं पीता था,
1: जी
0: लेकिन ड्राइवर इनका मैं था, गाड़ी भी मेरी, ड्राइवर भी मैं, और छोड़ना भी इनको, तो ये
1: पार्टियां वो लोग करेंगे और
0: पार्टियां वो लोग
1: छोड़ेंगे आप।
0: करेंगे क्योंकि ये सब दोस्त है, लेकिन छोड़ूंगा सबको मैं घर में।
1: इन सब में सबसे बदमाश कौन थे?
0: बदमाश तो सारे थे सारे बदमाश थे,
1: जी
0: म्यूजिशियन जो है ना
1: जी
0: एक्चुअली बदमाश होता है।
1: अच्छा,
0: हाँ क्योंकि
1: आपकी भी
0: बहुत,
1: थी बदमाशियां?
0: हाँ नहीं, हमारी बात, हमारी बदमाशी भी क्या है, म्यूजिक में निकलती थी।
1: अच्छा
0: म्यूजिशियन जो है वो स्मार्ट होता है
1: जी
0: क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो वो बहुत माइन्यूट काम करना पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: एक एक सुर को पकड़ना और सुर में लाना और सुर में बजाना, ये एक आत्माई ढांचा है कि जब तक अगर आपके पास आत्मा नहीं है। इलैयाराजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि म्यूजिशियंस आर बॉर्न नॉट मेड।
1: वाह वाह वाह, पैदा होते हैं बनाए नहीं जा सकते। इलियाराजा का जिक्र निकल गया, मुझे ये पता है कि आपने सिर्फ मुंबई के फिल्म जगत में ही काम नहीं किया है, बल्कि आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया है।
0: जी मैंने, राजा मुझे लेके गए साउथ में अपनी फिल्म के लिए,
1: जी
0: और मैंने राजा साहब के कुछ 600 फिल्में का गाना मिक्सिंग मैंने की है।
1: 600 फिल्में, तो जीवन भर का काम होता है ये तो
0: हाँ बट वो तो 35 फिल्में 1 साल में करते थे, ऐसा प्रोजेक्टर पैदा नहीं होगा।
1: तो आपने बहुत वक्त मद्रास में भी
0: बहुत
1: बिताया,
0: मेरा एक पाँव मद्रास में, एक पाँव बॉम्बे में।
1: तो वहां आप बतौर अरेंजर होते
0: जैसे अभी मैंने बताया मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग करता था
1: आई।
0: और कभी कभी उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो कंडक्ट करता था, कभी कोई सोलो होता तो सोलो भी बजाता था,
1: वाह,
0: और हम साथ में खाना खाते थे, साथ में चलते थे, बहुत
1: लैंग्वेज की
0: प्राइवेट,
1: प्रॉब्लम,
0: कुछ नहीं, म्यूजिकल लैंग्वेज।
1: क्या बात है। इलैयाराजा की म्यूजिक में बहुत लेयर्स होती हैं, बहुत इंट्रिकेट काम होता है,
0: बहुत,
1: तो कुछ यादें
0: मैं
1: बताइए।
0: आपको बताऊं, यहां पे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी भी संगीतकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे बड़ा म्यूजिक कोई नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात
0: इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह है,
1: जी,
0: बट ही इज द मैन हु नोज अबाउट म्यूजिक फ्रॉम ए टू जेड,
1: वाह,
0: लिखना खुद, पढ़ना खुद, कंपोज खुद करना, एक एक म्यूजिशियंस को क्या बजवाना है ये ही नोज।
1: वाह,
0: तो ये मोस्ट लर्नेड, हमारे यहाँ के जो संगीतकार थे बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका कोई जगह ही नहीं, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, बर्मन साहब, आर डी बर्मन, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, इनको चाहिए एक सहारा लिखने वाला, एक नोटेशन लिखने वाला चाहिए, और ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जो ऑब्लिगेटो बनाए, जो कॉर्ड डाले,
1: जी
0: वहां पे अरेंजर की जगह है,
1: जी
0: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अरेंजमेंट किए तो मेरी एक जगह थी वहां पे,
1: बिल्कुल,
0: बट इलैयाराजा के वो किसी की जगह नहीं है,
1: सारा
0: इलैयाराजा
1: काम खुद
0: क्या
1: करेंगे,
0: सारा काम खुद करते, इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा म्यूजिक हो।
1: क्या बात है।
0: जैसे मैं आज अगर मैं करता हूं, जब मैं अपना काम करता हूं, मेरा सारा काम खुद का है, मैं लिखता भी खुद हूं, जब सोलो पीस होते बजा दी कुछ, लेकिन स्टिल व्हाट राजा साहब जो लिखते हैं वो एक आम आदमी नहीं लिख सकता, एक जानकार भी नहीं लिख सकता और आम आदमी भी नहीं लिख सकता।
1: सदमा का गाना मुझे याद आ रहा है,
0: हाँ सुरेश वाडकर
1: जी, आपने बजाया?
0: मैंने बजाया।
1: ऐ जिंदगी गले लगा ली।

0: इलिया राजा की बातें हुई, मुझे एक चीज याद आई, नय्यर साहब।
1: ओहो,
0: उनसे जुड़ी हुई यादें हैं, एकदम हम बीच में स्किप कर गए। बल्कि मुझे तो ये भी याद आता है कि जब उनकी वापसी का दौर था, तब भी क्या कुछ काम किया आपने, निश्चय वगैरह जो फिल्में आई थी?
1: तब मुझे बुलाया था
0: जी,
1: मेरी वही प्रॉब्लम थी, नहीं
0: आपने मना कर दिया?
1: ना, नहीं कर पाया आपके साथ। नय्यर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड संगीतकार इन द इंडस्ट्री
0: जी,
1: स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस, स्पेशली फॉर सिंगर्स ऑफ दोज डेज, रफी साहब। और क्योंकि हमको जो 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते थे
0: जी,
1: वो सेट पे पैसे दिलाने वाले नय्यर साहब।
0: अच्छा, फॉरन ये काम किया, ये पैसे
1: नहीं, उनका ये था कि भी ये प्रोड्यूसर को बोला कि कल रिकॉर्डिंग है तो इतने पैसे ले आना, ये मैंने किस्सा सुना हुआ है
0: जी जी,
1: ये पैसे ले आना। तो प्रोड्यूसर बोलता है इतने पैसे क्या जरूरत है, वो तो पैसे 3 महीने के बाद दें। अच्छा, कब दोगे? 3 महीने, तो 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे।
0: जी,
1: तो नय्यर साहब इज द म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिशियंस को सेट पे पैसा दिलाना और 500 से 5000 रुपया करना सिंगर का, ये नय्यर साहब।
0: वाह,
1: रफी साहब 500 रुपए लेते हैं, 5000 रुपए दिलवाया उनको और म्यूजिशियंस का पूरा। और किसी ने अगर सोलो अच्छा बजा, मरोली जी तो हमेशा उनसे, किसी ने ऐसा सोलो बजा दिया तो जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई जेब में 500 रुपए डाल दिया, 100 रुपए डाल दिया, जो भी डाल दिया,
0: जो अच्छा बजाया उसका इनाम।
1: तो ये नय्यर साहब थे।
0: वाह, अब बाद में नय्यर साहब की शैली में तुषार भाटिया ने अंदाज अपना अपना में म्यूजिक दिया था।
1: हाँ, वो मैंने किया है।
0: वो आपने किया है?
1: हाँ,
0: उसके बारे में बताइए।
1: वो ही, बस मैंने दो या तीन गाने किए, उसके ज्यादा नहीं कर पाया, मेरा टाइम नहीं था मेरे पास। और बहुत पूरा कॉपी म्यूजिक, पूरा
0: नय्यर साहब की शैली,
1: पूरी नय्यर साहब को लेके। और क्या होता है ना, देखिए नय्यर साहब नय्यर साहब है,
0: बिल्कुल
1: आप उनको कितना भी कॉपी कर लो, नय्यर साहब है। आप कॉपी हो,
0: बिल्कुल।
1: आप आज अगर आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो तो यू आर ए कॉपी, यू आर नॉट ओरिजिनल, डू समथिंग ओरिजिनल।
0: बहुत सही बात करें।
1: आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, सलमान खान आमिर खान की फिल्म कर रहा है
0: जी।
1: अच्छा, कुछ डिफरेंट म्यूजिक दिया होता तो आज शायद कुछ अलग होता।
0: हम सब ये बात करते हैं कि नय्यर की शैली के गाने।
1: हाँ, तो बात वही आ गई ना
0: जी,
1: हार्डली चले वो गाने, ज्यादा नहीं चले, क्योंकि जब ओरिजिनल सुनना तो फिर नय्यर सबको ओरिजिनल सुनते हैं ना।
0: गीतकारों से किस तरह के रिश्ते रहे जब आप म्यूजिशियन थे तब?
1: हाँ, मैंने सबके साथ एज ए अरेंजर, साहिर साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और उस टाइम के जो योगेश और इंदिवर जी, सबके साथ काम किया हुआ
0: जी जी।
1: रिश्ते भी अच्छे थे, नमस्ते नमस्ते थी।
0: बख्शी साहब,
1: बख्शी साहब के साथ मैंने एज ए म्यूजिशियन काम नहीं किया, मुझे बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे।
0: मुझे पता है ये बात, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र आगे दिल तो पागल है कि टाइम करेंगे।
1: मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो बख्शी साहब, एक तो वो पान खाते रहना
0: और पीकदान,
1: वो पीकदान रखना और उसमें थूकते रहना, लेकिन दिल तो पागल आई।
0: हाँ,
1: अभी हम गाने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दिल तो पागल कर रहा हूँ, मैं तो अपना टेलीफिल्म कर रहा था यशराज फिल्म की।
0: हाँ, ये बताया गया था कि ये एक टेलीफिल्म है,
1: टेलीफिल्म,
0: और कतई नहीं बताया गया कि स्टार कास्ट क्या है।
1: नहीं, वो टेलीफिल्म ही थी।
0: ओके,
1: गानों ने कन्वर्ट कर दिया दिल तो पागल है। उन्होंने जब गाने सुने तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने तो फिल्म के लग रहे हैं। आदि ने सुना, भाभी जी ने सुना, मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, संजीव कोहली,
0: मदन जी के बड़े
1: लड़के
0: जी,
1: वही तो लेके गए मुझे।
0: अच्छा,
1: ये बहुत बड़ा जिक्र है,
0: इसको
1: होल्ड रखते हैं,
0: इसको होल्ड रखते हैं।
1: हाँ,
0: यहाँ सिर्फ एक झलक हमने सुना दी।
1: हाँ,
0: आपके जो म्यूजिक की यात्रा की बातें हो रही थी और

0: उसमें हमने बहुत अलग अलग तमाम संगीतकारों को याद किया। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत भागदौड़ थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा कितने गाने आप करते थे?
1: देखिए जी, एज ए म्यूजिशियन जो है ना, वो समझिए सुबह मदन साहब का बजाया, दोपहर को नौशाद साहब का बजाया, दो गाने।
0: वाह, दो लेजेंड लोगों के साथ काम हो गया आधे दिन में,
1: एक दिन में।
0: अभी तो एक शिफ्ट बची है।
1: नहीं, एक दो शिफ्टों में
0: जी।
1: सुबह एक शिफ्ट जो है वो मदन साहब के लिए,
0: अच्छा सुबह की पूरी,
1: और दोपहर को 3 से 7 या 3 से 8 या 3 से 9 दूसरे प्रोजेक्टर के लिए।
0: जी जी,
1: ये हमारा उस टाइम पे लॉ था, यू कैन नॉट प्ले मोर देन दैट।
0: दो से ज्यादा नहीं,
1: दो से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ में जिंगल चलते थे
0: जी,
1: एड फिल्म के गाने चलते थे, तो वो सुबह हम 7 बजे करते थे और उसके बाद में रात को 9 बजे बैकग्राउंड खत्म किया, 9 बजे के बाद फिर जिंगल किया, तो रात को 12-12 एक-एक बजे काम करते थे।
0: और जिंगल में भी इतना सारा म्यूजिक होता था?
1: जिंगल में ज्यादा नहीं, 7-8 म्यूजिशियन, 10 म्यूजिशियन बहुत हुए। लेकिन एज ए अरेंजर मैंने दिन में 7-7 गाने किए हुए।
0: बाप रे बाप, सब अलग अलग लोगों के लिए।
1: हाँ, मतलब समझिए एक किसी का, जैसे आप आज कोई भी एल्बम उठा लो, चाहे वो पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत हो, भूपेंद्र हो, सबके जो पहले फर्स्ट एल्बम है ना, वो मैंने किया हुआ है।
0: अरे बाप रे, तो द लेटेस्ट भी आपने किया जगजीत का?
1: जगजीत की जो फिल्में के जो हिट गाने हैं वो सारे मेरे किए हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: उसके पहले ओपनिंग के जो गाने हैं वो सब मेरे किए हुए हैं। तलत के, आपके गुलाम अली का एक एल्बम आया था मिराज़े गजल, वो मेरी की हुई है सारी।
0: आशा भोसले और गुलाम अली,
1: वो सारी मेरी की हुई है।
0: अरे क्या बात है, तो मिराज़े गजल में से एक गजल सुनी जाए फिर।
1: जरूर जरूर सुनिए, उसमें वायलिन सोलो बहुत है।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: आप सुन लीजिए उसको।
0: म्यूजिक अरेंजमेंट की बात बहुत हो रही है और आप बता रहे हैं कि आपने कई बार एक एक दिन में 7-7 गाने अरेंज किए। हमारे श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि ये म्यूजिक अरेंजमेंट क्या चीज होती,
1: क्या होता है, यस
0: है ना,
1: यस।
0: तो ये आप बताएं कि असल में गाना बनता किस तरह से है और उसमें म्यूजिक अरेंजर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से कितना अलग है।
1: देखिए, यहाँ पे कंडक्टर का चांस तो मुझे सभी चाचा ने दिया
0: जी,
1: लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट का चांस जो है वो मुझे दिया शंकर शंभू।
0: शंकर शंभू कव्वाल सर?
1: जो कव्वाल थे। मुझे मैसेज आया कि आओ बुलाया, तो मैं गया मिलने के लिए। मैं जी, हम एक पंजाबी फिल्म कर रहे हैं और बेटा तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा जी मैंने कभी अरेंजमेंट किया ही नहीं। बोले नहीं करो, दे आर दी पर्सन हु मेड मी अरेंजर।
0: गजब, ये किस साल की बात होगी?
1: 60s की होगी
0: जी जी।
1: हाँ, 60s 65 मोस्टली 65
0: जी,
1: क्योंकि 65 से मैंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था। तो पहला उनका, उसके बाद में मैं जैसे ही मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया तो जितने भी छोटे म्यूजिशियन थे, जैसे इकबाल कुरैशी, छोटा इकबाल, बीएन बाली, ऐसे काफी लोग छोटे छोटे म्यूजिशियन थे, सबने मुझे बुलाना शुरू कर दिया
0: अरेंजर के तौर पर।
1: और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मुझे मिलते थे 30 रुपए में 2 गानों का अरेंजमेंट करना। 30 रुपए में
0: जी
1: 2 गानों का अरेंजमेंट करना, तो 2 गाने सुबह 2 गाने शाम, तो दिन के 60 रुपए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बिजी हो गया तो जो म्यूजिशियन आए बजाने के लिए वो 100 रुपए 2 गाने का लें, कोई 80 ले, कोई 100 ले, कोई 70 ले, कोई 75 ले, और मुझे मिले 30 रुपए।
0: अरे अरे,
1: तो एक दिन मैं एक संगीतकार के यहाँ पहुंच गया सुबह 7 बजे। 7 बजे नॉक किया मैंने, अरे उत्तम तुम कहाँ से आ गए सुबह सुबह? जी आ गए। अच्छा आ जाओ, चाय पियोगे? मैं जी पी लेंगे। मैंने कहा सर आपसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो। मैंने कहा आप मुझे 30 रुपए 2 गानों के देते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कंडक्टिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो कोई 100 रुपया ले जाता है, कोई 70 रुपये ले जाता है, कोई ऐसे, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। वो कल कभी नहीं आई। उन्होंने मुझे निकाल ही दिया।
0: ओ,
1: पैसे मांग लिए, जाओ आउट। अब बताओ, आपको जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की।
0: जी जी।
1: फिर उसके बाद जो मिलता रहा मैं करता रहा, फिर मेरा नाम धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर अपने आप ही लोगों ने मेरे पैसे
0: बढ़ाने शुरू किए। और म्यूजिक अरेंजमेंट में बहुत सारे काम शामिल।
1: म्यूजिक अरेंजमेंट में मैंने जितना जिंदगी भर काम किया
0: जी,
1: मैंने ये काम किया कि एक तो आपने मुझे गाना दे दिया,
0: हाँ
1: ठीक है, आपने एक मेलोडी दे दी मुझे, अब उस मेलोडी के हारमोनी, उस मेलोडी के

0: बीच के म्यूजिक, चाहे वो ओपनिंग म्यूजिक हो, बीच का म्यूजिक हो, वो सारा मैंने बनाया।
1: जी
0: अब पूरे म्यूजिशंस को रिहर्सल कराई, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई, क्योंकि साउंड मेरा अपना बैलेंस नहीं होता तो आई नेवर यूज टू ट्रस्ट एनीबॉडी। मैं मेरा बैलेंस मैं करूंगा।
1: अच्छा, तो पैनल पर भी आप ही बैठेंगे?
0: हाँ, मेरे साथ रिकॉर्डिंग के साथ मैं बैठता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए।
1: जी
0: तो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना, वो वन मैन शो किया। म्यूजिटर का काम था गाना दे दो,
1: मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने केवल ट्यून बनाई।
0: ट्यून बनाई, और उसमें भी बहुत सारी चीज मैंने करेक्शन की है,
1: अच्छा।
0: क्योंकि कई ऐसे म्यूजिटर आते थे जिनको ताल का ही पता नहीं होता था। वो लेके आ जाते थे ये सब ऐसा गाना है, उसको ताल में ठीक करना, उसको ठीक करना, आर्टिस्टों को सिखाना। आशा जी होती थी, लता जी होती थी, मुझे ही पूछती थी कि गाना उत्तम इसको कैसे करना है, इसको या क्या जो भी करना है। तो मेरा वन मैन शो रहा है
1: गजब,
0: टिल हम आपके हैं कौन,
1: क्या बात है।
0: हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जो है
1: ये भी
0: ये।
1: बताना जरूरी कि ये फिल्में वो हैं जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण थे, लेकिन अरेंजर आप थे।
0: अरेंजर मैं था, बैकग्राउंड म्यूजिक सारा मेरा है, म्यूजिक सारा मेरा है, अरेंजमेंट पूरा मेरा है, सब कुछ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरी है पूरी, मेरे बिना कुछ वहां हिलता नहीं था।
1: जी
0: तो इसलिए मैंने ऐसे अरेंजर जो काम किया है वो राइट फ्रॉम टिल रिलीज मैंने काम किया है। तो ये एज ए अरेंजर जो मेरी जो पोस्ट रही वो मैंने आपको बताई है।
1: जी जी
0: बाकी कई पुराने संगीतकारों में बहुत खास बात ये थी कि वो म्यूजिक अपना खुद बनाते थे।
1: फर्स्ट म्यूजिक, सेकंड
0: मदन साहब
1: म्यूजिक।
0: म्यूजिक खुद, मेलोडी खुद बना देते थे,
1: जी
0: नौशाद साहब हो गए, शंकर किशन, ये सब लोग अपना म्यूजिक बना देते थे। तो अरेंजर खाली लिखता था, अरेंजर
1: अच्छा,
0: लिखता था, उसको थोड़ा सजाना बजाना, कॉर्ड डालना, वायलिन बजाएगा, चेलो बजाएगा या क्या बजाएगा, वो सब करते थे। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने वन मैन शो शुरू किया।
1: तो आप तय करते थे कि यहां इतने वायलिन होंगे,
0: हाँ,
1: मैंडोलिन आएगा कि गिटार आएगा,
0: क्योंकि म्यूजिक
1: या
0: सारा मेरा होता था ना,
1: जी,
0: तो
1: और
0: मैंने
1: वो
0: अभी,
1: पीसेस भी कैसे बजाए जाएंगे,
0: हाँ,
1: उनका चलन क्या होगा, वो
0: जैसे
1: सब
0: अभी
1: आप तय
0: मदन
1: करते
0: साहब
1: थे।
0: के रा रा रा री री तिरी री, वो बजा दिया,
1: जी
0: और वो पीस मेरा है, मैंने उसको कंपोज किया, बच गया गलती से, मैंने कंपोज नहीं किया गलती
1: जी
0: से।
1: जी
0: तो ऐसे जितने भी म्यूजिक हैं, कंपोज पीसीज हैं, मैंने प्यार का उठा लीजिए आप, हम आपके मन उठा लीजिए, मेरे अपने म्यूजिक उठा लीजिए, दिल तो पागल से, या आप पेंटर बाबू चले जाइए,
1: जी
0: जब
1: जी
0: उत्तम जगदीश थे, तो
1: जी जी
0: सारे म्यूजिक जो है, हर चीज इंटरलूड वगैरह सब मेरा बना हुआ।
1: अब जैसे हम मैंने प्यार किया की बात करते हैं, अब दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उससे पहले का जो म्यूजिक है, जो फ्लूट
0: जी
1: जिस तरह से चलती है, और
0: जी
1: वो तो वो सारा आपका तैयार किया था।
0: सारा मेरा बनाया हुआ है।
1: जी
0: और उस टाइम पे वो जो पीस आया था, तारा तारा तारा तारा तारा तारा, इससे पहले ये फ्लूट कभी नहीं बजी थी इस टाइम।
1: हाँ, वही बात है,
0: तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि अरे फ्लूट ऐसे भी बज सकती है,
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: बहुत लोगों ने यूज किया वो
1: वो
0: इस
1: एक
0: टाइम।
1: आलाप की तरह है प्रॉपरली जो आता है।
0: बिल्कुल।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले।

जश्न भारती की 70वीं सालगिरह 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: आंदोलन करने की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि रांची के धुरवा स्थित केंद्रीय निर्वाचन आयोग कार्यालय के समक्ष भी प्रदर्शन किया जाएगा। रांची में 3 दिनों से चल रहा 5वां अखिल भारतीय नेत्र सम्मेलन AIOS मिड टर्म कॉन्फ्रेंस आज संपन्न हो गया। सम्मेलन में नेत्र विशेषज्ञों ने समय से पहले जन्मे बच्चों में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी की समय पर जांच और उपचार की आवश्यकता पर जोर दिया। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर भारती कश्यप ने रेटिनोब्लास्टोमा में आंख की पुतली में सफेद चमक को महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत बताते हुए तत्काल विशेषज्ञ से जांच कराने की सलाह दी। लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा अब 6 दिसंबर को आयोजित होगी। पहले यह प्रवेश परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित होने वाली थी। विद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा की तिथि के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन की तिथियों में संशोधन किया है। अब इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक।

सभी सुनने वालों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। प्यार सच्चा है गर तो महकेगा चंदन की तरह, वरना सारी रात तुम्हारी आंखों में गुजर जाएगी। वो लम्हात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ कह न सके हम, तकदीर के हाथों लुटते रहे, अश्क आंखों से ही बस बहते रहे, हम बुनते रहे ख्वाबों को अक्सर, और एक सिरे पे तन्हा रहे हम, वो दूजा सिरा ढूंढ न पाए हम।

लोगों ने बहुत समझाया हमको, ये इश्क नहीं आसा, तकदीर में जो होगा वो मिलेगा ही तुझे एक दिन, मगर हम जान की बाजी लगा बैठे, तमन्ना उसे पाने की, उसे अपना बनाने की, जो कसम खा बैठे।

ख्यालों में उसी के हम करवटें बदलते रहे, वो नहीं थे पास मगर उन्हीं को याद करते रहे। चाहत भरे दो दिलों की दास्तां चुपके चुपके असर करने लगी, रह रहकर धड़कनों में बस एक ही पुकार उठती।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। वो शाम आई, वो रात आई, तकदीर इतनी बेरहम भी न थी। ये हमने उस रोज जाना, आसमां पे चांद अपने पूरे शबाब पर था। वो मेरे सामने चांदनी बनकर इस तरह आई। उस रात की तन्हाई में दिल मचल उठा और मोहब्बत भरे तराने ओठों पे सज गए।

जब सामने आ ही गए वो, तकदीर मेरी हंसी पड़ी। क्या खूब दीवाने होते हैं, नजरों में मोहब्बत के फूल खिल उठते हैं, सांसें महक उठती हैं, फिजाओं में रंग बिखर गए और आपस में शिकायतें भी तो यही करने लगे।

क्या कहें, राज दिल दीवानों से छुपाया न गया। मोहब्बत की आग ही कुछ ऐसी होती है कि तकदीर भी पल में बदल जाती है। प्यार के आगे वो मुस्कुरा के झुक जाती है। प्यार परवान चढ़ता है जब दो दिलों की बातें आंखों ही आंखों में होने लग जाती हैं।

मौसम कितना भी सुहाना हो या हो रातें सुहानी, बस वो तुम्हारी यादें, वो प्यार भरी बातें, वो तुम्हारी जुल्फों का लहराना मुझे मेरी नींदों से जुदा कर जाता है। क्या कहूँ मैं, किससे कहूँ अपने दिल का हाल, उस पर से ये रात का आलम भी कुछ कम कहर नहीं जा रहा।

छाए गीत में मोहब्बत भरे तराने आपके दिलों के बेहद करीब छोड़कर जाती हूँ। शायद ख्वाबों में मुलाकात हो जाए तो मंजरी वर्मा का नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज के ध्वनि तरंगों पर। स्वागत है आपका सायंकालीन सभा में। श्रोता मित्रों, कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लूप, ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने आज कहा कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में युवाओं ने खुद नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि असहमति व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके विचारों से होनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के खिलाफ की जा रही टिप्पणियों को अनुचित बताया। श्री हरिवंश आज रांची में काके टॉक्स की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रशांत आनंद ने भी अपने विचार रखे। लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा अब 6 दिसंबर को आयोजित होगी। पहले यह प्रवेश परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित होने वाली थी। विद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा की तिथि के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन की तिथियों में संशोधन 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। पलामू के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र से लापता 3 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने गोपालगंज से बरामद कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चों को परिजनों के सुपुर्द करने की कार्रवाई की जा रही है। सिमडेगा जिले में आज सुबह भेड़ी कुदर के पास कार और ट्रक की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके दो दोस्त घायल हो गए। मृतक की पहचान सहरसा जिले के निवासी और एक निजी कंपनी में इंजीनियर के रूप में हुई है। दो घायलों का इलाज जारी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे
2: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और श्रोताओ स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:02 हो चुके हैं। तो आइए सुनते हैं ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को कल्याण कुमार का नमस्कार, जोहार। श्रोताओं, आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम के तहत आप चर्चा में जानेंगे अरहर की खेती में प्रबंधन, साथ ही साथ आप सुनेंगे धान फसल के कीट एवं रोग प्रबंधन। इसी कार्यक्रम के कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार से लिखी भेंटवार्ता। विषय है बरसाती सब्जियों की खेती। भेंट करता है संतोष कुमार। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं, जानते हैं अरहर की

और इन सब कीटों की यदि समय पर पहचान ना की जाए, समेकित कीट प्रबंधन ना की जाए, तो अच्छे खासे फसल की नुकसान हो सकती है। इसलिए नुकसान से बचाने के लिए समेकित कीट प्रबंधन का होना आवश्यक है। और श्रोतों, इसमें यदि देखा जाए तो हमें कई तरीके से, कई मायने से हमें अपने अरहर की खेती का प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें बीज खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक, इन सब बातों को देखते हुए ही हम अपने फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम खेती जो हम अरहर की करते हैं तो उसमें जल निकास वाली दोमट मिट्टी या फिर हल्की दोमट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। खेत में पानी का जमाव ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करना रहता है। और गर्मी में एक गहरी जुताई करने के पश्चात 2 से 3 बार हल्की जुताई करने के बाद ही मिट्टी को भुरभुरा हो जाना आवश्यक है। तो खेत को समतल करने के पश्चात जल निकास की उचित व्यवस्था होना आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ जब भी हम अरहर की खेती करते हैं तो हमें प्रमाणित, स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का ही उपयोग करना चाहिए। क्षेत्र और अवधि के अनुसार ही उपयुक्त किस्म का चयन करें। बुआई से पहले बीज को अनुशंसित फफूंदनाशी से उपचारित करें, इससे काफ़ी लाभ हो जाता है। साथ ही साथ अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करने पर जड़ों में गांठों का विकास अच्छा होता है और फिर पौधे को नाइट्रोजन की उपलब्धता होने में काफ़ी इससे सहायता मिलती है। तो इस तरीके से करना काफ़ी फायदेमंद हो जाता है श्रोताओं। साथ ही साथ बुआई मानसून शुरू होने के समय ही की जानी चाहिए, और जैसा कि अपने प्रदेश में समय पर बुआई करने से फसल को पर्याप्त नमी भी मिल जाती है। और लंबी अवधि की किस्मों को चयन करने की अपेक्षा अधिक दूरी और कम अवधि की किस्मों में कम दूरी रखी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, यदि लंबी अवधि की किस्म का आप चयन करते हैं तो अधिक दूरी और कम अवधि की किस्मों में कम दूरी का होना आवश्यक हो जाता है। और कतार से कतार की दूरी करीबन 60 से 90 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है वो 20 से 30 सेंटीमीटर रखें। साथ ही साथ जो भी स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विशेषज्ञ हो, उन्हीं के अनुशंसा के आधार पर अपनी दूरी को निर्धारित करें। साथ ही साथ श्रोताओं, जब बात अरहर की बुआई की हो जाती है तो बात हम करते हैं खाद और उर्वरक के प्रबंधन पर। जी हाँ श्रोताओं, अरहर में प्रायः संतुलित पोषण प्रबंधन का होना जरूरी है। खेत की मिट्टी की जांच के आधार पर ही खाद और उर्वरक का उपयोग करें। इसमें अच्छे तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करें। इससे मिट्टी की जो संरचना है श्रोताओं, वो काफ़ी बेहतर होती चली जाती है। दलहनी फसल होने के कारण अरहर को नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है वो प्रायः अन्य फसलों की तुलना में काफ़ी कम जरूरत पड़ती है। हालांकि शुरुआती वृद्धि के लिए अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का होना आवश्यक हो जाता है। और साथ ही साथ श्रोताओं, ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग न करें, इससे बचें, विशेष रूप से अरहर की खेती में। साथ ही साथ श्रोताओं, हर फसल की तरह अरहर के भी फसल में खरपतवार आते हैं, तो शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार जो है वो अरहर की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए बुआई के लगभग 20 से 25 दिन के पश्चात पहली निराई गुड़ाई जरूर करें और 40 से 45 दिनों के पश्चात दूसरी निराई गुड़ाई करें। खेतों को हमेशा खरपतवार से मुक्त रखें, जिससे कि पौधों को पानी, पोषक तत्व और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिल सके। श्रोताओं, रासायनिक खरपतवार नाशी का प्रयोग न करें, और अगर आवश्यक पड़ जाए तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह

0: के पश्चात ही अनुशंसित मात्रा के अनुसार ही करें। अरहर प्राय वर्षा आधारित फसल है स्वतः, इसलिए लंबे समय तक सूखा पड़ने पर और महत्वपूर्ण अवस्था में ही सिंचाई इसके लिए लाभकारी होता है। फूल आना और दाना भरने की अवस्था में नमी की कमी पड़ सकती है या कमी होती है, तो वैसी स्थिति में सिंचाई जरूर करें। वहीं खेत में पानी के जमा रहने से जड़ों को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था भी रखें। जी हां श्रोताओं, जल निकासी की व्यवस्था रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अरहर में फली छेदक, पत्ती लपेटक, फली मक्खी या अन्य कीट नुकसान पहुंचा सकते हैं श्रोताओं, इसलिए नियमित रूप से खेत की देखभाल जरूरी है, इसका निरीक्षण करते रहे। इसमें फेरोमोन ट्रैप को लगाएं और रोगों से बचाव के लिए स्वस्थ बीज, बीज उपचार और फसल चक्र को भी श्रोताओं अपनाएं। फफूंदनाशी का प्रयोग कीट और रोग के पहचान के बाद ही करें और साथ ही साथ श्रोताओं, जब भी रासायनिक दवा का उपयोग करें तो अनुशंसित मात्रा को देखकर ही करें। अरहर की खेती सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का या जो भी उपयुक्त फसल हो, वह अंतर्वर्ती खेती के रूप में अरहर की खेती के साथ की जा सकती है। और श्रोताओं, इससे भूमि का जो बेहतर उपयोग भी होता है और एक से अधिक फसल के होने से ज़्यादा आय की भी प्राप्ति होती है। तो श्रोताओं, क्षेत्र की मिट्टी, वर्षा और बाजार के अनुसार ही फसल का चयन करें। और श्रोताओं, पूरे फसल चक्र में खेत का नियमित निरीक्षण जरूरी है। पौधों की वृद्धि, पत्तियों का रंग, कीटों की संख्या, रोग के लक्षण, मिट्टी की नमी, इन सब बातों पर ध्यान देना जरूरी है। किसी भी समस्या के दिखाई देने पर उसी समय इस पर निरंतर करने के उपाय को लागू करें, इससे कहीं ना कहीं नुकसान होने की जो बात आती है वो प्रायः कम हो जाती है। बात हम करते हैं कटाई और प्रबंधन की श्रोताओं, तो अधिकांश जो इसमें फलियां हैं वो पककर जब भूरे रंग की हो जाए और दाने कठोर हो जाए तभी फसल की कटाई करें। कटाई के बाद पौधों को अच्छे तरीके से सुखाकर दानों को अलग करें और भंडारण से पहले श्रोताओं, दाने को पर्याप्त रूप से जरूर सुखा दें। साफ, सूखी और कीट रोधी स्थान पर ही भंडारण करें, जिससे कि दानों की जो गुणवत्ता है वह बनी रहे। श्रोताओं, अरहर की खेती में प्रबंधन काफ़ी लाजमी है, क्योंकि अरहर की खेती में काफ़ी समय लगता है। अरहर चूंकि दलहनी फसल है तो इसकी मांग भी बाजार में लगातार बनी रहती है और इसका मूल्य भी स्वतः काफ़ी अच्छा मिलता है। तो निश्चित रूप से अरहर की यदि अच्छी उपज के लिए समय पर बुआई, स्वस्थ बीज, संतुलित खाद उर्वरक, खरपतवार का नियंत्रण, उचित जल निकास का प्रबंधन, कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी का सही समय पर होना आवश्यक है। और इसके लिए श्रोताओं, मिट्टी की जांच और स्थानीय जो भी कृषि विभाग है उसके अनुशंसा के अनुसार ही प्रबंधन करने से इसका ज्यादा लाभ मिल पाता है या मिल सकता है। तो श्रोताओं, निश्चित रूप से अरहर की खेती में प्रबंधन करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें अरहर की खेती में प्रबंधन, और अब आइए हम सुनते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है बरसाती सब्जियों की खेती। भेंट करता है संतोष कुमार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार।

0: कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। ग्रामीण भाइयों, आज आपके साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के उद्यान विभाग के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार जी, जिनसे आज हम विस्तृत बातें करेंगे सब्जियों की, उन्नत खेती की, खासकर बरसाती सब्जियों की। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार कृषक बंधु।
0: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि बरसाती सब्जियां कौन कौन सी ऐसी हैं जिसकी फसल हमारे किसान भाई अभी ले सकते हैं, और किस प्रकार वो वैज्ञानिक विधि से खेती करें जिससे उनको दोहरा मुनाफा प्राप्त हो।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो है सब्जियों की खेती सालों भर की जाती है। इसमें जैसे आपका प्रश्न होता है कि बरसात में किन किन सब्जियों को खेती करें, तो जितने भी फसल में जैसे देखा जाए टमाटर, बैंगन, मिर्चा, फ्रेंच बीन, बोदी, पेचकी, ओल, बहुत गोभी, बहुत सारे अनेक मतलब कि बहुत सारे फसल ऐसे हैं जिसकी खेती की हम लोग सुगमतापूर्वक अपने क्षेत्रों में कर सकते हैं। ध्यान देने की बातें ये हैं कि जैसे अब मैंने जैसे बोल दिया फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन में जैसे आप लेंगे तो इसमें लत्तर बड़गिए लेंगे, और जब जाड़े के मौसम में लेते हैं तो झाड़ी नुमा लेते हैं, तो किस्म का चुनाव अहम हो जाता है। किस्म का चुनाव में आप दुकान पर जाएं तो बोले कि अभी हमको बरसात के लिए लगाना है, अगर ऐसा ना कि वो जाड़े का फसल का बीज अभी दे दें और अभी लगाएंगे तो उसे फलन नहीं होगा। तो विशेष तौर पर कहीं भी लें तो बता दें कि बरसाती दीजिए, बरसाती ही हमें लगाना है, तब वो आपको बरसात लत्तर वर्गीय देंगे। इसके साथ साथ जैसे कि हम लोग मिर्चा, बैंगन, टमाटर, ये सब की खेती भी भली भांति करते हैं और किसान कर भी रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से ध्यान देने की बात ये है कि कृषक बंधुओं, जब आप ये सब सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो खेत की तैयारी अहम भूमिका निभाता है
0: जी।
1: तो खेत की तैयारी के कहने का मतलब है खेत का जो है चास जो है आपको 2 से 3 जरूर करना है, क्या कि जितना हमारा मट्टी हल्का होगा उतना अच्छा पौधे का बढ़वार होगा और अच्छे विकास से अच्छा फलन होगा
0: जी। और उसके लगाने की क्या क्या विधि होगी?
1: लगाने में आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जहाँ से भी आप बीज लें, बीज को तुरंत उपचार करने के बाद ही पौधशाला में गिराएं, और गिराने में बरसात के समय में ऐसे ओपन में नहीं गिराएं। इसी के लिए जो हमारा पोट ट्रे आता है, यदि वो नहीं है तो आप अपने घर में ही एक पेड़ उड़ के नीचे जहाँ पर कि आंशिक रूप से बारिश का इफेक्ट आए, ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्ट जो है हमारा सीधे तौर पर हमारे अगर ये पौधशाला में पानी गिरेगा तो पौधे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप लोग जब हाइब्रिड की खेती करते हैं तो पॉट ट्रे भी ले लें, उसका ज़्यादा दाम नहीं है, 11-12 रुपये पर पीस है, जिसमें कि आप सावधानीपूर्वक 100-150 बीज गिरा कर उसे पौधा तैयार कर सकते हैं।
0: और खासकर जब इसे पंक्ति की दूरी कितने कितने रखनी चाहिए?
1: अब सब्जी का अलग अलग फसल है, जैसे कि हमारे यहाँ जो हमारे पलामू क्षेत्र है इसमें किसान जो है मुख्य तौर पर लतर वर्गीय फसल में कद्दू, नेनुआ, झींगी, लौकी, ये सब मतलब कि करेला, सभी तरह की खेती करते हैं। कुछ किसान जो है हम जिनके यहाँ मिट्टी जो है मीडियम लैंड है और भूमि समतल है जहाँ पर सिंचाई की साधन है, तो वो लोग गोभी की भी खेती करते हैं। तो अगात किस्म की वैरायटी जितनी अरली कुमारी हुआ, पूसा अगेती, ये जितने वैरायटी हैं, मतलब वैरायटी आप मार्केट से जो भी लें तो बोले कि अगात का दीजिए, मध्य का दीजिए, पिछात का दीजिए।
0: अच्छा।
1: तो अभी जो आप लगाएंगे, अगर गोभी लगा रहे तो अगात लगाइए, बैंगन टमाटर मिर्चा में भी आप लगाने का किसान बंधु भी बहुत ज़्यादा इसके प्रति ये हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड लगाते हैं। तो हाइब्रिड में किसान को ये कहूँगा कि पौधशाला में बिजरा को गिराने के समय ही आपको विशेष तौर से ध्यान देना है।
0: अच्छा।
1: ऐसा नहीं कि छिड़काव विधि से लगा दिए, लगाने के बाद उसको खेती के लिए हम लोग लेते जाएं। अगर आप छिड़काव विधि और लाइन से गिराएंगे तो आपका जो लाइन से गिराया गया है पौधे का जो है उसका विकास अच्छा मिलेगा और उसमें फलन भी अच्छा मिलेगा, पौधा स्वस्थ होगा।
0: अच्छा अच्छा।
1: और इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है लगाने की बात जहाँ तक है लतर वर्गीय, लतर वर्गीय में कद्दू हुआ, कोहड़ा हुआ, जो ज़्यादा लतर भागता है उसकी दूरी 1.5 से 2 मीटर रखें लाइन से लाइन, और पौधा से पौधा जो है आप 45-50 सेंटीमीटर रखें। उसके साथ साथ अगर उसे जो थोड़ा कम बढ़ने वाला है तो उसका 1 मीटर रखें, उसके बाद लाइन से लाइन और पौधा से पौधा जो है 40-50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। और जैसे कि टमाटर, बैंगन, मिर्चा लगाते हैं तो ये हाइब्रिड अगर है तो हाइब्रिड का दूरी को हमको बढ़ा देना है, उसमें 60 सेंटीमीटर x 60 सेंटीमीटर कर देना है। अगर हमारा लोकल प्रभेद है जो कि उन्नत किस्म है तो उन्नत किस्म को लगाएंगे तो उससे दूरी कम कर देंगे, 45 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। अगर टमाटर की बात कर लें तो टमाटर जैसे हाइब्रिड लगाएं तो 60x60 लगाएं, बैंगन लगा रहे हैं तो 60x60 लगाएं, और उस हाइब्रिड हो तो अगर आपका उन्नत प्रभेद है तो प्रभेद अगर उन्नत है तो उसको जो है आप लोग 45 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर पर लगा सकते हैं।
0: अच्छा, बात उठती है कि हम उर्वरक का व्यवहार किस प्रकार का?

0: हाँ, एक अहम सवाल है किसान बंधुओं, जैसा कि हम लोग उर्वरक का उपयोग जो है संतुलित मात्रा में करने की हमेशा सलाह देते हैं, और उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों खाद का उचित उपयोग करें, और उसके प्रति मैं यही कहना चाहूँगा कि खाद के रूप में यूरिया, फास्फोरस और पोटास का बैग जो है हमारे यहाँ, यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, DAP, ये सब खाद तो किसान यूज कर ही रहे हैं। इसको उपयोग करने में आपको ध्यान ये देना है कि हर एक चीज़ के लिए अनुशंसित खाद है, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्चा, अगर आप उन्नत प्रभेद लगा रहे हैं तो इसमें मैं यही कहूँगा कि 100-50-50, 100 kg नेत्रजन, 50 kg फॉस्फोरस, 50 kg पोटास। अच्छा। अगर इसी का हाइब्रिड लगा रहे हैं, संकर किस्म लगा रहे हैं, तब इसका मात्रा बढ़ जाता है 200 kg नेत्रजन, आपका 100 kg फॉस्फोरस, 150 kg पोटास। जैसे कि इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हाइब्रिड संकर किस्म है उसमें फलन की बढ़ोतरी होती है, और फलन के लिए हमको खाद की भी मात्रा बढ़ जाता है। अच्छा। इसलिए खाद को अनुशंसित मात्रा को दें, और खास कर इसमें ये ध्यान देना है कि जब भी लगाएं तो नेत्रजन खाद को 2 बार बांट कर लगाएं। मतलब जैसे कि मैंने कहा 100 kg नेत्रजन, 50 kg जमीन के तैयारी के समय, 50 kg जो है आपको 30 दिन निकोनी करने के बाद खेत में डालकर मट्टी चढ़ा देना है। और किसान को बरसात के समय में ये ध्यान देना है कि अगर जब लतर वर्गीय लगा रहे हैं तो उसको पीठ पर लगाएं, पीठ के ऊंचाई थोड़ा जमीन से 15 cm हाइट पर रखें, और कोई भी अगर फसल लगा रहे हैं तो उसको मेर बनाना न भूलें, इससे आपको ज़्यादा उपज आएगा।
1: अच्छा, प्रश्न ये उठता है सर कि एक तरफ हम लोग बल देते हैं कि आप जैविक खेती करें, तो जैविक खेती के लिए जो हमारे किसान भाई प्लान बना चुके हैं कि इस बार हम जैविक खेती ही करेंगे, तो उनको किस तरह से मतलब खाद का व्यवहार करना होगा?
0: जैविक खेती करने का मतलब हुआ कि जिसमें कि हम लोग रासायनिक खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे के लिए किसान को मैं यह ध्यान कहना चाहूँगा कि अगर आप जैविक के प्रति जा रहे हैं तो आपके यहाँ मवेशी का होना अनिवार्य है, और मवेशी में भी जो आपको ये ध्यान देना है कि जो हम लोगों ने खाद की मात्रा बाई उसका संतुलित मात्रा जो है हमको जैविक खाद से पूरा करना है। इसके लिए आपको इस बहुत सारे बातों पर ध्यान देना होगा। उसके लिए आप लोगों को हरी खाद का खेत में उपयोग करना होगा। हरी खाद करने का मतलब जैसे ढैंचा हुआ, सनेम्फ हुआ, हमारा लोबिया हुआ, इस सब को जो है हम लोग खेत में पहले लगा देते हैं, और फूल आने के समय उसका खेत को जुताई कर देते हैं। ऐसा इससे करने से क्या फायदा होता है, हमारे जमीन में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाता है, और इससे किसानों को जो है जैविक खाद के रूप में जो गोबर का खाद और अन्य खाद जो बर्मी कंपोस्ट इत्यादि जो लेते हैं तो उसकी मात्रा का अनुशंसा जो है हम लोग कम करते हैं, और कम खाद में अच्छा उत्पादन वो ले सकते हैं। लेकिन इस किसान को देखना ये होगा कि अगर प्रथम वर्ष वे लगा रहे हैं तो प्रथम वर्ष में जैविक खेत से उत्पादन जो है जरा कम मिलेगा। अगर धीरे धीरे आपका ये जब 4 से 5 साल जब हो जाएगा, खेत में प्रचुर मात्रा में जब हमारा खाद उपलब्ध हो जाएगा, तब जाकर इससे आपका उत्पादन जो है संतुलित रूप में मिलेगा और वो आपका जैविक होगा।
1: तो मतलब दोनों का समावेश करना होगा उनको अभी?
0: दोनों का समावेश करने का कहने का मतलब यह कि अगर जैविक तो 100% हम नहीं जा सकते हैं, जैविक 100% जाने में उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है, और तुरंत जो है एक बड़े पैच में इसको नहीं करना है। जब भी करें तो एक छोटे पैच को पूरी तरह से जैविक बनाने के पश्चात ही आगे के खेत पर ध्यान दे, नहीं तो ज़्यादा बृहद पैमाने पर जाएंगे तो उतना आप जो है इसमें इनपुट नहीं दे पाएंगे।
1: जी, और इसमें अभी खरीफ की सब्जियाँ की खेती में छुट्टी और कोई ऐसी बात है?
0: विशेष तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान जो है हमारा किसान ये हमारा प्लामू जोन जो है वो ड्राई जोन है, तो इसमें जो है किसान जो है पेचकी, ओल की खेती, ये सब को भी करें, ये कम पानी में भी भरपूर मात्रा देगा, और बगीचे के बीच में आप जो है ओल की खेती, अदरक की खेती, हल्दी की खेती करें, और इससे आप जो है सब्जी के रिस्पेक्ट में इससे भी आप ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं।
1: अच्छा, अंतर्वर्ती हो जाएगा?
0: जी।
1: और अगर बीमारियाँ की बात हम करें,
0: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बरसात में बीमारियां जो है अहम भूमिका अदा करता है। पौधशाला में ही आप देखेंगे कि पौधा जो है हमारे कृषक बंधुओं जो है छींटा विधि से करते हैं तो गलन की समस्या बहुत ज़्यादा आती है।
1: जी,
0: तो गलन से बचाने के लिए कृषकों को मैं बराबर सलाह देता हूं कि पौधशाला में अगर ओपन कंडीशन में खुले जगह पर आपने छिड़काव विधि से किया है वैसा प्रक्रिया ना अपनाएं, लाइन से लगाएं, और हमेशा लगाने से पहले बीज को बेबिस्टीन, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचारित कर लें, लगाने के पश्चात लगाएं। अगर इसके बाद भी अगर किसान के यहाँ अगर ये सब प्रक्रिया नहीं किया है और आ गया है तो वो अपने खेत में कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लाइटॉक्स नाम का दवा है जो कि क्यूप्रिक फंजीसाइड है, इसको जो है फफूंद, इस फफूंदनाशी को भी

0: अगर आप लगे खेत में या पौधशाला में अगर जहाँ पर गलन की बीमारी हो रही है तो वहाँ आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ देखते हैं कि कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है
1: जी।
0: और किसान का एक समस्या बहुत अहम देखा गया है कि ये जब बरसात में खेती करते हैं तो खरपतवार का बहुत ज़्यादा निकलना इनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या है
1: जी,
0: जो कि हमारे मेन फसल को डैमेज करता है। तो ऐसे में मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा कि खरपतवार नियंत्रण के लिए गर्मी में अपने खेत की जुताई मतलब गहरी जुताई करें
1: जी,
0: जिससे कि उसका जो जड़ है वो धूप में संसर्ग में आके वो खत्म हो जाए। और जो आप अगर अभी आपके मौसम में वैसा अगर प्रक्रिया अपना लेते हैं और बरसात में जब खेती करते हैं तो आपका जो खरपतवार का जो है वो ज़्यादा नहीं निकलेगा और वो कंट्रोल होगा। और जो किसान सक्षम है तो बहुत तरह के हमारे मार्केट में आपका वीडीसाइड खरपतवार नाशी उपलब्ध है तो फसल के अनुसार मिलता है।
1: अच्छा अच्छा
0: तो फसल के अनुसार उसको देखते हुए आप लगा सकते हैं। ऐसे जनरल तौर पर आप खेत को गर्मी में ही कर लें तो आपका लागत कॉस्ट कम आएगा और ज़्यादा आप अच्छा से इसका उत्पादन ले सकते हैं फसलों का
1: जी। आप थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान विभाग के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार जी। आप कार्यक्रम से जुड़े और खेती बाड़ी से संबंधित खासकर बरसाती सब्जियों की खेती से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद। नमस्कार बंधुओं।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रमेश कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय था बरसाती सब्जियों की खेती और इनके साथ बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और श्रोताओं, अब आइए जानते हैं धान फसल के कीट एवं रोग प्रबंधन। जी हाँ श्रोताओं, धान फसल में मुख्य जो कि कई प्रकार के इसमें कीट प्रबंधन कीट रोग व्याधियाँ आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो धान की फसल है वो हमारे देश में प्रमुख खाद्य फसल के रूप में जाना जाता है और यह जो खेती मुख्यतः वर्षा पर आधारित होती है और साथ ही साथ सिंचित क्षेत्रों में ही इसकी खेती की जाती है। धान की फसल में कई प्रकार के कीट एवं रोग लगने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है श्रोताओं, इसलिए इसकी समय पर पहचान और उचित जल प्रबंधन का होना आवश्यक हो जाता है और ऐसा ना होने पर काफ़ी नुकसान की संभावना बन जाती है। तो श्रोताओं, समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन IPM को अपनाना काफ़ी प्रभावी और सुरक्षित तरीका माना जाता है। इसमें श्रोताओं, स्वस्थ बीज का चयन एवं बीज का उपचार। जी हाँ श्रोताओं, धान की खेती के लिए हमेशा प्रमाणित और रोग मुक्त बीज का ही उपयोग करें। बुआई से पहले बीज का उचित उपचार करने से कई बीज और मृदा जो जनित रोग होते हैं वो प्रारंभिक रूप से ही खत्म हो जाते हैं या उनका प्रकोप जो है वो प्रायः कम हो जाता है। साथ ही साथ श्रोताओं, जो नर्सरी है तो नर्सरी का भी उचित प्रबंधन जरूरी है। स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए नर्सरी में उचित जल की निकास, संतुलित पोषण और पर्याप्त दूरी का जरूर ख्याल रखें। अत्यधिक पानी नर्सरी में रोग और कीट तेजी से बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ जब भी आपको ऐसा दिखाई पड़े तो संक्रमित पौधों को नर्सरी से निकालकर इसे अलग नष्ट कर दें। श्रोताओं, तना धान का जो तना है उसमें छेदक प्रमुख कीट में से एक है। जी हाँ श्रोताओं, धान के फसल में तना छेदक एक प्रमुख कीट है जो कि धान की फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसकी प्रारंभिक अवस्था में ही इसकी पहचान करें, जिसमें कि आप देखेंगे कि पौधों के बीज की पत्तियां जो हैं वो सूख कर आसानी से निकलने लगती है, जिसे प्रायः डेड हार्ट कहा जाता है। बलियां निकलने के बाद प्रभावित बलियां सफ़ेद दिखाई देने लगती है, जिसे वाइट ईयर कहा जाता है। और खेत में नियमित निगरानी, संतुलित नाइट्रोजन का प्रयोग और आवश्यकता के अनुसार फेरोमोन टेप का उपयोग करना काफ़ी उपयोगी साबित होता है इस तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए। श्रोताओं, रासायनिक नियंत्रण के लिए अनुशंसित कीटनाशक का ही उचित मात्रा में उपयोग करें। सदस्य।

साथ पत्ती लपेटक कीट भी सोता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि पत्तियों को मोड़कर अंदर से हरा भाग ये जो पत्ती लपेटक कीट है वो खाते चली जाती है, जिसमें पत्तियां सफेद दिखाई पड़ने लगती है और इसका जो हिस्सा है ऊपरी सतह को ये काफी नुकसान पहुंचाता है। खेत में इसकी नियमित निरीक्षण करें और ज्यादा प्रभावित पत्तियों दिखाई पड़े तो उसे हटा दें और अत्यधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से भी बचें और आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेषज्ञ से इस विषय पर श्रोताओं सलाह लें। तो श्रोताओं इस तरह से यदि देखा जाए तो धान में कीट एवं रोग प्रबंधन के लिए रासायनिक दवाओं पर निर्भर रहने की अपेक्षा स्वस्थ बीज, उचित पौध की दूरी, संतुलित पोषण, जल प्रबंधन, नियमित निगरानी, जैविक उपाय और आवश्यकता अनुसार ही रासायनिक नियंत्रण को अपनाएं करने वाले जो कारगर उपाय हैं उसे अपनाएं। समय पर कीट एवं रोग की पहचान करें। उचित कार्रवाई से फसल की लागत भी कम हो जाती है और साथ ही साथ उत्पादन और गुणवत्ता श्रोताओं काफ़ी बेहतर प्राप्त होता है। तो श्रोताओं ये तो थी बातें धान के फसल में रोग कीट एवं रोग प्रबंधन, और अब इसी के साथ खेती बाड़ी से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: जी आशुतो, अभी आप सुन रहे थे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी, और अब आइए सुनते हैं ग्रामीण कृषक महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम जननी। तो जननी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है, सभी को पुनः कल्याण कुमार का नमस्कार जोहार। जी आशुतो, आज के इस जननी कार्यक्रम के तहत आप चर्चा में आप जानेंगे महिलाओं के लिए नवीन कृषि यंत्र, साथ ही साथ सुनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र से लाभ, और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे एक सफल मछली पालक विश्वास सिंह से ली गई भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। तो श्रोताओं, जननी कार्यक्रम का आगाज करते हुए आइए जानते हैं महिलाओं के लिए नवीन कृषि यंत्र। जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि के कार्यों में महिलाओं की जो भूमिका है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बुआई हो, रोपाई, निराई गुड़ाई, कटाई, फसल की सफाई, भंडारण, पशुपालन जैसे कई कार्यों को महिलाएं जो है वो सक्रिय रूप से कार्य को पूर्ण करती है। इन कार्यों में ज़्यादा शारीरिक श्रम और समय दोनों लगता है। वहीं आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से महिलाओं का श्रम कम होता है और कार्य क्षमता भी श्रोताओं काफ़ी बढ़ जाती है। कृषि कार्य को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक इस कृषि यंत्र के द्वारा बनाया जा सकता है। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धान हमारे खाद्य फसल की एक प्रमुख फसल है, तो धान की रुपाई में महिलाओं को लंबे समय तक पानी और कीचड़ में काम करना पड़ता है। आधुनिक धान रुपाई मशीन से कम समय में अधिक क्षेत्र में रुपाई की जा सकती है, इससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। छोटे किसानों के लिए छोटे या हल्के मॉडल काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। साथ ही साथ पावर वीडर और मिनी वीडर की हम बात करें तो इससे खरपतवार निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है तो इसे निकालने में अत्यधिक श्रम और कार्य लगते हैं, लेकिन छोटे कार के पावर वीडर और मिनी वीडर काफ़ी कारगर साबित होती है। इससे कतार वाले फसलों में निराई गुड़ाई भी काफ़ी जल्दी हो जाती है और हाथ में निराई करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। पारंपरिक पंप से श्रोताओं कीटनाशक या जैविक घोल का छिड़काव करना काफ़ी मेहनत कस काम माना जाता है। वहीं बैटरी चालित नेपसेक स्प्रे से कम शारीरिक श्रम में इसका छिड़काव जो है वो पूरा हो जाता है। श्रोताओं, जब भी आप कीटनाशक या रासायनिक दवा का छिड़काव करते हैं तो छिड़काव के दौरान मास्क, दस्ताने और सुरक्षात्मक जो भी कपड़े हैं उनका उपयोग जरूर करें। साथ ही साथ श्रोताओं, महिलाओं के लिए बीज एवं उर्वरक बोने के भी कई यंत्र बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल या छोटे हाथ से चलने वाले बीज बोने वाले यंत्र, जो कि बीज को उचित गहराई और दूरी पर इनसे बोया जा सकता है। इससे बीज की बचत भी हो जाती है, पौधों की समान दूरी में भी काफ़ी मदद मिल जाती है। और साथ ही साथ श्रोताओं, हाथ से चलने वाली मल्टीपर्पस कृषि यंत्र, जिसमें कि छोटे खेतों के लिए ऐसे हल्के यंत्र काफ़ी कारगर साबित होते हैं, जिससे कि निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाने के साथ साथ अन्य कोई छोटे कृषि कार्य जो है इससे पूरे हो जाते हैं। इनके प्रयोग से बार बार झुककर काम करने की आवश्यकता भी कम पड़ती है और महिलाओं पर शारीरिक दबाव भी कम होता है। श्रोताओं, मक्का एवं दलहन की फसल की हम जब बात करते हैं तो इन फसलों में बुआई, निराई और कटाई के लिए छोटे कृषि यंत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मक्का के दाने निकालना काफ़ी शारीरिक श्रम की बात आती है, तो इसके मक्के के दाने निकालने के लिए छोटे डिस्कर या थ्रेसर, इससे महिलाएं जो हैं कम समय में और कम मेहनत कर मक्के के दाने को आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। हसिया से कटाई और हाथ से मड़ाई करने में ज़्यादा श्रम लगता है श्रोताओं। इसमें छोटे रीपर, थ्रेसर या मल्टीकॉर्प थ्रेसर फसल की कटाई और दाना दोनों अलग करने में काफ़ी कारगर साबित होती है। हालांकि इस मशीन के उपयोग के लिए सामूहिक सहायता स्वयं सहायता के द्वारा सामूहिक रूप से खरीद कर या फिर किराए के रूप से भी यह उपलब्ध हो जाती है। श्रोताओं, बात हम करते हैं पशुओं के चारे के लिए, तो पशुओं के लिए चारा काफ़ी ज़रूरी है और चारा के लिए चारा कटर अत्यंत उपयोगी होता है। हाथ से चारा काटना काफ़ी श्रम करने की बात आ जाती है, वहीं जब हम मशीन से करते हैं तो इसे कम समय में अधिक मात्रा में हम चारा को तैयार कर लेते हैं। इससे हमारे जो हाथ है वो भी कटिंग ब्लेड से सुरक्षित हो जाते हैं। कटाई के पश्चात श्रोताओं, अनाज और दालों की सफाई, ग्रेडिंग, ये सब करने में काफ़ी समय लगते हैं श्रोताओं। इसलिए छोटे क्लीनर या कम ग्रेडर से धूल, भूसा या अन्न, जो भी छोटे मोटे अशुद्धियाँ हों, इन्हें अलग किया जा सकता है। इससे उत्पादक की गुणवत्ता और बाजार मूल्य में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो निश्चित रूप से श्रोताओं, इस प्रकार की जो ग्रेडिंग मशीन है जिसमें कि हम अपने अनाज और दाल की सफाई कर सकते हैं, इसका उपयोग किया जा सकता है। श्रोताओं, महिला कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने के लिए के साथ साथ अतिरिक्त आय की प्राप्ति के लिए सब्जी काटने की मशीन, ग्राइंडर, पल्पर, सीलिंग मशीन, मसाला ग्राइंडर और छोटे कई खाद प्रसंस्करण उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे महिलाएं जो हैं बड़ी ही आसानी से अचार, मसाला, सॉस, सूखी सब्जियां या अन्य कोई भी छोटे उत्पाद जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो फल प्रसंस्करण या सब्जी के लिए कई प्रकार की इस प्रकार की जो मशीनें हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हैं और कई राज्यों की जो महिलाएं हैं इसका भरपूर उपयोग कर अपने श्रम और समय दोनों को बचत कर रही है। कई जगहों पर देखा जाता है कि बिजली की उपलब्धता ना हो, तो वैसे स्थिति में सौर ऊर्जा से संचालित कई कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, क्योंकि प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या होती है, तो इसमें सोलर डायलर, सोलर पंप या छोटे सौर उपकरण जो कि कृषि उत्पादों को सुखाने, सिंचाई और प्रसंस्करण में मदद कर सकते हैं, बाजार में उपलब्ध है, इसका भी उपयोग कर काफ़ी से लाभ लिया जा सकता है। और श्रोताओं, कई ऐसे भी मशीन हैं कृषि कार्य में जो काफ़ी महंगे हैं या काफ़ी बड़े हैं, जिससे एक महिला के द्वारा संचालित नहीं हो सकते हैं, तो वैसी स्थिति में महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन मशीनों की खरीदी की जा सकती है और सामूहिक रूप से इसका उपयोग करते हुए इसका भरपूर लाभ लिया जा सकता है। और श्रोताओं, जब भी आप कृषि यंत्र लेते हैं तो कुछ बातों पर सावधानी जरूर रखेंगे कि जब भी आप कृषि यंत्र चुने तो मशीन का वजन, हैंडल की ऊंचाई, संचालन में लगने वाला बल, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, उसमें क्या ईंधन की उपयोगिता है या बैटरी के द्वारा संचालित है, मरम्मत के लिए क्या सुविधा है, तो इन सब चीज़ों को देख ले, उसका प्रदर्शन देख ले, तभी उस मशीन को खरीदे। तो निश्चित रूप से श्रोताओं, नवीन कृषि यंत्र के द्वारा महिलाओं के कृषि कार्य को काफ़ी आसान, सुरक्षित और समय की दृष्टि से काफ़ी प्रभावी बना है। हल्के और बहुउद्देश्य यंत्र, बैटरी संचालित उपकरण, छोटे थ्रेशर, वीडर, चारा कटर के साथ साथ प्रसंस्करण मशीन भी काफ़ी उपयोगी साबित हो रहे हैं। और इन यंत्रों की सहायता से साथ ही साथ महिला स्वयं सहायता समूह के सामूहिक रूप से इस मशीनों की उपलब्धता भी बढ़ रही है और महिलाओं के द्वारा इसमें श्रम को कम करते हुए उत्पाद को ज़्यादा प्राप्त करते हुए और स्वयं से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कृषि से होने वाले आय को भी बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो भी मशीन आए हुए हैं वो महिलाओं को काफ़ी हद तक लाभ पहुंचा रही है। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें महिलाओं के लिए नवीन कृषि यंत्र। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं मुरमा सतबरवा के विश्वास जी से ली गई एक भेंट वार्ता, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं सतबरवा प्रखंड के मुरमा गांव के एक सफल किसान विश्वास सिंह। आप एक सफल मछली पालक हैं, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: कितने दिनों से मछली पालन कर रहे हैं?
2: मैं मछली पालन करीब करीब 15 साल से कर रहे हैं। और हम लोग सबसे पहले तो मछली के बारे में जैसे बाहर से लाते हैं, जैसे पैकेट में, तो पैकेट में आता है तो उसको जीरा टाइप के आता है, और उसको जब बाहर से आता है तो पहले हम लोग उसमें गाड़ी से जब परिवहन होकर के आता है तो उसको हम लोग जिस तालाब में हम लोग डालना है उस तालाब में हम लोग प्लास्टिक के बारी छोड़ देते हैं, ताकि क्योंकि उसका तापमान गर्म में आता है।
1: अच्छा।
2: और गर्म होता है तो उसका उस पानी का तालाब ठंडा रहता है, तो उस तालाब का पानी उस पॉकेट के अंदर से अंदर अंदर से ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद में जब तापमान बराबर दोनों का समान हो जाता है तो मछली उसमें मरने का आशंका नहीं रहता है। तब उसके बाद 10 मिनट के बाद हम लोग मछली का पॉकेट का खोलते हैं, पॉकेट खोल करके और उस पानी में छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद में 15-20 दिन करीब करीब या महीना दिन के बाद उंगलीकार हो जाता है। जब उंगलीकार हो जाता है तो उसको हम लोग देखते हैं कि बेचने साइज हो गया 250-300 रुपए किलो, तो हम लोग उसको 300-400 रुपए जैसा मैंने मछली का बीज हो उसी रेट से हम लोग बेच भी देते हैं, प्लस उस तालाब से फिर दूसरा जलाशय में छोड़ते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: उंगलीकार जब बड़ा साइज का हो जाता है तो क्यों उसमें जलाशय में छोड़ते हैं कि देखिए उसमें बड़ा बड़ा मछली रहता है और उसको खाने के डर रहता है, तो इसीलिए हम लोग उंगलीकार ज्यादा तैरने लगता है, और तैरता है तो उस मछली जितना अगर जो रहता है ये खाऊ मछली उसको खदेड़ता है।
1: अच्छा।
2: तो दौड़ने में जो है ऐसे तो तेज है हो गया, तेज हो गया तो पकड़ने नहीं देता है, और ये लोग अपना विकास करता है, और बड़ा साइज का जब 6 महीना का हो जाता है तो 1-1.5 किलो का साइज भी हो जाता है, और उसमें बड़ा साइज हो जाता है तो उसमें हम लोग जब 1 किलो हो जाता है तो उसको मारते हैं, और जब 1 किलो से कम हो गया 600-700 ग्राम तो जलाशय में हम लोग नहीं मारते हैं।
1: अच्छा।
2: उसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग उसी मछली को पालन करते करते कभी कभी वैसा होता है कि सब मछली तो नहीं मराता है, इसके बाद में 10-15 किलो का बड़ा साइज का भी मछली हो जाता है, तो वो ज्यादा बच्चा भी लोग देता है अंडा,

0: अंडा जब देता है तो उससे भी कुछ मछली उत्पन्न बच्चा होते हैं, और जब बच्चा उसमें भी होता है तो ज्यादा और मछली मतलब विकास पैदावार बढ़ता है।
1: कौन कौन मछली अभी आप पाले हुए हैं?
0: रेहू है, कतला है, मिर्गल है, और एक ये है, एक ठो आता है देहाती मछली है मंगूरी।
1: अच्छा अच्छा
0: वो भी है।
1: अच्छा, इसको किस तालाब में पाले अभी आप?
0: अभी एक ठो है घर ही अपना है जमीन, उसमें है अभी मछली रखा हुआ है, अथी है रेहू है और कतला भी है।
1: अच्छा, यहाँ जैसे आपका डैम भी है?
0: डैम मलाई डैम है।
1: अच्छा,
0: तो हम लोग मलाई डैम में ही पालन करते हैं ज्यादा, छोटा बच्चा को बढ़ा करके और उसमें छोड़ते हैं। तो हम लोग वैसा ही करते हैं ताकि मछली बर्फ में रख देते हैं तो मछली एक दिन में नहीं बिका, उसको बर्फ में रख दिए और बर्फ में जब रखे तो रात भर रह गया तो खराब भी नहीं होता है। तो इससे हम लोग के मैंने मछली का भी नुकसान नहीं होता है, हम लोग का जो फायदा जो मिलना चाहिए वो मिलते ही रहता है। तो हम लोग किसान लोग इसको बहुत मैंने तेजी से मैंने बेनिफिट कमा रहे हैं, और इससे मैंने जीवन पार्जन बढ़िया से बाल बच्चा को चल रहा है।
1: बिल्कुल। और कितने किसान मिलके आप लोग मछली पालन इस डैम में?
0: हम लोग अभी करीब करीब रजिस्टर्ड है 71 किसान।
1: तो इसके लिए चारा बीज वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं आप?
0: वो हम लोग देखिए,
1: क्योंकि देखिए मलय डैम बहुत बड़ा डैम है,
0: बहुत जलाशय
1: है, चारा की भी आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में पड़ती होगी।
0: हाँ पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत घास भी रहता है, कुछ घास से भी मछली बढ़ते हैं, और चारा तो उतना कम ही मिलता है जितना कि उसका स्रोत जो है ना, अगल बगल में गांव भी है बसा हुआ।
1: अच्छा,
0: उससे चारा भी मिल जाता है। और
1: हम तो समझते हैं कि इस मलय डैम पर बहुत से ग्राहक आ जाते होंगे, खुद नहीं खरीदने आ जाते
0: आते हैं, खाने के लिए भी वही स्वयं एकदम मैंने पहुंच जाते हैं। मछली यहाँ के देखिए खाने में भी टेस्टिंग है, साफ सफाई भी अच्छा है, इसी के चलते टेस्ट भी लगता है। और हम देखते हैं कि मैंने पूरा पलामू से लेकर के लाते हर जिला तक ला, यहाँ तक मछली की मैंने यहाँ की टेस्टिंग कहते हैं कि बहुत अच्छा है। तो हम कहते हैं कि देखिए वातावरण के अनुसार यहाँ टेस्टिंग भी आता है।
1: अच्छा, इसे बेचने कहाँ जाते हैं उदेश्य?
0: देखिए बेचने व्यापार भी पहुँच जाते हैं वहाँ पर ही।
1: अच्छा,
0: तो वहीं पर हम लोग बेच भी देते हैं, और कहीं अगर नहीं पहुँचे किसी कारणवश बर है बीमारी है तो हम लोग वहाँ पर सतबरवा हो गया, मनिका हो गया, डाल्टनगंज भी हो गया, गाड़ी से भेज देते हैं और बिक्री हो जाता है।
1: आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं?
0: हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं।
1: हाँ, और सब इसी मछली पालन के जरिए से अपना
0: आय
1: का जो भी स्रोत है यही है, इसी से बच्चों का पढ़ाई
0: बच्चों का पढ़ाई लिखाई शादी
1: विवाह
0: ये सब होते रहता है। और
1: वास्तव में हमारे किसानवाणी कार्यक्रम से जो जुड़कर आज आपने जानकारियां दी, एक बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे मछली पालक भाइयों के लिए दी। आप हमारे कार्यक्रम से भी जुड़े इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: जी हाँ श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मुरमा सतबरवा के सफल मछली पालक विश्वास सिंह से ली गई भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। अरे भाई श्रोताओ, जानते हैं आंगनबाड़ी केंद्र से लाभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं श्रोताओ, आंगनबाड़ी केंद्र भारत सरकार के समेकित बाल विकास सेवा ICDS के तहत बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण स्वास्थ्य प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवा पहुंचाने में यह आंगनवाड़ी केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र परिवार और सरकारी सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। इसके माध्यम से बच्चों के शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र का प्रमुख उद्देश्य होता है छोटे बच्चे को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने में सहायता करना। जो भी वैसे बच्चे होते हैं उनकी स्थानीय व्यवस्था और निर्धारित मानकों के अनुसार पूरक पोषण दिया जाता है। इससे कुपोषण की समस्या को कम करना और बच्चों के स्वास्थ्य विकास में सहायता प्रदान करना शामिल है। माता पिता को भी संतुलित और पौष्टिक के भोजन के महत्व की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए सहायता के लिए आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तक पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचाने में सहायता करती है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान संतुलित भोजन, स्वच्छता, आराम, नियमित स्वास्थ्य जांच, प्रसव पूर्व देखभाल के बारे में जागरूक भी किया जाता है और आवश्यकता होने पर स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता से जोड़ने में भी यह आंगनवाड़ी केंद्र मदद करती है। आंगनवाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों को विद्यालय जाने से पहले की प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें खेल, कहानी, गीत, चित्र, खिलौने और कई अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में भाषा, सोचने की क्षमता, सामाजिक व्यवहार और सीखने की रुचि विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इससे बच्चे को आगे चलकर प्रारंभिक विद्यालय के वातावरण में आसानी से ढलने में सहायता मिलती है। बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की नियमित निगरानी में आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है वो स्वतः काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों के वजन और वृद्धि की निगरानी करती है, साथ ही साथ आवश्यकता होने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाले बच्चे को उचित सलाह देकर स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है उसकी पहचान कर

और साथ ही साथ श्रोताओं, आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बच्चों के साथ साथ महिलाओं के टीकाकरण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो भी वैसे लाभार्थी होते हैं उन्हें टीकाकरण की जानकारी दी जाती है और निर्धारित तिथि पर बुलाकर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संपर्क स्थापित कर इन्हें प्रमुख कार्यों में शामिल भी किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण और वृद्धि के निगरानी के माध्यम से कुपोषण के जोखिम वाले बच्चों की पहचान करने में सहायता करती है और ऐसे बच्चों को आवश्यक परामर्श और उपलब्ध स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं से जोड़ने का प्रयास भी करती है और गंभीर मामलों में स्वास्थ्य संस्थानों को रेफर भी किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से हाथ धोने, स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई, शौचालय का उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे बातों में उन्हें जागरूक भी किया जाता है और इससे वह कई बीमारियों से बचने में सहायक भी साबित होती है। माताओं को जन्म के पश्चात उचित रक्त स्तनपान, 6 माह तक केवल माँ का दूध देने और उसके पश्चात उम्र के अनुसार पूरक आहार शुरू करने की जानकारी भी उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। बच्चे को विविध और पौष्टिक भोजन के साथ साथ भोजन की स्वच्छता बनाए रखने पर भी आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा जोर दिया जाता है। श्रोताओं, आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण परिवारों के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य, पोषण, महिला बाल विकास सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने में इन्हें मदद पहुंचाती है और जो भी योग्य लाभुक होते हैं, योग्य लाभार्थी होते हैं, उन्हें संबंधित विभागों या फिर स्वास्थ्य संस्थानों से जोड़ने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य, बाल देखभाल, परिवार की स्वच्छता और बच्चों के शिक्षा के माध्यम से भी जानकारी दी जाती है, जिससे कि परिवारों में स्वस्थ और पोषण संबंधी व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायता मिल सके। तो श्रोताओं, यदि देखा जाए तो आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ बच्चों और महिलाओं के लिए यह सेवा केंद्र नहीं है, वहीं यह समुदाय में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने का माध्यम भी है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, प्रारंभिक शिक्षा और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जानी जाती है। इसके माध्यम से कुपोषण की पहचान, टीकाकरण में सहयोग, स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषण और प्रारंभिक बाल शिक्षा जैसी सेवाओं तक पहुंच बनाने में आसान होती है। आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं का सही उपयोग करके परिवार बच्चों के स्वास्थ्य विकास और बेहतर भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान आंगनबाड़ी केंद्र उपलब्ध कराती है। तो आंगनबाड़ी केंद्र कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के साथ साथ धात्री महिलाओं के लिए और पूरे समुदाय के लिए कई तरीके से, कई मायने से सहायता प्रदान करती है। तो आप भी आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े और इसमें चल रहे योजनाओं के बारे में जानें और इसका लाभ लें। तो श्रोताओं, इसी के साथ जननी कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: हर ब्रांड के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: परेशान लग रही है
4: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
3: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
4: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
3: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
5: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
8: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
9: कंडोम,
8: गर्भ निरोधक गोलियां,
10: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
11: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से हम थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाथला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में नशा मुक्त युवा अभियान के लिए मिलकर काम करने और जनगणना में जानकारी देने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, विशेष परिस्थितियों को छोड़ मतदाताओं को सुनवाई के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं, लगेंगे विशेष शिविर। रांची में अखिल भारतीय नेत्र सम्मेलन संपन्न, विशेषज्ञों ने नवजातों में आंखों की बीमारी और ग्लूकोमा के शुरुआती पहचान पर दिया जोर। मौसम विभाग ने कल से रांची, खूंटी और गुमला समेत राज्य के कुछ हिस्सों में जताई हल्की बारिश की संभावना। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाज सेमीफाइनल में, मुक्केबाजी में पहला पदक पक्का, स्क्वैश में भी भारत ने जीते 2 रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशामुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने आज कहा कि इस अभियान में युवाओं ने खुद नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठाई है। श्री मोदी ने आगे कहा कि इस देश में जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है। उन्होंने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की भी अपील की। भारत निर्वाचन आयोग में कथित मतभेद को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और उससे जुड़ी प्रतिक्रियाओं पर कई बार आपत्ति जताई थी।
1: तो ये बड़ा विरोधाभास सा लगता है और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने चुनाव आयोग को पूरा अपहरण करके रखा है और कल इन्होंने दबाव में इस प्रकार के वक्तव्य प्रेस आउट उन्होंने दिए हैं। अगर इनमें नैतिक बल होता तो जिससे मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं ना, तो ये भी इन प्रेस नोट के माध्यम से बातों को रख रहे हैं और कल को ऐसा ना हो कि चुनाव की भी घोषणा ये प्रेस नोट से ही करें।
0: वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं।
2: सभी निर्णय पूरे आयोग की पूर्ण सहमति से लिए गए हैं। इतना ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध ठहराया है। इसके बावजूद भी विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता और प्रक्रियाओं पर झूठा खिंचाव उठाने का घृणा काम समय से पूर्ण करने का कार्य किया।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्देश दिया है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मतदाताओं को नोटिस की सुनवाई के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ के कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। नोटिस प्राप्त मतदाताओं के दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर जाकर लेंगे। जरूरत पड़ने पर सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए सहायता केंद्र और विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली के विरोध में कल राज्य के सभी जिलों में आंदोलन करने की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि रांची के धुरवा स्थित केंद्रीय निर्वाचन आयोग कार्यालय के समक्ष भी प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि

0: एवं खनिज विकास और विनियम अधिनियम संशोधन का उद्देश्य खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और निवेश को बढ़ावा देना है। आज गुमला में उन्होंने इस संशोधन के फायदे बताए।
1: झारखंड राज्य में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग पूरे राज्य को

0: गड़बड़ी से उनकी रोशनी ना जाए। विशेषज्ञों ने बच्चों की पुतली में दिखाई देने वाली सफेद चमक को आंख के कैंसर का शुरुआती संकेत बताते हुए तुरंत डॉक्टर से जांच कराने की सलाह दी। ग्लूकोमा को दृष्टि का मूक चोर बताते हुए विशेषज्ञों ने नियमित आंखों की जांच कराने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा की उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है और वे इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज की विशेष श्रृंखला में बात मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है।
1: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
0: पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग पर जोर देते हुए कोडरमा जिले में जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए कई पहल की जा रही है। मिशन लाइफ के तहत लोगों के जीवन में आए बदलाव को लेकर स्थानीय लाभुक रिंकी देवी और अजय अग्रवाल ने अपने अनुभव साझा किए।
2: जैसे कि कोई ऐसा ऐसा खेत है ना सर, जैसे कि पानी वहाँ जमा नहीं होता तो खेती भी नहीं होता है। हम लोग TCP काटे, मेड़बंदी किया ना, पानी जम जाता है तो फिर वही पानी हम लोग यूज करते हैं खेती करने के लिए।
3: पानी का एक सोर्स स्कूल परिसर में जो कुआं है वो कुआं सूखने की कगार पे था और तब हमने बड़े मन से ये पनसोखा बनाया। जो हमने बचपन में कक्षा 6 में पढ़ा था कि पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है, तो वो टेक्निक हमने इस्तेमाल की और उस तीनों से गुजर के पानी साफ होके वापस कुएं में चला जाता है।
0: गिरिडीह जिले के बनियाडीह क्षेत्र में बीती रात जमीन धंस जाने से एक दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो गए। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनियाडीह के महाप्रबंधक ने बताया इसलिए जनहानि नहीं हुई।
4: जो आसपास के लोग हैं जो बहुत दिनों से उस जगह पर रह रहे हैं उनसे हम लोगों ने आग्रह किया जल्द से जल्द इस जगह को, ये इलीगल माइनिंग का मसला है। तो फिर भी हम लोग जंगल एरिया में जहाँ जहाँ खंता होने की सूचना मिलती है या खंता की जानकारी होती है JCB ले जा करके उसको ध्वस्त करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं और इसको रोकने का पूरा प्रयास करते हैं।
0: दुर्गा पूजा के दौरान रांची में सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर युवा दस्ता के करीब 300 सदस्य सक्रिय रहेंगे। बड़ा तालाब परिसर में आज हुई एक बैठक में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और सेवा कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने कल से रांची, खूंटी और गुमला समेत राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। यह प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न प्रखंडों से करीब देश के 100 से अधिक बालिका प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों ने कंपाउंड और रिकर्व टीम स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सभी भारतीय कंपाउंड टीमें 30 सितंबर को दक्षिण कोरिया से भिड़ेंगी। इधर मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान को हराकर भारत ने पहला पदक पक्का किया। वहीं भारत ने आज स्क्वैश में 2 रजत पदक जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में नशा मुक्ति युवा अभियान के लिए मिलकर काम करने और जनगणना में जानकारी देने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी K.R. ने कहा विशेष परिस्थितियों को छोड़ मतदाताओं को सुनवाई के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं, लगेंगे विशेष शिविर। रांची में अखिल भारतीय नेत्र सम्मेलन संपन्न। विशेषज्ञों ने नवजातों में आंखों की बीमारी और ग्लूकोमा की शुरुआती पहचान पर दिया जोर। मौसम विभाग ने कल से रांची, खूंटी और गुमला समेत राज्य के कुछ हिस्सों में जताई हल्की बारिश की संभावना। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाज सेमीफाइनल में

0: मुक्केबाजी में पहला पदक पक्का, स्क्वैश में भी भारत ने जीते 2 रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र।
2: बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं।
3: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
2: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
3: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
4: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित।
6: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
7: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
8: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
9: बढ़ती बच्ची, किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
8: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
9: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
8: माहवारी प्रारंभ होती है,
9: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
8: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: हर ब्रांड के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
11: एक चाबी है CKYC ID।
10: CKYC मतलब?
11: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
10: वाह, RBI कहता है
11: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
12: उपराजधानी दुमका की कल्याण छात्रावासों की बदहाली, बुनियादी सुविधाओं के अभाव और पिछले 2 सत्रों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने से विद्यार्थी परेशान है। इसे लेकर जिले के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने संताल परगना समन्वय समिति के बैनर तले SP कॉलेज परिसर से समाहरणालय तक आक्रोश रैली निकाली और मुख्यमंत्री, कल्याण मंत्री एवं संताल परगना की प्रमंडलीय आयुक्त के नाम 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। छात्र समन्वय समिति के संयोजक श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि
13: राज्य के मुख्यमंत्री को, कल्याण मंत्री को हम लोगों ने लगातार कहीं आवेदन दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये कहीं ना कहीं रसोई नहीं होने का यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
12: छात्र नेता राजीव बास्की ने इस समस्या के समाधान की मांग करते हुए कहा कि
13: कई बार मांग रख चुके हैं कि अब छात्रावास का जो मूलभूत सुविधा है, जैसे रसोईया हुआ, रात्रि प्रहरी हुआ, फिर शौचालय का अच्छा होना चाहिए, जर्जर बिल्डिंग का प्रवती होना चाहिए।
12: दुमका में अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्र की शुरुआत हो गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र के शुरू होने से जिले को आधार नामांकन से लेकर बायोमेट्रिक अपडेट्स और शिकायतों के निवारण तक की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध हो गई है। उद्घाटन के अवसर पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि
13: ऑनलाइन हैं, उनको कहीं जाने में आने में, या मान लीजिए कि नेट की सुविधा नहीं है, उनको जो सुविधा होती है, सारे सुविधाओं का ये आधार सेवा केंद्र है।
12: दुमका जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल MMDR संशोधन विधेयक 2026 का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर इन दलों द्वारा चरणबद्ध तरीके से बैठक कर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। गुड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने इसे लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि
13: भारत के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जिस तरह उड़ीसा का कोयला बिकता है, छत्तीसगढ़ का कोयला बिकता है, बंगाल का कोयला बिकता है, उसी तरह झारखंड का कोयला बिके। ये केवल कमीशन खोरी मार्केट, आपको पता है BCCL के चेयरमैन के ऊपर चार जो है SC ST के केस डाल, क्योंकि चोरी चकारी करना है, तो चोरी चकारी रुक जाएगी, इस कारण से इतनी बड़ी समस्या है।
12: दुमका जिले में वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्पों एवं पारंपरिक कलाओं को नई पहचान और बड़ा बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में वरदान साबित हो रहा है। दुमका जिले की जादूपटिया पेंटिंग की कलाकार और लाभुक नीलम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल पर कहा कि
14: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल अभियान का बड़ा योगदान है। आज इसकी वजह से हमारी पेंटिंग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और बड़ा बाजार मिला है। मैं जादूपटिया पेंटिंग की संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ

0: इसके व्यापक बाजार का निर्माण करने और उसका लाभ लेने में सक्षम हुई हूँ।
1: दुमका उद्योग विभाग के पूर्व उपनिदेशक और मयूराक्षी सिल्क के प्रमोटर सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के आह्वान से इस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव
1: कार्य के कारण संबलपुर गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दुमका के रास्ते चल रही है। इस ट्रेन की वापसी भी दुमका के रूट से हो रही है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
3: अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शतदल। कविताएं डॉक्टर प्रस्तुति प्रणव कुमार की, प्रस्तुति के स्वर्ण है प्रणव कुमार की और प्रस्तुति प्रभुसरण की।

0: शतदल के आज के इस आयोजन में झारखंड की साहित्य डॉक्टर सुषमा
1: ये पहले से दिया हुआ था। अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती नीता चौहान से ली गई। भेंट करता है अनुपमा तिवारी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को अनुपमा का नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पलामू श्रीमती नीता चौहान जी उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है नीता जी। अपनी अब तक की प्रशासनिक एवं सामाजिक सेवा यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को संक्षेप में बताइए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सेवा यात्रा वर्ष 2000 में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी CDPO के रूप में शुरू हुई। इस दौरान महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के बीच काम करने का अवसर मिला। वर्ष 2021 में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के रूप में नई जिम्मेवारी मिली। इस पूरे सफर में प्रयास हमेशा यही रहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और प्रशासन तथा आम जनता के बीच बेहतर समन्वय बना रहे। लगभग 2.5 दशक की इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा और लोगों के साथ काम करते हुए समाज की वास्तविक जरूरतों को समझने का अवसर मिला।
1: जी, वर्ष 2000 में आपकी नियुक्ति CDPO के पद पर हुई, जैसा कि अभी अभी आपने बताया। उस समय आपके मन में प्रशासनिक सेवा से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
2: मेरे लिए प्रशासनिक सेवा केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि लोगों के साथ सीधे जुड़कर काम करने का एक माध्यम था। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं जमीन पर लागू करने और जरूरतमंद परिवारों तक उसका लाभ पहुंचाने की भावना ने मुझे प्रेरित किया। मेरा मानना रहा है कि यदि हम अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाएं, तो छोटे छोटे प्रयास भी लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। CDPO के रूप में अपने शुरुआती कार्यकाल की कोई ऐसी चुनौती या अनुभव जिसने आपके कार्य करने के तरीके को गहराई से प्रभावित किया हो, आप बताएं।
2: शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सरकारी योजनाओं और उनकी प्रक्रिया की जानकारी हर व्यक्ति तक आसानी से नहीं पहुंच पाती थी। अब के दौर में हम लोगों का सोशल मीडिया है, तो लोग योजनाओं के बारे में जानते हैं, पर 2000 में लोगों के पास ऐसा कुछ साधन नहीं था, वो जानते नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से सीधे मिलकर उनकी समस्याएं जानने का, समझने का अवसर मिला। इससे मुझे यह सीख मिली कि केवल कार्यालय में बैठकर काम करने से योजनाओं का पूरा उद्देश्य हासिल नहीं होता। क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति को समझना और संबंधित कमियों के साथ मिलकर समाधान निकालना बहुत जरूरी है। इसी अनुभव ने मेरे कार्य करने के तरीके को काफ़ी प्रभावित किया, साथ ही धैर्य और संवाद के महत्व की सीख भी दी।
1: बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में काम करते हुए आपने महिलाओं और बच्चों से जुड़े किन प्रमुख मुद्दों को करीब से देखा मैम?
2: महिलाओं और बच्चों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को करीब से देखने का अवसर मिला, जैसे बच्चों में कुपोषण, स्वास्थ्य और पोषण की कमी, बालिकाओं की शिक्षा, महिलाओं में सरकारी योजनाओं अधिकारों को लेकर जानकारी का अभाव, ये प्रमुख विषय रहे। मैंने महसूस किया कि केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें योजनाओं से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है, और साथ ही साथ सामुदायिक सहभागिता इसमें अहम रोल अदा करती है। जैसे मैं आंगनवाड़ी का उदाहरण देना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी में अगर एक अक्षय पात्र रखा जाता है और समुदाय के सभी लोगों से ये कहा जाता है कि आप अपने अपने बच्चों के साथ एक एक सब्जी, भेजिए, तो बच्चों पे भी भार नहीं होता है क्योंकि वो एक सब्जी कुछ भी जो उनकी सीजनल सब्जी वो भेजते हैं, और वही सब्जी आंगनवाड़ी में यूज होता है और वही गांव के बच्चे खाते हैं।
1: अच्छा,
2: तो ये भी एक अच्छा प्रयास हमने कुछ जगहों पे से शुरू किया है। कहीं पे सामुदायिक सहभागिता मिलती है, कहीं पे नहीं भी मिल पाती है।
1: जी, जैसा कि आपने बताया कि वर्ष 2021 में आप जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर हुआ, तो इस नई जिम्मेदारी को आपने किस तरह देखा?
2: मैंने इसे एक नई जिम्मेदारी के साथ साथ एक बड़ा अवसर माना। CDPO के रूप में मैं एक परियोजना स्तर पर काम कर रही थी एक ब्लॉक में, जबकि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के रूप में मुझे पूरे जिले की योजनाओं और कार्यों के समन्वय की जिम्मेवारी मिली। मेरे लिए यह जरूरी था कि पहले के CDPO के अनुभव का उपयोग करते हुए जिले में समाज कल्याण से जुड़े कार्यों को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए, योजनाओं के पारदर्शी, समयबद्ध और लाभुक उन्मुख बनाया जा सके, इसके लिए भी मैंने इसमें अपनी जिम्मेवारी को देखा।
1: CDPO और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, इन दोनों भूमिकाओं में आपको क्या प्रमुख अंतर महसूस हुआ?
2: दोनों भूमिकाओं में काम का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाना ही है, लेकिन जिम्मेदारियों का स्तर अलग है। CDPO के रूप में प्रखंड स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों, सेविका सहायिका और लाभुकों से सीधे जुड़कर काम करने का अवसर मिलता है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के रूप में विभिन्न योजनाओं की निगरानी, विभागीय समन्वय, समीक्षा और पूरे जिले के स्तर पर कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी होती। दोनों अनुभव मेरे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। मैम,
1: जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के रूप में पलामू जिले में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं?
2: मेरी प्राथमिकताओं में सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों के बेहतर संचालन, बच्चों के पोषण और विकास, महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़े विषयों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले सभी लाभों पर भी लगातार ध्यान देना जरूरी है। मेरा प्रयास रहता है कि योजनाओं की निगरानी के साथ साथ जमीनी स्तर की समस्याओं को भी समझा जाए।
1: जी, समाज कल्याण विभाग की ऐसी कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिनका लाभ आम नागरिक, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा है, इस बारे में आप बताएं।
2: समाज कल्याण विभाग के माध्यम से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना या बच्चियों की शिक्षा के

0: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एवं पूरक पोषाहार, विधवा पुनर्विवाह योजना, हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम भी हम लोग संचालित कर रहे थे। अभी कुछ समय से वो बंद है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना है, सर्वजन पेंशन योजना है और सहायक उपकरण वितरण किया जाता है दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के बीच। मैम इसमें बताना चाहूँगी कि अभी माननीय सांसद जी के द्वारा हमारे सदर अनुमंडल में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण का वितरण किया गया।
1: अच्छा।
0: और छतरपुर अनुमंडल और हुसैनाबाद अनुमंडल में भी जल्द ही इन उपकरणों का वितरण किया जाना है।
1: अच्छा।
0: बाल संरक्षण के लिए भी मिशन वात्सल्य एवं स्पॉन्सरशिप योजना चलती है, जो अनाथ व संकटग्रस्त बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता देती है। इसमें 4,000 रुपये प्रति माह अनाथ बच्चों को दिया जाता है।
1: अक्सर सरकारी योजनाओं की जानकारी जरूरतमंद लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, इस दिशा में विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: आपका कहना सही है, जागरूकता किसी भी योजना की सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों, क्षेत्रीय कर्मियों और स्थानीय स्तर के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। शिविरों, बैठकों और जन जागरूकता गतिविधियों जैसे नशा मुक्त भारत अभियान, पौष जागरूकता, अभी हमारा पोषण माह में पोषण अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, इन सभी के माध्यम से भी लोगों को योजनाओं और उनकी पात्रता के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी लोगों से मिले, उनसे सीधे संवाद करें और उनकी समस्याओं को विभाग तक पहुँचाएँ ताकि उनका निपटारा सही ढंग से हो सके। इसके अलावा विभिन्न विभागों के समन्वय से भी जन जन तक पहुंचने एवं समस्याओं को जानने, उनके निराकरण के भी निरंतर प्रयास जारी है।
1: आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के प्रारंभिक विकास और मातृ शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनके बेहतर संचालन के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं?
0: आंगनबाड़ी केंद्र समाज कल्याण की योजनाओं को जमीन पर पहुँचाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि यह हर गांव में अवस्थित होता है। मेरी प्राथमिकता रहती है कि केंद्र नियमित रूप से संचालित हों, बच्चों को निर्धारित सेवाएं यथा पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, अनौपचारिक शिक्षा आदि मिले और गर्भवती व धात्री महिलाओं तक भी आवश्यक सेवाएं पहुंचे। साथ ही बच्चों की वृद्धि, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों पर नियमित निगरानी जरूरी है। इसके लिए अभी सरकार के द्वारा ऐप भी बनाया गया है, जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना ऐप, पोषण ट्रैकर, जिसके तहत इनकी हर चीज़ों की ट्रैकिंग की जाती है कि कितना हमारा कार्य सही ढंग से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इसके लिए महिला पर्यवेक्षिका और आंगनवाड़ी कर्मियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और पुनः दोहराऊंगी कि सामुदायिक सहभागिता क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। जैसे VHSND होता है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, ये पूरे माह में एक दिन मनाया जाता है, जिस दिन सभी बच्चों को, महिलाओं को टीका दिया जाता है। उनका टीकाकरण के साथ ही महिला मंडल की बैठक होती है और उन लोगों में पोषाहार का भी वितरण होता है जो टेक होम राशन कहलाता है। तो उस दिन भी लोगों की बहुत ही ज़्यादा संख्या में भागीदारी होती है और हम ये देखते हैं कि बच्चों का वजन भी लिया जाता है और उसमें गांव की महिलाएं बहुत अच्छे से अपनी सहभागिता देती हैं और सहयोग करती हैं।
1: ग्रामीणों से आपको अच्छा सहयोग मिल जाता है, ये तो अच्छी बात है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के प्रारंभिक विकास और मातृ शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: जी,
1: कुपोषण आज भी बच्चों के विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, इसे निपटने के लिए पलामू में किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं?

0: कुपोषण से निपटना केवल एक विभाग की जिम्मेवारी नहीं है, इसके लिए परिवार, समाज और विभिन्न विभागों का मिलकर काम करना जरूरी है। हमारे यहाँ पे एक समर कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत जितने भी हमारे अति कुपोषित बच्चे हैं, इनकी नियमित निगरानी की जाती है, पोषण संबंधी सेवाएं उनको प्रदान की जाती है और सैम बच्चों यानी गंभीर रूप से अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें कुपोषण उपचार केंद्र में भेजा जाता है और आवश्यकता के अनुसार उनकी उचित देखभाल की जाती है ताकि वो कुपोषित से सामान्य वर्ग में आ सके
1: जी।
0: साथ ही अभिभावकों को भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक आहार, स्वच्छता और बच्चों की देखभाल के प्रति जागरूक करना जरूरी है। हमारा प्रयास है कि कुपोषित बच्चों की पहचान के साथ साथ उनके पोषण स्तर में सुधार पर भी लगातार नजर रखी जाए। स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। अभी हम लोगों ने एक ATHR प्रोग्राम का शुभारंभ 1 सितंबर को उपायुक्त महोदय के हाथों किया है। इसमें बच्चों को अतिरिक्त पोषक आहार दिया जाता है।
1: बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर आप किन बातों को सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं?
0: मेरे विचार से बालिका को शिक्षा और सुरक्षित वातावरण देना सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा उसे अपने अधिकारों को समझने और अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है
1: जी।
0: साथ ही परिवार और समाज को बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि लोग थोड़ा उनके प्रति अलग व्यवहार रखते हैं और लैंगिक
1: भेदभाव करते हैं जी।
0: जिसको लेकर हमारा विभाग भी अभी कार्यक्रम चला रहा है कि लैंगिक भेदभाव ना हो। जब एक बालिका शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती है तो इसका लाभ केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को मिलता है। और हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या श्रम विभाग के कौशल विकास योजना, इन सभी के द्वारा बच्चियों के सुरक्षा, आत्मनिर्भरता आदि को लेकर प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं।
1: समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए आपका विभाग किस तरह से काम कर रहा है?
0: महिलाओं तक जानकारी पहुंचाना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों में से एक
1: जी।
0: आंगनवाड़ी केंद्रों और क्षेत्रीय स्तर पर बैठकों, कार्यशालाओं तथा जागरूकता कार्यक्रमों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पौष अधिनियम इत्यादि के माध्यम से महिलाओं को योजनाओं, पोषण, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारा प्रयास रहता है कि महिलाएं केवल योजनाओं के लाभुक न बने बल्कि अपने अधिकारों और उपलब्ध अवसरों के बारे में भी जागरूक हो।
1: बिल्कुल।
0: समय समय पर विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया जाता है। NGO के पार्टिसिपेशन से भी प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जा रहा है।
1: वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
0: हमारा प्रयास है कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की पहचान कर उन्हें संबंधित योजनाओं से जोड़ा जाए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र शिविरों का आयोजन कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी स्थानीय स्तर तक पहुंचाना और आवेदन की प्रक्रिया को समझाना महत्वपूर्ण है। साथ ही विभागीय स्तर पर प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया, आधार लिंकिंग और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए ताकि पात्र लाभुकों को प्रत्यक्ष लाभ यानी DBT के माध्यम से बिना किसी परेशानी के सहायता मिल सके। विवेकानंद निशक्त प्रोत्साहन योजना के तहत इन्हें 1,000 रुपया प्रदान किया जाता है। ADP योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के बीच आवश्यक उपकरण का वितरण किया गया है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया।
1: मैम, आपका काम ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के दौरान आपको आम लोगों की ओर से किस तरह की समस्याएं या अपेक्षाएं सबसे अधिक सुनने को मिलती हैं?
0: ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सबसे बड़ी अपेक्षा यही होती है कि सरकारी योजना की जानकारी उन्हें समय पर नहीं मिल पाती है और लाभ लेने की प्रक्रिया सरल नहीं है। तो कई बार लोगों को पात्रता दस्तावेज या आवेदन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती। ऐसे में हमारा प्रयास रहता है कि उनकी बात सुनी जाए एवं सरल और सही ढंग से उनको जानकारी दी जाए और संबंधित स्तर पर ही उनकी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की जाए।
1: जी, 2.5 दशक से अधिक समय की आपकी सेवा यात्रा रही है मैम।
0: जी
1: इस लंबे अनुभव ने आपके व्यक्तित्व और सोच को किस तरह से बदला है?
0: इस लंबे सफ़र ने मुझे सबसे बड़ी सीख यह दी है
1: जी
0: कि प्रशासनिक कार्य में संवेदनशीलता और धैर्य, ये दोनों बहुत जरूरी है। अलग-अलग परिस्थितियों और अलग विचार वाले लोगों के साथ काम करने से समस्याओं को अलग-अलग नज़रिए से देखने की समझ विकसित हुई। मैंने यह भी सीखा कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम ईमानदारी से प्रयास करें और लोगों की बातों को सुने तो विश्वास जरूर बनाया जा सकता है। साथ ही हम ये भी सोचते हैं कि समस्या सिर्फ फाइलों तक ना रहे, बल्कि संवेदनशीलता और समयबद्ध अनुशासन के तहत इसका निपटारा हो।
1: आप एक महिला भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी, तो
0: जी
1: प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन और कार्य के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा आपके लिए?
0: निश्चित रूप से यह बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रशासनिक जिम्मेवारियों में समय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती और कई बार काम को प्राथमिकता देनी पड़ती है। ऐसे में परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी हम ही लोग की SIR में ड्यूटी है,
1: जी
0: तो सुबह जल्दी जाना है और बहुत लेट से आना है, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि जिम्मेदारियों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करूं और अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए व्यक्तिगत जीवन के लिए भी समय निकाल सकूं।
1: बहुत अच्छा मैम। आपके कार्यकाल में ऐसा कौन सा अनुभव रहा जिसे आप अपनी सेवा यात्रा की विशेष उपलब्धि या संतोष का क्षण मानती हैं?
0: मेरे लिए सबसे बड़ा संतोष किसी एक कार्य या उपलब्धि से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों से मिलता है जब किसी जरूरत व्यक्ति को किसी योजना का लाभ मिलता है या उनकी समस्या का समाधान होता है।
1: जी
0: जब कोई परिवार यह बताता है कि विभाग की सहायता से उन्हें राशन मिला, राहत मिली, या कुपोषित बच्चे की स्थिति में सुधार हुआ, वो कुपोषित से नॉर्मल बच्चा हो गया, या फिर बहुत सारी लड़कियों का हमने बाल विवाह रुकवाया है और उनका विवाह रुकवा कर उनके सपनों को एक नई उड़ान देने का भी प्रयास किया है।
1: क्या बात है।
0: तो ऐसे ही सकारात्मक जो बदलाव हैं ये हमारे संतुष्टि का आधार होते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने। एक महिला अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए क्या आपको कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसने आपको और अधिक दृढ़ बना दिया और मजबूत बना दिया?
0: जी मैम, निश्चित तौर पर सेवा के दौरान अलग अलग परिस्थितियां आईं और हर परिस्थिति अपने साथ एक नई सीख लेकर आई। एक महिला अधिकारी के रूप में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जहां धैर्य, दृढ़ता और सही निर्णय लेना जरूरी था और बिना दबाव के मैंने हमेशा यही प्रयास किया कि कितनी भी परेशानियां आए, परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने दायित्व और निर्णय के प्रति स्पष्ट एवं निष्पक्ष रहूं। मेरा मानना है कि चुनौतियां हमें कमजोर करने के बजाय सीखने और ज्यादा मजबूत बनने का अवसर देती हैं।
1: बिल्कुल सही। चुनौतियां आती हैं तो हमें काफी कुछ नया सीखने को भी मिलता है।
0: जी मैम,
1: आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर युवतियां, यदि प्रशासनिक सेवा में आना चाहती हैं तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं युवाओं, विशेषकर युवतियों से कहना चाहूंगी कि अपने लक्ष्य लेकर स्पष्ट रहें और मेहनत से कभी पीछे ना हटें। प्रशासनिक सेवा में आने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, अनुशासन और समाज के प्रति संवेदनशीलता भी जरूरी है। और सफलता तुरंत नहीं मिलती
1: जी,
0: लेकिन निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है।
1: बहुत
0: जैसा हम लोगों ने देखा है कि कछुआ और खरगोश
1: की कहानी, बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो उसी तरह से निश्चित तौर पर वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। इसके लिए उन्हें अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना होगा और वे सभी ईमानदारी से तैयार

0: करें।
1: समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहती हैं?
0: मेरी सबसे बड़ी अपेक्षा है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्व को केवल सरकारी काम न समझकर सेवा का माध्यम समझे। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे काम से सीधे किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन पर असर पड़ता है, इसलिए समयबद्धता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और टीम भावना के साथ काम करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ क्षेत्र में मिलने वाली समस्याओं को गंभीरता से लेकर उसका समाधान करने की कोशिश होनी चाहिए।
1: जी, बहुत खूब। अंत में पलामू के आम नागरिकों के लिए आपका कोई विशेष संदेश, विशेषकर उन लोगों के लिए जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं?
0: जी बिल्कुल, पलामू के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जिम्मेवारी जानकारी जरूर प्राप्त करें, और यदि आप किसी योजना के लिए पात्र हैं तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय या अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही मैं लोगों से यह भी कहना चाहूँगी कि यदि किसी योजना का लाभ लेने में कोई भी समस्या आ रही हो तो अपनी समस्या संबंधित पदाधिकारी तक जरूर पहुँचाएँ। विभाग का उद्देश्य ही है कि पात्र और जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचे।
1: मैम, 9 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026 तक पोषण माह मनाया जा रहा है। इस दौरान हमारे दूर दराज के ग्रामीण इसका लाभ ले सकें, इसके लिए क्या गतिविधियां चलाई जा रही हैं ताकि हमारे ग्रामीणों तक इसकी जानकारी पहुंच सके और वे इसे लाभान्वित हो सकें?
0: 9 सितंबर से 9 अक्टूबर तक हमारा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, और इस बार इसका जो थीम है वो है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी।
1: अच्छा,
0: और इस थीम के अंतर्गत 5 प्रमुख विषयों पर विशेष रूप से गतिविधियां आयोजित की जानी है, जैसे आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व और जवाबदेही, बाल विकास के लिए पोषण एवं प्रारंभिक उद्दीपन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और उसका नकद अंतरण। आपने एक और सवाल किया कि जो दूर दराज के लोग हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए। तो हम लोग पोषण माह के दौरान बहुत सारी गतिविधियां करते हैं और पूरे ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, फिर उसके बाद जल सहिया सहिया, फिर JSLPS की जितनी भी महिला दीदी लोग होती हैं, इन सभी लोगों की सहभागिता से प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम किया जाता है। जैसे रंगोली बनाकर ही उनको जानकारी दी जाए, या कभी जो पोषक पदार्थ हैं उनके प्रदर्शनी लगाकर, या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उपयोग किस तरह से किया जाए, पोषण वाटिका लगाना और उसकी उपज जो ताज़ा हो और उसका उपयोग कैसे करना, ये सारी चीज़ें उनको बताई जा सकती हैं। और आंगनवाड़ी प्रबंधन समिति की इसमें सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें गांव के ही लोग ग्रामीण जुड़ते हैं, सामुदायिक निगरानी करते हैं और मातृवंदना के अंतर्गत जितने भी प्रथम और द्वितीय गर्भवती माताएं, जिसमें प्रथम कोई भी बच्चा रहेगा उसको 5,000 रुपये की राशि मिलेगी, और द्वितीय गर्भवती माता का अगर बच्ची का जन्म होता है तो उसको 6,000 एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। इस समय जो 9 सितंबर से 9 अक्टूबर तक हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, हमारा PRI है, JSLPS है, इन सब के सहयोग से प्रतिदिन कुछ न कुछ गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। और आज मेरा ये बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित
1: और रेडियो के माध्यम से भी यह जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मैम। आपने अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर प्रशासनिक जीवन तक समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लेकर राष्ट्रीय पोषण

0: माह तक सभी मुद्दों पर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की। नीता जी, अपने 2000 से अब तक के सफर को यदि आप एक वाक्य में व्यक्त करना चाहें तो वह वाक्य क्या होगा?
1: जी, वर्ष 2000 से आज तक का मेरा सफर जिम्मेदारियों, चुनौतियों, सीख और सबसे बढ़कर लोगों की सेवा के प्रति कुछ सार्थक करने एवं निरंतर समर्पण का सफर रहा है।
0: वाह, बहुत खूब। नीता जी, आपके इस अनमोल वाक्य को एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगी। आपके इन 25 सालों का जो सफर रहा वह संवेदनशीलता, समर्पण और जनसेवा की एक ऐसी अविरल यात्रा रही है जिसने हर चुनौती को किसी न किसी चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर बना दिया। आकाशवाणी की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार और आकाशवाणी परिवार का भी आभार कि आपने हमें लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थी नीता चौहान, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पलामू, भेंटकर्ता अनुपमा तिवारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम महुआ। इसके तहत आइए सुनते हैं शारदा सिन्हा और साथियों को।

अभी आप सुन रही थी शारदा सिन्हा की आवाज़ में भोजपुरी लोकगीत। इसी के साथ महुआ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। आइए सुनते हैं फिल्म सात रंग के सपने के गाने।

सड़क फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:15 बजने को हैं। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार। प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने वुमेन्स लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वॉश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, वुमेन्स स्टीपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता

0: एकता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
1: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
3: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
3: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनका सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
4: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth. Technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
5: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
6: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
5: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
7: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के।
5: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
8: एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
9: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far, also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200-meter events. And India retained Nona Gaprina Dashavili Trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow.
10: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
9: Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from more than 32 crore families has already been recorded so far. He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility.
10: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज कर सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
9: Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives at birth anniversary of father of the nation Mahatma Gandhi on the 2nd of October. He cited examples of cleanliness initiatives from across the country.
10: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं। स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
9: Prime Minister Modi said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth while announcing health checkups and meditation camps as part of 100-week campaign. Speaking about One District, One Product initiative, Prime Minister Modi said it is creating new opportunities for amla growers and entrepreneurs at Pratapgarh in Uttar Pradesh, with around 100 processing units now operational and women's self-help groups playing an important role. He said the initiative aims to take local products to national and global markets and urge people to promote the vocal for local message during the upcoming festive season. Defense Minister Rajnath

0: understand, reassure, and take the responsibility.
1: Prime Minister Narendra Modi today paid tribute to former International Working President of Vishwa Hindu Parishad, Ashok Singhal, on his 100th birth anniversary. Born on 27th of September 1926 in Agra, Ashok Singhal dedicated his life to culture, society and the nation. During the Mann Ki Baat program today, Prime Minister Modi recalled Singhal's role in the Ram Janmabhoomi movement and his efforts to address social discrimination and inequality. Union Home Minister Amit Shah attended the centenary celebrations in New Delhi this evening to commemorate the VHP leader's birth anniversary. Speaking at the event, Mr. Shah said, Vishwa Hindu Parishad leader devoted his entire life to Hindutva, the nation and social service. You are listening to the News at 9 on Akashwani.
2: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
1: Welcome back. At the Asian Games in Japan, India's Ansi Sojin Edapilli has won the silver medal in the women's long jump at Aichi Nagoya in Japan today. Sarvesh Kushare won silver medal in the men's high jump. In squash, the country clinched two silver medals with Abhay Singh winning silver in the men's singles and Anahat Singh bagging a silver medal in the women's singles event. Tajashin Shankar bagged a bronze medal in the decathlon. Harita Bhadra won the bronze in the women's 200 meters event and Parul Chaudhary won bronze medal in women's 3000 meters steeplechase event. President and Prime Minister extended wishes to all the medal winners. Currently, India is at the 12th position in medals tally with a total of 37 medals including 4 gold, 16 silver and 17 bronze medals. India defended the prestigious Nona Gaparina Dashavelli Trophy at the 2026 Chess Olympiad in Samarkand, Uzbekistan today, finishing as the best overall nation after picking up a silver in the open section and a bronze in the women's event. The Indian men's team played out a draw with Hungary and settled for the silver medal on a tie break, while the women drew with Georgia to bring home the bronze in the Chess Olympiad that concluded today. This marks the third straight edition where India have won the trophy, having claimed it on the home turf at Chennai in 2022 during their historic double gold campaign at Budapest in 2024 and the latest in Samarkand. In men's cricket, chasing a target of 296 runs set by West Indies, hosts India with 240 for 2 in 37 overs in the first one-day international of the three-match series in Thiruvananthapuram when reports last came in. Earlier put into bat, West Indies posted 295 for the loss of 7 wickets in stipulated 50 overs. India had opted to field after winning the toss. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, south interior Karnataka and Uttarakhand tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds over northeastern parts of India. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200-meter events. And India retained the Nona Gaparina Dashavelli Trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And that's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट फजाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने 2027 की मर्दम शुमारी में की गई पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के योम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में और ज्यादा लोगों की शिरकत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी दिफाई खुद मुख्तारी से समझौता किए बगैर आलमी इस्तेहकाम का खां है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर साबरमती से एलएनजी से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो माहौल के लिए साजगार तवानाई के मकसद से रेलवे में की गई एक बड़ी कामयाबी है। एशियन गेम्स में भारत ने खवातीन की लंबी छलांग और मर्दों की ऊंची छलांग नेज मर्दों और खवातीन के स्क्वैश सिंगल्स में चांदी के तमगे हासिल किए हैं और डेकेथलॉन खवातीन की स्टेपल चेज नेज 200 मीटर के मुकाबले में कांसे के तमगे जीते हैं। और भारत ने उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंदाश्विली ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। उसने ओपन जुमरे में चांदी और खवातीन के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट फजाई हमला और 2025 में किया गया ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। वज़ीर आज़म आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत कल सरहद पार सर्जिकल हमले के 10 साल पूरे होने की याद ताज़ा करेगा। भारत ने 2016 में 28 और 29 सितंबर की रात ये हमले किए थे, जिनमें उस महीने के आगाज में उड़ी में किए गए दहशतगर्दाना हमले के जवाब में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भारतीय सिपाहियों की बहादुरी को देखकर हैरान, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर लिया था। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को दहशतगर्दाना हमलों की वजह से पैदा देरीना दर्द का भारत का एक फैसला कुन जवाब करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि पिछली दहाई में 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट फजाई हमलों से 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार एक वाजह पैगाम दिया कि दहशतगर्दाना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
4: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
3: जनाब मोदी ने उस वक्त को याद किया जब सिलसिलेवार बम धमाके मुल्क में अक्सर होते थे। उन्होंने 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में किए गए सिलसिलावार बम धमाकों का जिक्र किया, जिनमें बहुत से लोग हलाक हो गए थे, जिसके कुछ ही हफ्ते बाद मुंबई में 26/11 के दहशतगर्दाना हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत आज दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है और अपने इस तरीके कार का समरा भी देख रहा है। 2027 की मर्दमशुमारी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि इस अमल का पहला मरहला तकरीबन सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने कहा कि 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी का यह काम लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दूर दराज और बर्फ से ढके हुए इलाकों में भी जारी है, जहां बहुत से तहरीक देने वाले तजुर्बात हासिल हुए हैं।
4: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषा में उपलब्ध है।
3: वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी एक कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खुद शुमारी की सहूलत से ये अमल आसान हो गया है। लोग अपने और अपने कुनबों के बारे में जानकारी अपने मोबाइल फोन के जरिए दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सहूलत हिंदी और दीगर 16 जबानों में मौजूद है। وزیراعظم نے اپنے خطاب کا اختتام کرتے ہوئے لوگوں کو مبارکباد دی اور آئندہ تہواروں کے دنوں میں خوشی اور خوشحالی کی نیک خواہشات پیش کی۔ جناب مودی نے 2 اکتوبر کو بابائے قوم مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع سے پہلے صفائی ستھرائی کی مہم میں لوگوں کی اور زیادہ شرکت پر زور دیا۔ انہوں نے ملک بھر میں صفائی ستھرائی کے لیے کیے گئے اقدام کی مثالیں دیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ بھارت کسی ملک کے کسی علاقے پر قبضہ کرنا نہیں چاہتا، البتہ اگر اسے دھمکی دی جائے گی تو وہ اپنی سلامتی اور دفاعی خود مختاری کی حفاظت کرے گا۔ نئی دلی میں ایک میڈیا ہاؤس کی طرف سے منعقدہ دفاع سے متعلق ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ بھارت عالمی استحکام چاہتا ہے لیکن اپنی دفاعی خود مختاری کی قیمت پر نہیں۔ وزیر موصوف نے خاص طور پر کہا کہ کسی ایسے ملک کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی جو بھارت کے خلاف دہشت گردی کو بڑھاوا دے۔
5: بھارت شانتی چاہتا ہے لیکن بھارت اپنی سرکشا کے ساتھ کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت ڈائلاگ میں وشواس رکھتا ہے لیکن یدی کوئی دیش بھارت کے خلاف آتنکواد کو ہوا دے گا تو ڈائلاگ کی گنجائش وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ جو دیش ٹیررزم کو اپنی نیت کا سادھن بناتے ہیں، آتنکیوں کو پناہ اور سمرتھن دیتے ہیں، انہیں کڑا سندیش دینا ہوگا کہ آتنکواد کسی کے لیے اسٹریٹجک ایسٹ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے۔
3: قومی اتحاد کو قومی سلامتی کا ایک اہم ستون قرار دیتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کی سلامتی اکیلے مسلح فوجوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ہر شہری کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ مذہب، ذات پات، زبان، خطے اور دیگر طرح کی شناخت کی بنیاد پر کی جانے والی تفریق سے اوپر اٹھیں اور قومی مفاد کو ذاتی اور چھوٹے مفادات سے اوپر رکھیں۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے سابرمتی میں آج کئی بڑے ریلوے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا، سنگ بنیاد رکھا اور آغاز کیا۔ ان پروجیکٹوں کی لاگت 1500 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ وزیر موصوف نے گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی موجودگی میں ملک کی پہلی LNG سے چلنے والی ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین سابرمتی اسٹیشن سے روانہ کی گئی۔ اس ٹرین میں ڈیزل اور رقیق بنائی گئی قدرتی گیس کے دوہرے ایندھن کا استعمال کیا گیا ہے جس کے انجن میں تقریباً 40% روایتی ایندھن ڈیزل کی جگہ 1400 horsepower کا استعمال کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں پچھلے 12 سال میں بھارتی ریلویز کی قابل ذکر تبدیلی کو اجاگر کیا۔
6: ودیوتیکرن 2010-11 میں 75 کلومیٹر ہوتا اور 23-24 میں 7188 کلومیٹر ودیوتیکرن۔ 75 سے 7000 کلومیٹر کی چھلانگ 99.6% ریلوے کا ودیوتیکرن ہو گیا ہے، 0.3% جو باقی ہے وہ بھی ہم پورا کر لیں گے۔
3: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی رادھا کرشنا نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کسی ڈاکٹر کے انسانی ہمدردی کے جذبے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت، AI اور ڈیجیٹل صحت کے شعبے میں تیزی سے پیش رفت کے دور میں ڈاکٹروں کے اندر ہمدردی کے جذبے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جناب رادھا کرشنن آج تروونتپورم میں SUT اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے نوجوان ڈاکٹروں پر زور دیا کہ وہ اپنی بات واضح اور جامع انداز میں پیش کریں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ نمو بھارت کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
7: نمو بھارت ملک کے پہلے علاقائی تیز رفتار سفر کا نظام ہے۔ یہ 82.15 کلومیٹر کی ایک نیم تیز رفتار راہداری ہے جسے 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس پر 30,274 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ اس کا آغاز اس سال فروری میں کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے دلی سے میرٹھ تک کا سفر محض 1 گھنٹے سے کم وقت میں پورا ہو جاتا ہے۔ ہر ایک ٹرین میں خواتین کے لیے ایک کوچ ریزرو ہے۔ اس تیز رفتار ریل گاڑی کو روانہ کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ نمو بھارت جدید نوعیت کی ایک حیرت انگیز تیز رفتار ٹرین ہے۔
8: نمو بھارت ٹرین میں आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
7: नमो भारत के एक मुसाफिर ने इस ट्रेन के बारे में कहा कि इससे उन मुलाजिमीन और तलबा को फायदा होगा जो सड़क के रास्ते गाड़ियों से सफर करते थे।
9: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है।
7: इस प्रोजेक्ट से शहरी नकलो हमल के वजीर आजम के विजन को अमली जामा पहनाने की रफ्तार में तेजी आएगी और शहरियों की जिंदगी में मजीद सहूलत पैदा होगी। न्यूज डेस्क से अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
3: साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन मुस्तकबिल में इलाज को ज्यादा जदीद, मुअस्सर और हर मरीज की जरूरत के मुताबिक बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। नई दिल्ली में आज वर्ल्ड कांग्रेस ऑन नैनो मेडिसिन 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी का महकमा नैनो मेडिसिन के शोबे में 2010 तहकीकी और तरक्याती मनसूबों के लिए 174 करोड़ रुपए की माली मुआवनत फराहम कर रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि विश्व हिंदू परिषद के साबिक सदर अशोक सिंघल ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुत्व, मुल्क और समाजी खिदमात के लिए वक्फ कर दी। आज यानी अशोक सिंघल के यौम पैदाइश की 7 साला इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अशोक सिंघल की जिंदगी कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, मजहबी जज्बे, नज्म जब्त और अज़्म की अक्कास है। भारत ने अफगानिस्तान को जारी अपनी इंसानी इमदाद के तहत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जान बचाने वाली अद्वियात और तिब्बी इस्तेमाल की अशिया की एक खेप रवाना की है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत की इंसानी इमदाद मरकजी हैसियत रखती है। जापान में जारी एशियन गेम्स 2026 में आज आइची नागोया में खवातीन की लंबी छलांग के मुकाबले में एनसी सोजन एडिपेल्ली ने चांदी का तमगा जीता। एनसी 6 मीटर 53 सेंटीमीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ दूसरे मकाम पर रहीं। मर्दों की ऊंची छलांग में भारत के सर्वेश कुशारे ने 2 मीटर 25 सेंटीमीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ चांदी का तमगा जीता। भारतीय एथलीट हरिता भद्रा ने खवातीन की 200 मीटर दौड़ के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलान मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। खवातीन के 3000 मीटर स्टेपल चेज मुकाबले में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने कांसे का तमगा जीता। फिलहाल तमगों की फहरिस्त में भारत 12वें मकाम पर है और सोने के 4, चांदी के 16 और कांसे के 17 तमगों के साथ मजमुई तौर पर 37 तमगे जीत चुका है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। भारत ने आज उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 2026 के शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंड शेल्वी ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। भारत ने ओपन जुमरे में बेहतरीन मजमुई कारकर्दगी वाले मुल्क के तौर पर अपनी मुहिम मुकम्मल की और खवातीन के मुकाबले में उसने चांदी का तमगा हासिल किया। भारत की मर्दों की टीम ने हंगरी के साथ खेलते हुए अपना मुकाबला बराबरी पर पूरा किया। मर्दों की क्रिकेट में वेस्टइंडीज की तरफ से दिए गए 296 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 41 ओवर्स में 2 विकेट पर 282 रन बना लिए हैं। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट फजाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2027 की मर्दमशुमारी में की गई पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में और ज्यादा लोगों की शिरकत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी दिफाई खुदमुख्तारी से समझौता किए बगैर आलमी इस्तेहकाम का खां है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
10: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिए मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: का शायर।
1: आप सोच रहे होंगे नमस्कार के साथ ही मैंने अर्ज किया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये मामला क्या है? तो चलिए मामले को थोड़ा आगे और फलसफाई बना देते हैं।

0: भाई मामला क्या है आज के फनकार कार्यक्रम में? आज हम आखिर बात किस सिनेकार की कर रहे हैं? आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन जाने माने निर्माता निर्देशक यशराज चोपड़ा को।
1: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां।

0: तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान।
1: यश राज चोपड़ा 27 सितंबर 1932 को लाहौर में जन्मे यश चोपड़ा के पिता एक सरकारी विभाग में काम करते थे। परिवार में 8 भाई बहन थे। जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने सिनेमा में ही सांस ली, सिनेमा में ही काम किया और सिनेमा के ही सपने देखे, और वो सपने भी बड़े रूमानी किस्म के सपने थे। तभी तो आगे चलकर यशराज चोपड़ा ने अपने सिनेमा का एक खास मुहावरा कढ़ा। जब ये पता चलता था कि यश चोपड़ा की नई फिल्म आ रही है, लोग अंदाजा लगा लेते थे कि मोहब्बत का कोई रंग लेकर आ रही होगी। यश चोपड़ा ने बिल्कुल शुरुआत में ही ये समझ लिया था कि मोहब्बत सचमुच बड़े काम की चीज है, और ये नाम ही नाम की चीज नहीं बल्कि नाम और दाम की चीज है। तभी तो यश चोपड़ा ने सेल्यूलॉइड पर रूमानी सपनों को उतारा और कामयाबी की नई इबारत रची। लेकिन इसके लिए यश चोपड़ा को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, और यश चोपड़ा के बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा शुरुआती दौर में तो एक फिल्म पत्रकार थे, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर फिल्म पत्रकारिता से फिल्मों में जा पहुंचा। वो फिल्मों की दुनिया के एक बड़े नाम बन गए। यश चोपड़ा पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने ये सोचा था कि वो इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन बीच में ही उन्हें लग गया सिनेमा का चस्का और वो आ पहुंचे अपने बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा के पास समंदर किनारे बसे शहर मुंबई में।

यश चोपड़ा, जाने माने कॉमेडियन और निर्माता निर्देशक इंद्रसेन जौहर, जिन्हें आप आईएस जौहर के नाम से जानते हैं, उनके असिस्टेंट रहे। इसके बाद अपने बड़े भाई के सानिध्य में उन्होंने सीखा सिनेमा रचने का गुर। सन

1959 आ गया और यश चोपड़ा को मिली उनकी पहली फिल्म धूल का फूल। इसे यश चोपड़ा के बड़े भाई बीआर चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार और लीला चिटनीस के अभिनय वाली इस फिल्म का बड़ी सूझबूझ से निर्देशन किया यश चोपड़ा ने।

0: बनेगा।
1: जैसे कि आप जानते हैं, बी आर चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस बी आर फिल्म्स सामाजिक मुद्दों पर बनी अपनी फिल्मों के लिए जाना जाता है। जाहिर है कि शुरुआती दौर में बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने जिन फिल्मों का निर्देशन किया, उनमें कोई ना कोई सामाजिक मुद्दा था, कोई ना कोई बात थी जिसका ताल्लुक समाज से था, समाज की धड़कती हुई नसों से था। सन 1961 में बी आर चोपड़ा के प्रोडक्शन में यश चोपड़ा ने डायरेक्शन किया फिल्म धर्म।

साहिर लुधियानवी का लिखा ये गाना अपने आप जाहिर कर देता है कि फिल्म धर्मपुत्र का मुद्दा आखिर क्या था। फिल्म धर्मपुत्र को भारत सरकार ने हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। ये वो दौर था जब बीआर फिल्म्स के बैनर तले यश चोपड़ा एक के बाद एक कामयाब फिल्में बना रहे थे। सन 1965 यानी धर्मपुत्र के रिलीज होने के 4 साल बाद यश चोपड़ा लेकर आए अपनी एक अजीमुश्शान फिल्म, जिसके सितारे थे सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना, बलराज साहनी, मदनपुरी, शर्मिला टैगोर, अचला सचदेव और रहमान। ये फिल्म थी वक्त।

अपनी बेहतरीन स्क्रिप्ट और शानदार डायरेक्शन के लिए फिल्म वक्त को आज भी एक कल्ट फिल्म माना जाता है। आप जितनी बार भी वक्त को देख लें, आपका मन नहीं भरता। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा को मिला था सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। हिंदी सिनेमा में कुछ किरदारों के खो जाने और उसके बाद नाटकीय तरीके से उनके मिलने की बेमिसाल कहानी थी वक्त। सन 1969 में बीआर चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने बनाई दो बेमिसाल फिल्में। एक थी आदमी और इंसान।

0: इत्तेफाक है।
1: दूसरी थी फिल्म इत्तेफाक। आपको बता दें कि फिल्म इत्तेफाक एक रात की कहानी थी। ये एक गुजराती नाटक पर आधारित फिल्म थी जिसके मुख्य सितारे थे राजेश खन्ना। बहुत कम बजट में बनी इस फिल्म ने आलोचकों का दिल जीत लिया। इत्तेफाक की कमाल की बात यह है कि इसकी शूटिंग सिर्फ एक महीने में पूरी हो गई थी। इस फिल्म में ना तो कोई गाना था और ना ही इंटरवल था। हिंदी सिनेमा के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों ने खूब सराहा और इस फिल्म के लिए भी यश चोपड़ा को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। यहां से यश चोपड़ा के जीवन का एक नया युग शुरू होता है। सन 1971 यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा के प्रोडक्शन बीआर फिल्म्स को अलविदा कह दिया और अपना एक नया रास्ता बनाना शुरू किया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम रखा गया यशराज फिल्म्स। यशराज फिल्म्स ने सबसे पहले बनाई फिल्म दाग। साल 1973 में आई राजेश खन्ना की अभिनय वाली ये फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और यशराज फिल्म्स की कामयाबी की कहानी यहां से शुरू हुई।

0: पकड़ ले।
1: फिल्म दाग की कामयाबी के बाद यश चोपड़ा ने अपने मजबूत कदमों के साथ फिल्म संसार में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। सन 1975 रजत पट पर एक इतिहास लिखा गया। सलीम जावेद की लिखी, यश चोपड़ा की निर्देशित, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर अभिनीत फिल्म आई दीवार।
2: लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है वो इस पुल से कहीं ऊंची है। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है।
3: जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई।
2: रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं, अब हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ।
3: नहीं, मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं।
2: उफ, तुम्हारे असूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे असूल, तुम्हारे सारे असूलों को गूंथ कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। रवि, जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या दिया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, दो जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास मां है।
1: दीवार बेहद कामयाब रही। अपनी बेमिसाल स्क्रिप्ट और कसे हुए निर्देशन की वजह से फिल्म दीवार आज भी याद की जाती है। यश चोपड़ा की बेमिसाल फिल्मों का सिलसिला यहां रुका नहीं, बल्कि इसके अगले ही साल वो लेकर आए अपनी एक और लाजवाब फिल्म कभी कभी। ये यश चोपड़ा के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। कभी कभी के 2 साल बाद ही उन्होंने गुलशन राय के लिए एक फिल्म का निर्देशन किया। अमिताभ बच्चन के अभिनय से सजी ये फिल्म थी त्रिशूल। यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के साथ का सिलसिला जारी रहा। सन 1981 में आई फिल्म सिलसिला।
4: ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

एक के बाद एक यश चोपड़ा ने लगातार कई कामयाब फिल्में दी। सन 1984 में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और अनिल कपूर के अभिनय वाली फिल्म आई मशाल। इसके बाद यशराज फिल्म्स की कामयाबी का सफर थोड़ा सा ढीला पड़ गया। यश चोपड़ा की कुछ फिल्में कामयाब नहीं रहीं, जैसे फासले, विजय और परंपरा। सन 1989 में यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म चांदनी। ऐसा लगा जैसे पर्दे पर यश चोपड़ा का जादू अभी कई सालों तक कायम रहने वाला है। फिल्म चांदनी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सन 1991 में एक विवादास्पद विषय पर यश चोपड़ा ने बनाई फिल्म लम्हे। लम्हे को आलोचकों ने खूब सराहा, लेकिन ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं रही जितनी यश चोपड़ा ने उम्मीद की थी। हालांकि फिल्म ने 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल था। सन 1993 में यश चोपड़ा ने बनाई शाहरुख खान, जूही चावला म्यूजिकल थ्रिलर डर। साल 1995 यशराज फिल्म्स के इतिहास का एक नया पन्ना शुरू हुआ। यश चोपड़ा के सुपुत्र आदित्य चोपड़ा ने एक फिल्म लिखी और उसका निर्देशन किया। शाहरुख खान और काजोल के अभिनय वाली ये फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म रिलीज हुई 20 अक्टूबर 1995 को और सारी दुनिया में दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत प्यार

0: इसके बाद यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर पुरस्कार और 3 नेशनल अवार्ड्स जीते। सन 1997 में दिल तो पागल है के रिलीज होने के बाद यश चोपड़ा तकरीबन 7-8 बरस तक फिल्मों से दूर रहे। हालांकि यशराज फिल्म्स ने अपनी फिल्मों के प्रोड्यूस करने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन यश चोपड़ा उनका निर्देशन नहीं कर रहे थे। साल 2004 में यश चोपड़ा ने एक बार फिर निर्देशन की बागडोर संभाली और लेकर आए फिल्म वीर जारा। सारी दुनिया में वीर जारा ने तकरीबन 940 मिलियन का कारोबार किया। एक बार फिर तकरीबन 8 बरस तक यश चोपड़ा ने किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। यशराज फिल्म्स की बागडोर उनके पुत्र आदित्य चोपड़ा संभाल रहे थे। नए निर्देशकों को मौका दिया जा रहा था। प्रोडक्शन हाउस की कामयाबी जोरों पर थी। यश चोपड़ा अपने पुत्र के साथ यशराज फिल्म्स को आगे बढ़ा रहे थे। साल 2012 में अपने 80वें जन्मदिन के मौके पर यश चोपड़ा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया, जिसका नाम था जब तक है जान, और ये भी कहा कि ये उनके द्वारा निर्देशित की गई आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद वो फिल्मों के निर्देशन से संन्यास ले लेंगे। फिल्म जब तक है जान एक बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इसी साल 21 अक्टूबर 2012 को डेंगू की चपेट में आकर यश चोपड़ा का निधन हो गया।
1: तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।
0: और इस तरह फिल्म संसार ने खो दिया अपने एक बेमिसाल निर्माता और निर्देशक को, जिसकी फिल्मों को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसने रजत पट पर रची मोहब्बत की एक नई परिभाषा, जज्बात की एक नई धड़कन। यश चोपड़ा को हमारा नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: जाऊं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्मी गीत। फिल्में थीं आराधना, राज, खामोशी, दो रास्ते, सफ़र, अमर प्रेम, अजनबी, मेरे जीवन साथी, कुदरत, ताजमहल, दोस्ती और ख़ानदान। आवाज़ें थीं किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का

0: आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
1: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अब सुरक्षा के किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाए। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और देते हैं, बड़ा संदेश देता है कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने महिला लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर NC सोजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैपरिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 88 गेंद में 139 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।